ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय

0: एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिवजी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

कृष्णमूर्ति और साथियों के संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। सुविचार। अच्छे कर्मों की खुशबू दूर तक जाती है, चाहे उसे फैलाने वाला दिखाई दे या ना दे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। इस सुविचार के पश्चात आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से सुनिए गीत, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म प्रोफेसर से सुनिए गीत, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: चुभन तुझे देख के कहता है मेरा मन।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म खुद गर्ज से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साधना सरगम ने। बोल है इंदिवर की, संगीत है राजेश रोशन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। एक नई सुबह नई उम्मीदों और नए एहसासों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त निशिका और अगले 1 घंटे तक हम बातें करेंगे जिंदगी की। दोस्तों बुधवार का दिन है, अक्सर हमें याद दिलाता है कि हम सप्ताह के बीच में खड़े हैं। पीछे बीते दिनों की मेहनत है और आगे आने वाले दिनों की उम्मीदें। ऐसे में ज़रूरी है कि हम थोड़ा रुकें, मुस्कुराएं और ख़ुद को याद दिलाएं कि हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं।

आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब जिंदगी में बहुत कुछ संभाल कर रखते हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें, पुराने मैसेजेस, पुराने कपड़े, पुरानी यादें, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे संभाल कर रखते हैं वो है पुरानी बातें। किसी का कहा हुआ एक वाक्य या किसी का किया हुआ एक बिहेव व्यवहार, सालों गुजर जाते हैं लेकिन वो बातें हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। वैसे एक जोक की बात है कि हम घर की सफाई तो हर महीने कर लेते हैं, लेकिन दिल की सफाई सालों तक नहीं करते।

कभी-कभी लगता है कि दुनिया बहुत बदल गई है। पहले लोग घर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाते थे, अब मोबाइल पर ऑनलाइन देखकर पूछते हैं, क्या आप घर पर हो? पहले लोग हालचाल पूछने के लिए मिलते थे, अब स्टेटस देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तकनीक ने दूरी कम की है, पर मिलना जुलना भी कई हद तक कम कर दिया है। शायद इसी वजह से आज इंसान के पास संपर्क यानी कनेक्शन बहुत है, लेकिन संबंध बहुत कम है।

हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सफल बनना चाहता है, कोई अमीर तो कोई मशहूर। लेकिन शायद सबसे मुश्किल काम है एक अच्छा इंसान बने रहना। क्योंकि सफलता के लिए हुनर चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए चरित्र। और चरित्र की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बल्कि तब होती है जब आपके पास गलत करने के 100 मौके हो और फिर भी आप सही रास्ता चुनते हैं।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका आपके साथ। दोस्तों, घड़ी की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? उनकी दोनों सुइयां कभी एक जैसी नहीं होती। एक तेज चलती है तो एक धीमी, लेकिन दोनों मिलकर सही समय बताती है। ठीक वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की रफ्तार अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी तरह सोचे, ज़रूरी सिर्फ इतना है कि सब साथ मिलकर चले।

जाने से पहले एक बात, जिंदगी में हमेशा बड़ी घटनाएं ही हमें नहीं बदलती। कई बार एक किताब, एक गीत, एक मुलाकात या किसी अनजान व्यक्ति की कही

एक छोटी सी बात भी हमारी पूरी सोच बदल देती है। इसलिए हर दिन को खुलकर जिए, क्योंकि कौन सा दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बन जाए, किसको पता।

इसी के साथ हमारा कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम यहीं होता है समाप्त। कल ठीक 7 बजे इसी प्रोग्राम में इसी समय फिर मुलाकात होगी। आपकी रेडियो दोस्त यानी निशिका को दीजिए अब इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: See, NTA is committed.
5: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।

0: एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डॉनल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on

0: अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों, आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां यह नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में हंसी और अच्छे स्वभाव से ज़्यादा संक्रामक और कुछ नहीं होता है, और दोनों ही निशुल्क है। तो हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखिए और स्वभाव में विनम्रता रखिए, फिर देखिए जीवन कितना सुंदर लगता है। इसी सुंदर सी बात के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का आगाज़ कर दिया है। सभी का स्वागत, अभिनंदन।

0: कार्यक्रम में दोस्तों मिलवाते हैं अब आपको नमस्कार की टीम से। नमस्कार की टीम में आज ट्रांसमीटर से साथ मिल रहा है चंद्राराम पटेल और प्रकाश पंवार का।
1: कंट्रोल रूम में हमारा साथ दे रहे हैं इंजीनियर सुनील जयपाल।
0: और कांच के उस पार एचपीटी कंसोल पर उद्घोषिका है निशिका बुराना।
1: और एफएम पर कंसोल संभाल रहे हैं बलवीर सिंह।
0: और कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की। और कार्यक्रम की होस्ट मैं चंद्रकला सुथार
1: और मैं मीता मुल्तानी।
0: दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में पहले गीत की ओर।

0: दोस्तों, मुश्किलों से कभी डरना नहीं चाहिए। साहस रखें और उनसे निडरता से लड़ते रहो। कभी भी किसी में कोई कमी या कभी आपको कोई असफलता मिले तो आप निराश नहीं हों, बल्कि उत्साहपूर्वक उस असफलता से आगे बढ़ने का आप हौसला बनाए रखें। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, जो आपको सिखाएगी कि कोई भी कमी या असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही नजरिए से देखने पर वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मित्रों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास पानी लाने के लिए दो बड़े घड़े थे। इनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरा घड़ा जो था ना, वो बीच में से थोड़ा सा फूटा हुआ था। जब किसान नदी से पानी भरकर घर लौटता तो सही घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन फूटे घड़े तक पहुंचते पहुंचते आधा पानी ही बचता था। ऐसा हर रोज होता। सही घड़े को इस बात पर बहुत घमंड था, जबकि फूटा घड़ा बहुत ही शर्मिंदा रहता था। एक दिन फूटे घड़े ने किसान से कहा, मैं बहुत लज्जित हूं, मेरी इस कमजोरी के कारण आपकी आधी मेहनत बेकार चली जाती है। किसान मुस्कुराया और बोला, कल जब हम नदी से लौटेंगे ना, तो रास्ते में देखना। फिर मित्रों, अगले दिन किसान ने फूटे घड़े से कहा, क्या कहा? ऐसे कि क्या तुमने ध्यान दिया? बोला घड़ा, नहीं तो? तो उन्होंने कहा, रास्ते के एक तरफ ही बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। मैंने उस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे, और तुम्हारी कमजोरी से रिसने वाले पानी ने ही उन्हें सींचा, और आज देखो, तुम्हारी इस कमी ने इस रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया है। तो मित्रों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये बताएंगी आपको
1: सीख
0: चंद्रकला जी।
1: बिल्कुल मीता, और इस कहानी से सीख तो यही मिलती है हमें। यही सुनकर पता चल रहा है कि दुनिया में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है ना। और सब में कोई ना कोई कमी होती ही है।
0: हाँ,
1: अपनी कमियों से निराश होने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाइए। आपकी जो बात आपको कमजोर लगती है, वही तो आपको भीड़ से अलग और खास बनाती है।

0: मिता, क्या होता है ना, अक्सर हम कहते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, याददाश्त है जो भी साथ नहीं दे रही है। क्या है जिंदगी में, क्या होता है मिता, मिता की जिंदगी में भागदौड़ में अक्सर हम खुद को ही कहीं पीछे छोड़ आते हैं। हमारा
1: बिल्कुल
0: मन, मिजाज और याददाश्त दरअसल एक ही सिक्के के तो पहलू होते हैं। मतलब एक भी सही नहीं तो सब पर असर पड़ता है ना। एक
1: हाँ
0: लोहे की चीज अगर बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही तो हमारा मन भी है, इसे जितना काम में लाएंगे उतना ही यह तेज होगा। नए शब्द सीखना, किताबें पढ़ना या किसी पुरानी तकनीक को नए अंदाज में पेश करना, यही तो मन की खुराक है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चंद्रकला जी। हमारा मिजाज हमारे विचारों का आईना है। अगर हम इसे अच्छी बातों, संगीत और सकारात्मक बातचीत की धूल मिट्टी से साफ करते रहें तो यह हमेशा चमकता रहेगा। और रही बात याददाश्त की, तो यह तो इस्तेमाल करो या खो दो, यूज इट और लूज इट के सिद्धांत पर चलती है। आप जितना पुरानी यादों को कुरेदेंगे ना, नई जानकारी को याद रखने की कोशिश करेंगे तो यह उतनी ही साथ निभाएगी।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज से ही मन को आलस के कैद से आजाद कीजिए। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लिखिए, थोड़ा गुनगुनाइए, क्योंकि आप जितना इन्हें काम में लाएंगे ये बेहतर रहेंगे। लेकिन आप भी साथ साथ में सुलझे हुए भी रहेंगे और खुद को हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे।
1: और फिलहाल तो श्रोताओं, इस गीत को सुन के आप जरूर तरोताजा हो जाओगे।

0: चंद्रकला जी, जब हम सुबह सुबह आंख खोलते हैं ना, तो
1: जी
0: सबसे पहले क्या करते हैं?
1: क्या करते हैं? बहुत सारी विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर हम बिस्तर पर लेटे लेटे ही आज के टू डू लिस्ट बनाने लगते हैं कि आज क्या करना है, किसे क्या जवाब देना है, हमें कौन सा काम करना है, किस काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा बिल भरना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसका मैसेज आया है और किसका फोन आया है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जानकार कहते हैं ना कि सुबह की ये फैसलों की झड़ी हमारे दिमाग को दिन शुरू होने से पहले ही थका देती है और इसे कहते हैं डिसीजन फैटिंग।
1: बिल्कुल। जब हम सुबह एक साथ बहुत सारे फैसले लेते हैं मीता, तो दिन चढ़ने तक जो हमारी ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों से तो हम यही कहेंगे कि बेहतर तो यही होगा कि हम सुबह की शुरुआत फैसलों से नहीं, बहुत सारे विचारों से नहीं, बल्कि सुकून से करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी खुली हवा में कुछ कदम चलें और अपने मन के विचारों के बोझ से मन को है जो मुक्त रखें और अच्छा संगीत सुनें।

0: दोस्तों 9 बजने वाले हैं, यहाँ हम न्यूज़ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस परियोजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90

0: प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी जबकि शेष 10% खर्च सभी 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा जिससे भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोतरा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एनआईए से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलौदी सलूम्बर, खैरतल तिजारा, डी कोटपुतली बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि NTA परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू

0: करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
1: प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ से चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिर आईं और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी। प्रदेश में जल्द ही NIA कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। श्रोताओं, आज है 17 जून और 17 जून का दिन देश और दुनिया के इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखता है। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास।

0: 1885 में फ्रांस की ओर से अमेरिका को दिया गया दोस्ती का प्रतीक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 350 टुकड़ों में पैक होकर फ्रांसीसी युद्धपोत इसरे के जरिए आज ही के दिन न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा था।
1: श्रोताओं, वर्ष 1674 और दिन था आज का। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई का निधन हुआ था आज ही के दिन।
0: सत्रह जून यानी आज के दिन आइसलैंड का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वहां का संविधान लागू हुआ और यह डेनमार्क से पूरी तरह से अलग हुआ था।
1: मित्रों, अमेरिका के शिकागो में पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया था पहली बार आज ही के दिन।

0: साल था 1991 और दिन था आज का, यानी 17 जून को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। सत्रह जून 2008 को भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफल परीक्षण किया गया था। मित्रों, और श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण है आज का दिन जो भारतीय इतिहास में हमारी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में भी यह दिन मनाया जाता है। तो याद करते हैं उनकी कुर्बानी को कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके विजयी भव का नारा लगाया था।
1: बिल्कुल, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: दोस्तों, आज बुधवार है और सेगमेंट होता है इतिहास। आज इस सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु के थुथुकुड़ी जिले के कजुगुमलाई के में स्थित वेट्टुवन कोइल के बारे में। यह चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक अद्भुत और बेजोड़ नमूना है। 8वीं शताब्दी के इस मंदिर को अक्सर दक्षिण का एलोरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की तरह ही एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। वेट्टुवन कोइल का तमिल में शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तिकार का मंदिर या काटकर बनाया गया मंदिर। यह मंदिर पूरी तरह से कभी भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण इसका गर्भगृह और निचला हिस्सा आज भी अधूरा है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा और शिखर मूर्तिकला की दृष्टि से पराकाष्ठा पर हैं। सामान्यतः तो मंदिर है जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, लेकिन वेट्टुवन कोइल एक विशाल पहाड़ी की चट्टान को आयताकार रूप में गहराई तक काटकर फिर बीच के बचे हिस्से को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए मंदिर का रूप दिया गया है।
1: श्रोताओं, यह मंदिर अपनी वास्तुकला और निर्माण विधि के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रारंभिक पांड्य शासकों ने कई गुफा और पत्थर के मंदिरों के निर्माण में सहायता की। यह पांड्य युग के एकमात्र ज्ञात अखंड मंदिर का उदाहरण है, जिसे पहाड़ी की चोटी से 3 आयामों में यथास्थान तराशा गया था। और यह मंदिर तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा एक संरक्षित स्मारक के रूप में रखरखाव और प्रशासन के अधीन है। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया यह मंदिर, जिसका आयताकार भाग 7.5 मीटर गहरा है। मंदिर की नक्काशी में मंदिर का ऊपरी भाग दिखाया गया है, जबकि निचला भाग अधूरा है। मूर्तियां और नक्काशी उस काल की पांड्य कला की झलक देती है। ग्रेनाइट की चट्टान खिले हुए कमल की तरह दिखती है, जिसके 3 और पहाड़ियां हैं। और विमान यानी गर्भगृह की छत में पार्श्व देवताओं, शिव के सेवकों जैसे गण, मृदंग बजाते हुए चित्रित दक्षिणा मूर्ति, शिव अपनी पत्नी उमा के साथ, नर्तकियों, नंदी और बंदरों और शेरों जैसे जानवरों की विभिन्न आकृतियां बनी हुई है। इतिहासकार बताते हैं कि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दक्षिणा मूर्ति को मृदंग बजाते हुए दर्शाया गया है, जबकि अन्य सभी स्थानों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है।
0: यहाँ आपको कई देवी देवताओं की जीवंत मूर्तियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस मंदिर के अधूरे रहने के पीछे स्थानीय स्तर पर एक लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक पिता और पुत्र के बीच एक प्रतियोगिता हुई। बेटे ने पहाड़ी के ऊपर हिस्से को तराशना शुरू किया और पिता ने पहाड़ी की तलहटी में बनाना शुरू किया। बेटे ने काम करते हुए इतनी जोर से हथौड़ी की आवाज की कि पिता विचलित हो गए। गुस्से में आकर पिता ने अपने ही बेटे पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और इसी वजह से यह खूबसूरत मंदिर हमेशा के लिए अधूरा रह गया। वेट्टुवन कोइल के ठीक पास ही जैन गुफाएं भी हैं, जहां तीर्थंकरों की शानदार मूर्तियां हैं। इसलिए यह स्थान हिंदू और जैन दोनों संस्कृतियों के ऐतिहासिक मिलन का गवाह भी है। आज यह स्थल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। अगर आप प्राचीन भारतीय वास्तुकला, पत्थरों को जीवंत करने की कला और इतिहास में रुचि रखते हैं, तो दोस्तों, वेट्टुवन कोइल कला का एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हर कला प्रेमी को करीब से देखना चाहिए।
1: तो दोस्तों, आप भी कब घूम रहे हैं, जाइए वेट्टुवन कोइल को देखिए और वहाँ की जो वास्तुकला है उसे नज़रअंदाज जरूर अपने में कीजिएगा कि कितना अद्भुत है वहाँ का पुरातत्व।

0: दोस्तों, धरती हमारा घर है और इसकी मिट्टी जीवन का आधार है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन और हमारी ही गलतियों के कारण हमारी धरती का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रहा है और इस गंभीर समस्या को मरुस्थलीकरण कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन यानी 17 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि कैसे हम अपनी जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं और सूखे जैसी आपदाओं का मिलकर सामना कर सकते हैं। यह दिन केवल समस्याओं को गिनाने का नहीं बल्कि उनके ठोस समाधान खोजने और उन पर अमल करने का संकल्प है।
1: बिल्कुल दोस्तों, मरुस्थलीकरण और सूखा किसी एक देश की समस्या नहीं, यह पूरी मानवता के अस्तित्व पर संकट है। 17 जून का यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हमने आज अपनी मिट्टी और पानी को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों के पास जीने के लिए सुरक्षित धरती नहीं बचेगी।

0: इश्क मगर कब माने है।
1: दोस्तों आइए अब मिलकर सुनते हैं एक भेंट वार्ता। डॉक्टर हनुमान सहाय जाट, डायरेक्टर काजरी जोधपुर से संजय व्यास की बातचीत, जिसका विषय है खेत बचाओ अभियान।
2: मित्रों, खेत जिस पर हम फसल के रूप में सोना उगाते हैं, वो केवल जमीन का टुकड़ा नहीं हो सकता। उसकी उर्वरा शक्ति और पोषक तत्व ये तय करते हैं कि फसल की गुणवत्ता और मात्रा कितनी होगी। ये एक संपदा है जिसकी हिफाजत करने की आवश्यकता है। और हम अपने इस खेत को, जमीन के टुकड़े को किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो चीजें उर्वरा शक्ति और पोषक तत्वों के रूप में खेत हमारी फसल को देता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी पूंजी है जिसे छीजने से, जिसे खत्म होने से, जिसे व्यय होने से हमें बचाना होता है। खेत को बचाने की चुनौती एक बड़ी चुनौती है, जिसे शायद हमारे श्रोता आमतौर पर समझना भी चाहेंगे कि किस तरह से खेत हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं और जिसे हमें पुनः रिक्लेम करने की आवश्यकता है, पुनः हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है। और खेत बचाने का अर्थ क्या है? खेत कोई ले नहीं जा रहा है, जमीन को कोई भूमि को ले जा नहीं सकता, लेकिन भूमि के भीतर जो ताकत है, शक्ति है, वो कहीं ना कहीं कम तो नहीं हो रही है। और ये अगर शक्ति कम हो रही है तो हम कह सकते हैं कि खेत हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बंजर जमीन का एक टुकड़ा भर रह जाए जिस पर हम फसल उगा ही ना पाए, तो हम ये कहेंगे कि खेत हमारे हाथ से निकल गया है। तो इस तरह से हमें अपने खेत को वापस क्लेम करना है, उसे बचाना है। और ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे। आज विशेषज्ञ के रूप में विशेष आमंत्रित मेहमान हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के निदेशक डॉक्टर हनुमान सहाय जी जाट। बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
3: धन्यवाद जी।
2: सर, ये एक अभियान आपने चलाया है और बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, खेत बचाओ अभियान, स्वस्थ मृदा, सुरक्षित फसल और समृद्ध किसान। तो आमतौर पर इस तथ्य की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं, किसान का तो जरूर जाता होगा, लेकिन जो खेती किसानी करने वाला वर्ग आमतौर पर नहीं है, उसको लगता होगा कि खेत बचाना क्या है, खेत पर बाड़ लगा दो तो शायद उसमें जानवर नहीं आएंगे, फसल नहीं खाएंगे, या फिर उसकी जो बंटवारे के कागज वगैरह ठीक कर लो तो कोई कब्जा करने नहीं आएंगे।

0: और खेत हमने बचा लिया, लेकिन खेत बचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि खेत बचाने का मतलब क्या है, ये जो अभियान आपने चलाया है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और ये क्या है सर?
1: देखो जी, जो खेत बचाओ अभियान की जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है उससे पहले हमें उसके मूल कारण में जाने की ज़रूरत है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी।
0: यस सर,
1: तो यदि हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष की, यदि मैं बात करूं तो देखते हैं तो जो दो तीन चीज़ें जो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो समस्याएं खड़ी कर रही है। एक हमारा कि अंधाधुंध जो हमारे रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग करते हैं। यदि आज आप देखोगे पूरे देश में कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का एक रेशियो होता है फसल की डिमांड के हिसाब से डाला जाता है, लेकिन किसान ज़्यादातर नाइट्रोजन का तो उपयोग करता है, फास्फोरस और पोटेशियम के दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कम से कम यूज करता है। उससे क्या आता है कि हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो उर्वरा शक्ति ठीक से नहीं बन पाती, क्योंकि इम्बेलेंस हो जाता है फर्टिलाइजर्स का, असंतुलित हो जाता है। इसलिए तो फसल में हमारी जमीन तो खराब होगी होगी, बाकी हमारे जो फसल का उत्पादन है वो भी नहीं हो
0: यानी
1: पाता।
0: जमीन में हम केवल यूरिया डाल रहे हैं, ये हम कह सकते
1: यूरिया
0: हैं,
1: ज्यादा डालते हैं जी,
0: ज्यादा डाल रहे
1: बाकी
0: हैं।
1: जो DAP है, MOP है, जो फॉस्फोरस पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर है वो कम डालते हैं, क्योंकि जो पौधा आपका जो लेता है तत्व वो सारे एक संतुलित मात्रा में लेता है। ऐसा नहीं कि आप नाइट्रोजन ज्यादा डाल दोगे तो उससे उत्पादन ज्यादा हो
0: इसका क्या
1: जाएगा।
0: कारण है सर कि किसान को क्यों लगता है कि केवल जो यूरिया है वही ज्यादा जरूरी है? क्या उससे पौधे की ग्रोथ एक बार की दिखती है इसलिए उसको लगता है कि काम हो गया है मेरा?
1: क्योंकि यूरिया डालने से क्या होता है, जैसे आप यूरिया डालोगे, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जैसे आप डालोगे तो दो तीन दिन बाद में आपको फसल के ऊपर इसका इफेक्ट नजर आने लग जाता है।
0: जी
1: पत्तियां आपकी डार्क ग्रीन हो जाएगी, पौधा भी आपको स्वस्थ दिखेगा, लेकिन पौधे इसके अलावा जो फास्फोरस और पोटास जब ये डालते हैं तो उतना इफेक्ट जल्दी से नहीं आता जितना कि आपका यूरिया का आता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यूरिया डालने से अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन हर पौधे की, हर फसल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। यदि उस रिक्वायरमेंट से यदि हम ज़्यादा डालेंगे तो एक तो जमीन में पड़ा रहेगा, दूसरा फसल के कोई काम में नहीं आएगा, और यूरिया तो ऐसा है जिसका वोलेटलाइजेशन भी हो जाता है और नीचे लीचिंग भी हो जाती है, उसमें कई चीज़ें हैं। तो एक तो अंधाधुंध हम जो प्रयोग करें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का उसको कम करना, दूसरा जो हमारे जो रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं या वीडिसाइड्स है उनका भी किसान आवश्यक मात्रा से ज़्यादा डालता है। तो एक तरफ खाद ज़्यादा डाल रहा है, दूसरी तरफ आपके रासायनिक साइड्स हैं पेस्टिसाइड्स हैं वो ज़्यादा डाल रहे हैं, और तीसरी तरफ यह है कि उसके अंदर गोबर की खाद है या कंपोस्टिंग है या ग्रीन मैन्यूरिंग है या क्रॉप रोटेशन वो कम अपना रहा है। तो यदि हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपकी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो घटती जाएगी, जिससे जो ज़मीन है वो बंजर होने का अंदेशा रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के, उन्होंने पूरे भारत में एक ये योजना शुरू की है जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान, जो 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे देश भर में चलेगी, ताकि किसान अपने खेतों को बचाए, जो आने वाली पीढ़ी है ताकि उनको भी उसमें से अनाज उत्पादन करके वो अपना भरण पोषण कर सके।
0: जी, आपने कहा कि उसकी जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो खराब हो जाती है, कम हो जाती है अगर आप अंधाधुंध उपयोग करेंगे, जिस चाहें तो आप खाद का, आपने बताया रासायनिक खाद का, या फिर जो कीटनाशी जो केमिकल्स यूज करते हैं उनकी वजह से। तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्या जो जो भी फसल हम लेते हैं उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी से आते हैं, इसलिए जरूरी होता है मिट्टी का स्वास्थ्य?
1: जी देखो, मिट्टी का यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मिट्टी में यदि हम देखते हैं तो जो हमारे 16 और 20 भी बताते हैं हम दोनों ही जो एलिमेंट्स है वो पौधे को जीवन यापन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। आपके जो 20 हमारे एलिमेंट्स है वो चाहिए ही चाहिए। यदि 20 में से मान लो सपोज कि नाइट्रोजन आपका मान लो कि 1% नाइट्रोजन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, तो उसके हिसाब से फॉस्फोरस चाहिए, उसके हिसाब से पोटाशियम चाहिए, उसके हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। जब इन तत्वों में इम्बेलेंस होगा तो जो पौधे की भड़वार है, जो पौधे का विकास है वो कम होगा। तो सॉइल हेल्थ यदि आपकी कमजोर है तो उसमें उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आपकी फायदा है फसल उगाने से वो फायदा भी कम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करें। बैलेंस फर्टिलाइजर आपका जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है NPK है, चाहे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उन सबका बैलेंस रूप में जितना उपयोग देंगे उतना ही आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, न्यूट्रिशियस प्रोडक्शन होगा, और जिसको हम खाएंगे तो मुझे लगता है जो हमारी हेल्थ है या हमारे जानवरों की हेल्थ है उनमें भी सुधार होगा।
0: जी, आपने कहा सर जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको सुधारने के लिए मान लीजिए किसान भाई जो हमारे वो खेत बचाओ अभियान से जुड़ गए हैं, तो उस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वो कर क्या सकते?
1: इसमें कई चीज़ें हैं जी, इसमें ये चीज़ें हैं कि एक तो हमारा जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हमें करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऐसे कहेंगे कि जितने भी फसल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप रासायनिक उर्वरकों से ना दें, उसका कुछ पोर्शन 20% 25% आप जो जैविक खाद हैं, चाहे आपका FIM है जो आपके पास होता है, चाहे आप कंपोस्टिंग है, चाहे वर्मी कंपोस्टिंग है, चाहे आपकी ग्रीन मैन्यूरिंग है, इन सबको जब तक हम समावेशित करके नहीं देंगे तब तक आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हम जोर इसीलिए दे रहे हैं।

0: इस पे ही दे रहे हैं कि आप जितने भी समन्वित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके हैं प्लस आपके जो बायोलॉजिकल्स है, चाहे आपका पीएसबी है या दूसरे जो भी हमारे राइजोबियम है, इनसे आप उपचारित करें और उपचारित करके लगाएं, तो जब हम समन्वित सब चीज़ों को एक साथ करेंगे तो आपकी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारी फसल ठीक रहेगी, हमारी फसल ठीक रहेगी तो हमारी भी सेहत ठीक रहेगी।
1: आपके खेत की मिट्टी की तबीयत किस तरह की है, इसके लिए बहुत सारे परीक्षण होते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी मृदा के भी डॉक्टर होते हैं, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मृदा किस हद तक अब स्वस्थ है, या उसमें क्या-क्या ऐसे तत्वों की कमी हो गई है जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है?
0: हाँ जी, इसके अंदर क्या है कि जो मृदा परीक्षण करने की जरूरत है, हम हर किसान भाई को हम हमेशा निवेदन करते हैं और हम आपके माध्यम से भी निवेदन करते हैं कि सभी किसान भाई जो भी उनका जो मिट्टी का नमूना है वो हमारे संस्थान में लेके आएं, या जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की जहाँ पे लैब बनी है वहाँ पे लेके आएं और अपने जो मिट्टी का नमूना है उसकी जाँच करवाएं। तो उसके अंदर जो मिट्टी के नमूने में जो जाँच करते हैं वो करीबन 12-13 तत्वों की हम जाँच करते हैं, उससे हम किसान को ये बता सकते हैं कि आपकी जमीन में इन इन पोषक तत्वों की कमी है, और इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको ये खाद आपको रासायनिक उर्वरक के रूप में देना है, ये खाद आपको जैविक खाद के रूप में देना है, या क्रॉप फसल का विविधीकरण करना है, क्रॉप फसल चक्र अपनाना है, तो हम उनको सब परामर्श देते हैं। तो किसान भाई से हम निवेदन करते हैं कि 2 साल में या 3 साल में एक बार अपना खेत का मिट्टी का नमूना उसकी अवश्य हमारे पास जाँच करवाएं,
1: जी
0: और
1: सर,
0: उसके आधार पर ही आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें।
1: एक और जो समस्या या चुनौती है मृदा स्वास्थ्य को लेकर के, वो फसल अवशेष का निस्तारण किस तरह से करें? तो अक्सर किसान भाई उसको अवशेषों को खेत में ही जला देते हैं, इसका खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है?
0: देखो जी, फसल अवशेष होता क्या है, फसल अवशेष में बहुत सारे आपके जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, फसल अवशेष में पोषक तत्व होते हैं,
1: अच्छा, तो
0: चाहे
1: खेत के
0: और
1: लिए, खेत की मृदा के स्वास्थ्य के लिए वो फायदा कर सकता है अगर
0: यस
1: उसका ढंग से हम उसको निराकरित करें
0: हाँ,
1: तो?
0: तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो फसल अवशेष होते हैं, क्योंकि फसल अवशेष होता है उसमें भी आपके सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, तो यदि फसल अवशेषों को यदि हम जला देंगे तो यदि जलाने से जो मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े क्या लॉस होते हैं, यदि हम फसल अवशेष जलाते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है 100% जल जाता है जी, जो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 80% तक वो जल जाती है जी, जो उसमें फॉस्फोरस होता है 50% के आसपास वो भी जल जाता है जी, और ऐसे ही जो दूसरे तत्व हैं चाहे आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी जल जाते हैं, तो फसल जलाने से इतने सारे लॉस होते हैं। दूसरी तरफ क्या होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे दूसरी जो गैसेज है वो भी उनसे निकलती है, तो फसल अवशेषों को जलाना कभी भी जो हमारी सोयल हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं होता। हम तो कहते हैं जितने भी फसल अवशेष होते हैं उनको खेत के अंदर ही मिला दिया जाए, ताकि खेत में एक तो आपके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, और आप यदि दूसरे साल में जो आप फर्टिलाइजर देते हैं उनके अंदर भी आप 10 से 20% या 25% तक की आप कमी ला सकते हैं। तो किसान भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि फसल अवशेष को भूल करके भी न जलाएं, या तो आप खेत में मिला दें या उनको कंपोस्टिंग जो पिट बनाते हैं वहां पर उनका यूज करके उनको खाद के रूप में भी आप दे सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारा जो सर इलाका है शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर एक तो जल की कमी अपने आप में बड़ी चुनौती है, तो उसके संरक्षण की भी आवश्यकता है, और दूसरा कुछ क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है ऐसा महसूस किया गया है। तो ये जो दो बड़ी चुनौतियाँ हैं, एक तो ये कि पानी का संकट है, उससे कैसे निपटें, उसके लिए क्या ऐसे इनोवेटिव तरीके हम अपना सकते हैं, और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती है जो हमें अब सामने दिख रही है, उसको हम किस तरह से, उस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं?
0: देखो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, यदि हम आज का सिनेरियो देखता हूँ और आज से 30 साल पहले का सिनेरियो देखता हूँ, दोनों में रात दिन का फर्क है। फर्क इसलिए कि एक तो जो क्लाइमेट चेंज आपका टेम्परेचर है वो देखोगे, यदि आप वर्ल्ड लेवल पे भी आपका 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ रहा है, और वही सेम सिनेरियो देश के अंदर भी हो रहा है। यदि वल्नरेबिलिटी की बात करें तो हमारा देश में जो एरिड इको सिस्टम्स है, दूसरे इरीगेटेड इको सिस्टम है, ये ज़्यादा वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू अदर इको सिस्टम्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे जो क्रिटिकल जो चीज़ है वो है जल, वर्षा जल। वर्षा जल का जो हम संचय करें जो भी हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें आप उनको संचय करें, चाहे आपका वो आपका टांका हो, चाहे आपका खड़ीन हो, चाहे आपकी डिग्गी हो, या आपके दूसरे जितने भी पौंड हो उनमें आप उनको संचय करके रखें। फिर भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे डिग्गी फॉर्म वाला स्कीम है, आपकी फार्म पौंड की स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो किसानों को मैं यही निवेदन करता हूँ कि जितना भी पानी बारिश का होता है उसको अपने खेत से बह के बाहर दूसरे खेत में न जाने दिया जाए, वहीं पर आप उसको स्टोर करें और उस स्टोर करने के बाद उस पानी को आप लाइफ सेविंग इरीगेशन के रूप में दें। यदि फसल जैसे जिस समय आपको लग रहा है कि फसल में अभी सूखा पड़ने वाला है, तो आप ऐसा सिंचाई का तरीका अपनाएं जिससे कि आपकी इरीगेशन की एफिशिएंसी बढ़े। तो आप उसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कर सकते हैं, आप उसमें स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम कर सकते हैं, आप उस बेड प्लांटिंग और फरो इरीगेशन भी कर सकते हैं, ताकि कम पानी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन लिया जा सके। तो किसानों को हम यही करते हैं कि आप स्प्रिंकलर और ड्रिप का जितना उपयोग कर

0: सकते हैं, जो हमारे पास हार्वेस्टेड वाटर है उसमें वो यूज़ करें, और जितने खेत में आप इरिगेशन दे सकते हैं उतने दें और अपनी फसल को बचाएं।
1: बिल्कुल। और शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए काजरी एक शीर्ष संस्थान है, तो ये किसानों के लिए अभी वर्तमान में क्या ऐसे काम चला रहा है संस्थान?
0: हम कादरी में टोटल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम कंप्लीट एग्रीकल्चर के लिए सॉल्यूशंस देते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमारा जो संस्थान है किसी एक क्रॉप के ऊपर नहीं है, ना एक कमोडिटी के ऊपर है। हमारा संस्थान सभी डिपार्टमेंट्स को कवर करता है, चाहे वो आपका क्रॉप ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोयल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको एक्सटेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो हमारा ये जितने भी एरिड रीजन्स में, जो हमारे शुष्क क्षेत्र है, इन शुष्क क्षेत्रों में जो भी नवाचार हमारा संस्थान कर रहा है उनको हम, हमारे जो प्रचार प्रसार का डिपार्टमेंट है या जो हमारे संस्थान के साथ 3 केवीके लगे हैं, उन केवीके से हर नवाचार को हम किसानों के खेत तक ले जाते हैं, ताकि किसान को नई चीजें मिले और किसान, ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। क्योंकि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रकृति आपका जो बारिश में पैटर्न भी चेंज हो रहा है, इन सब चीजों को कोप अप करते हुए हमारी कोशिश यही रहती है कि किसान की आमदनी कैसे दुगुनी बढ़ाई जाए। और मुझे लगता है कि इस आमदनी दुगुनी बढ़ाने के ऊपर हम प्रयासरत हैं, और मुझे लगता है कि किसानों को इसका जरूर फायदा मिलेगा।
1: किसानों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों से मैं यही संदेश देना चाहते हूँ कि आपकी जो खेती है, जो आपका खेत है, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही अच्छा संसाधन है, और इसके ऊपर आपकी आपका जीवन टिका हुआ है। तो हमारी खेतों की जो सेहत है इसको आप जो सुधारने के लिए प्रयास करें, आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल अपनाएं, और जो भी कोई समस्या आती है, आप जैसे ही समस्या आती है या कृषि विभाग या जो हमारा कादरी सेंटर है, आप उसे तुरंत आप उसके संपर्क में, और उसके लिए हम आपका जो जो भी सोल्यूशंस उसका होता है उसके लिए हम आपके लिए रात दिन हम आपके साथ खड़े हैं और आपका सोल्यूशंस हम करने के लिए तैयार हैं।
1: डॉक्टर हनुमान सहाय जाट, निदेशक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए आपका, बहुत
0: धन्यवाद जी,
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता डॉक्टर हनुमान सहाय जाट, डायरेक्टर काजरी जोधपुर से संजय व्यास की बातचीत। विषय था खेत बचाओ अभियान। प्रस्तुति एवं संयोजन था राजेश लामरोड का।

0: दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करना प्रकृति पर कोई उपकार नहीं, यह तो हमारी अपनी सांसों और आने वाली नस्लों के वजूद की जंग है। क्योंकि जब तक प्रकृति सुरक्षित है तभी तो हमारा अस्तित्व है। वैसे तो प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की जादुई शक्ति होती है, उसे हमारे किसी कृत्रिम प्रयास की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमें तो केवल उसके रास्ते के जो अवरोध हैं, इंसानी दखल है, उसको हटाने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो प्रकृति खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा सा भी सहारा दें, तो प्रकृति उस छोटे से प्रयास को एक बड़े वरदान में बदल देती है।
1: दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़ी जमीन पर कुछ करना होगा, और इसी उधेड़बुन में हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन एक जापानी तकनीक है जिसे मियावाकी तकनीक कहा जाता है, और यही है आज की हमारी खास बात, जिससे हम अपने घर के किसी कोने, किसी सूनी पड़ी जमीन या शहर के एक छोटे से हिस्से में स्थानीय पौधों को एक दूसरे के करीब लाकर अदृश्य धागे में पिरोते हैं, तो प्रकृति वहां अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। मतलब इस तकनीक के जरिए हम छोटी सी जगह में भी घना जंगल तैयार कर सकते हैं, यानी कम जगह में बहुत तेजी से घना जंगल उगाने की एक आधुनिक जापानी तकनीक है।
0: बिल्कुल, इसकी खोज जापान के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र डॉक्टर अकिरा मियावाकी ने की थी। इसमें केवल उसी क्षेत्र की स्थानीय मिट्टी और जलवायु में उगने वाले पौधों, जैसे नीम है, पीपल है, बड़ है, शीशम है, आंवला है, अर्जुन है, इनको चुना जाता है। पारंपरिक तरीकों से अलग इस तकनीक में पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है।
1: इसमें झाड़ी, छोटे पेड़, मध्यम पेड़ और ऊंचे वितान वाले पेड़ों को मिलाकर लगाया जाता है, जिससे बिल्कुल प्राकृतिक जंगल जैसा दिखता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और यह तकनीक कैसे काम करती है? इसमें पौधे हैं जो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वे सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस होड़ के कारण वे बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और पास पास होने के कारण उनकी पत्तियां जमीन तक धूप नहीं पहुंचने देती, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और अनचाही घास पर खतपतवार है जो नहीं उग पाते हैं। इस पद्धति से पौधे सामान्य के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, और केवल 3 साल में ही जंगल पूरी तरह तैयार होकर आत्मनिर्भर हो जाता है। यह आम के बगीचों से 30 गुना ज्यादा घना होता है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है और पक्षियों और कीट पतंगों को बेहतरीन ठिकाना मिलता है। जहां एक प्राकृतिक जंगल को बनने में 50 से 100 साल लग जाते हैं, वही मियावाकी तकनीक की मदद से इंसानी प्रयासों द्वारा मात्र 3 साल में एक आत्मनिर्भर और घना लघु वन तैयार किया जा सकता है। अगर आप भी अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तकनीक को अपना कर खुद का और प्रकृति दोनों का सहयोग कर सकते हैं। यही है आज की खास बात।

0: श्रोताओं, अब हम करते हैं काम की बात। और आज काम की बात में हम आपको बताएंगे बचत के तरीके। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कई तरह के विविध योजनाएं शुरू की गई थी। उसके बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भी कई नई योजनाओं को प्रारंभ किया गया। भारत में वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो शानदार बचत योजनाएं मौजूद हैं, उनमें सरकारी गारंटी और शानदार ब्याज दरें मिलती हैं। सरकारी और डाकघर बचत योजनाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं और इनमें जोखिम न के बराबर होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ, सार्वजनिक भविष्य फंड। यह 15 साल की लंबी अवधि की योजना है जो कर छूट का लाभ प्रदान करती है और इसमें करीब 7.1% तक ब्याज मिलता है। इसी तरह श्रोताओं, अगली योजना के बारे में हम बात करते हैं, वो है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आपको निश्चित ब्याज दर लगभग 7.7% का लाभ मिलता है। एक होती है MIS यानी डाकघर मासिक आय योजना। इसके तहत आप मासिक रूप से एक निश्चित ब्याज प्राप्त आय प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 5 साल की अवधि होती है। अगला है किसान विकास पत्र। यह योजना भी एक निश्चित समयावधि में आपके पैसे को दोगुना करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। और मित्रों, बालिकाओं के लिए एक प्रसिद्ध योजना है सुकन्या समृद्धि योजना SSY। 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के लिए यह एक बेहतरीन योजना है जिसमें लगभग 8.2% ब्याज मिलता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ भी प्रदान करती है। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए बचत योजना जो है वो है SCSS। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। यह तिमाही आधार पर लगभग 8.2% का आकर्षक ब्याज देती है और 5 साल की लॉक इन अवधि के साथ आती है। इसी के साथ महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC भी बनाया गया है। यह 2 साल की योजना है जो सभी आयु वर्ग की महिलाओं या लड़कियों को 2 लाख रुपए तक के निवेश पर 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है। साथ ही अन्य लोकप्रिय विकल्प भी हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। इस तरह से सभी प्रमुख बचत योजनाएं हैं जिनसे आप निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं और हर माह अपनी बचत का हिस्सा डालकर बचत कर सकते हैं।
1: बात कर लेते हैं दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 5वां दिन पूरी तरह से ड्रॉ के नाम रहा। आधिकारिक रूप से 15 जून कम मजबूत मानी जाने वाली टीमों के लिए बेहद शानदार साबित हुआ और सबसे पहले केप वर्डे ने अपने रक्षात्मक खेल के दम पर यूरोपियन चैंपियन और 2010 के विश्व विजेता स्पेन को 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। इसके बाद बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे ने भी 1-1 से बराबर खेला। आखिरी मैच सबसे रोमांचक रहा, जहां ईरान और न्यूजीलैंड ने 2-2 से बेहद मनोरंजक ड्रॉ खेला और ईरान न्यूजीलैंड के इस मैच के साथ ही वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास दर्ज हो गया है। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक ही दिन में 4 मैच ड्रॉ होने का यह वाकया 68 साल बाद हुआ है। दोस्तों, इससे पहले यह अनोखा संयोग है जो 15 जून 1958 को स्वीडन वर्ल्ड कप में देखा गया था। ये थी फीफा वर्ल्ड कप की जानकारी। आइए सुनते हैं ये गीत, समापन गीत।

0: दोस्तों, आज के नमस्कार के अंक को देते हैं यही विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार।
1: और मैं मीता मुल्तानी। तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। अभिजीत सावंत की आवाज़ में सुनिए ये सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से सुनिए गीत, मजरूह के बोल, जतिन ललित का संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिल है तुम्हारा से सुनिए गीत, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

श्रोताओं, ये थी लोक संगीत की आखिरी पेशकश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा लगभग 84,000 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जैसलमेर से सेना और बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाचना क्षेत्र के हिंगोला गांव निवासी मुश्ताक अली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में था। वो पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए सेना और बीएसएफ की गतिविधियों के फोटो और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी को आज सुबह जयपुर लाया गया है, जहां अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मूज जल डमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न जिलों में शोभा यात्राओं और रैलियों के आयोजन हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर उदयपुर में आयोजित समारोह किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने तत्कालीन इतिहासकारों के नैरेटिव का खंडन करते हुए तथ्यों के साथ बताया कि प्रताप के पराक्रम और युद्ध नीति के सामने मुगल सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने और छिपने पर मजबूर होना पड़ा था। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए। ये व्यापक अभियान राज्य के 41 जिलों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में 1,34,000 से अधिक ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें 1,40,000 प्रगणकों, 23,000 पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस चरण में मोबाइल ऐप के जरिए मकानों, मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, जिसे सीधे केंद्र को भेजा गया है। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में मगरमच्छों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। पाली जिले के जवाई और देसूरी क्षेत्र के बांधों में 350 से अधिक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। जिला वन अधिकारी प्रशांत कस्तूरी ने बताया कि मगरमच्छों को जीवित

0: रहने के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त आहार और शांत किनारों की आवश्यकता होती है। जवाई बांध में इनकी लगातार बढ़ती संख्या इस बात का सकारात्मक संकेत है कि यहां का वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह स्वस्थ और इनके अनुकूल है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। राष्ट्रीय पल्स पोलो अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 28 जून रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भैया, आज आपने जानकारी दिला रही हाँ कि भाई अरंडीरी जी की खेती है वह आप किन तरह से कर सका। अरंडीरी खेती औषधीय तेल रूप में इंडी खेती वे है, इंडो जी को पौधो वे वो झाड़ेरी रूप में मैंने विकास क्रिया करे और किसान भाई व्यापारिक तौर माते इंडी खेती क्रिया करे और अधिक लाभ जी को है कमाया करे। एक खास बात आवे कि भाई अरंडीरी जी को बीज है वो लंबे टाइम रे बाद रे महीने पकिया करे और इन्हें बीजारा महीने जी की तेलरी मात्रा है वह 40 से 60% ताई हुआ करे। इन तेल रो जी को इस्तेमाल है वो कपड़ो बणीज रे महीने, इंड साथे साबुन रे महीने, प्लास्टिक रे महीने, कपड़ा रंगाई रे महीने, हाइड्रोलिक ब्रेक तेल रे महीने, वॉर्निश है इंड हाथे चमड़े रे महीने भी जी की चीजा बने उन रे महीने इंडो जी को उपयोग है वो हुआ करे। इंड हाथे हाथे औषधि रूप रे महीने भी अरंडी रे तेल रो जी को है इस्तेमाल आपा करिया करा। जीव पाचन संबंधित है, पेट दर्द उजा और जिका छोटा टाबरिया है उनारी मालिश रे वास्ते भी इंडो जी को तेल है वो बहुत उपयोगी हुआ करे। अरंडी रे बीजर महीनू आपा तेल निकालना उनरे बहादुर महीने जी की वह खड़ी बन जाया करे, उनरो प्रयोग आपा जैविक खाद रूप में महीने भी आपा कर सका। हमें सगला सु पहली बात आवे कि भाई किसान भाई अरंडी की खेती करनी चाहे तो जी की मिट्टी है वह किन तरह रहे, इनरे हाथे हाथे जलवायु है तापमान है और किन तरह से रहना चाहिए। अरंडी की खेती जी की है वह उपजो मिट्टी महीने आपा करा और इनरे हाथे हाथे खेत महीने उचित जल निकास वाली जी की मिट्टी है आ होनी चाहिए। कई किसान भाई अरंडीरी जी की खेती है वह बंजर भूमि रे महीने भी कर लिया करे। इनकी खेती जी की है अरंडीरी वह सारे भूमि रे महीने आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और भूमि रे जी को पीएच मान है वो 5 से 6 के बीच रे महीने वेनो चाहिए।

अरंडेरी खेती जी की जलवायु है और वास्ते शुष्क और आर्द्र जलवायु मैंने आप कर सका और पौधा जी का है बहुत ही अच्छी तरह से आप विकास क्रिया करें और सर्दी वाले महीने जी को आपने पालो पड़े वो अरंडेरी पौधा ने नुकसान पहुंचाया करे। शुरुआत महीने पौधा आपने विकास करे उन वक्त सामान्य जी को तापमान है इंडी आवश्यकता होया करे और फसल पाके उन दौरान जी को है वो ज्यादा तावड़ो जी को है उनकी जरूरत पड़िया करे। किसान भैया यही छोटी छोटी बात है कि भाई किन तरह की मिट्टी होनी चाहिए, जलवायु है, तापमान है और किन तरह से लेना चाहिए। हम बात आवे भाई किसान भाई आप अरंडी खेती करनी चाहे जी की उन्नत किस्मा है वह किसी किसी है वे आप काम में ले सका। किस्म मैंने जी वहां बात करा एक तो साधारण किस्म है और दूसरी जी की किस्म है वह संकर प्रजाति भी शामिल होया करे। साधारण किस्म जी की है इंद्र मैंने जी वहां बात करा ज्योति है, अरुणा है, भाग्य है, क्रांति है, ज्वाला है, ए किस्म किसान भाई आप काम में लेवे। जी वहां पर बात करा कि भाई ज्योति किस्म आप लेवा तो इंद्र मैंने तेलरी जी की मात्रा है वह 50% होया करे और उत्पादन जी को समय है वो 140 दिन से ले 160 दिन तई होया करे। इंद्र हाथाते बात आवे कि भाई आज की किस्म आप किसान भाई काम में लेवे तो इन किस्म सु कितो जी को उत्पादन है होया करे। इन किस्म सु 14 लेर 16 क्विंटल जी को है प्रति हेक्टर होया करे। इंड हाथे हाथे अरुणा जी की किस्म है वह 170 दिन में पकपरी तैयार हो जा और उत्पादन जी को है 15-20 क्विंटल वे। इन तरह भाग्य जी की है वह 150 दिन में पकन तैयार हो जा 22 लेर 25 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन होया करे। क्रांति किस्म सु पकनी जी की अवधि है वह 180 दिन में है और उत्पादन इन किस्म सु 18 क्विंटल प्रति हेक्टर हुआ करे। ज्वाला 48 एक किस्म जी की है आ 160 लेर 190 दिन में पकन आप तैयार हो जा और इन किस्म सु जी को उत्पादन है किसान भाया वो 16 लेर 18 क्विंटल प्रति हेक्टर हुआ करे। ए तो जी की हमार आपने जानकारी दे रही है अरंडेरी साधारण किस्म जी की है किसान भाई बा सके। हमें बात करा कि भाई शंकर प्रजाति जी की किस्म है जिनमें RHC1 है 50% ताई तेल री मात्रा व्या करे 100 दिन महीने पकन आप तैयार हुए। उत्पादन की बात करा किसान भाई 30 लेर 35 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन हो जा। शंकर किस्म महीने जो बात करा GCH4 है 90 लेर 110 दिन महीने पक पर तैयार हुए और साथ है 18 लेर 20 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन होया करे। DCS9 है आ 120 दिन में पक पर आपरे तैयार हुए और इन किस्म सोज को उत्पादन है अरंडीरो वो 25 लेर 27 क्विंटल प्रति हेक्टर होया करे। हमें आपरे बात आवे कि भाई अरंडीरी खेती री तैयारी वास्ते अपा खेत भी तैयार करना पड़े। पौधारी जी की जड़ा है वह घनी गहरी तक जाया करे तो इन वास्ते जी की खेतर महीने जी की मिट्टी है किसान भाया वह बुरबुरी होनी बहुत जरूरी है और खेतरी जी की पहली गहरी जुताई अपने करनी चाहिए बावनो पहला और खेतर महीने जी की मौजूद पुरानी जी की फसल है जो अवशेष कोई वे मान लो उन्होंने पूरी तरह अपने नष्ट करना है और खेतरी जुताई रे बाद महीने मान लो कुछ टाइम रे वास्ते खेत ने खुल्लो अपने छोड़ देना है उन मिट्टी ने महीने सूरज जी को तावड़ो है धूप है बढ़िया लागनी चाहिए ताकि मिट्टी ने महीने जी का मौजूद जी का हानिकारक जी का तत्व है कोई कीड़ा है कीट है नष्ट हो जाए करे। खेतरी पहली जुतेरे बाद महीने प्राकृतिक जी की खाद है उन रूप में महीने 15 लेर 20 गाड़ी जी की पुरानी अपने गोबरी जी की खाद है वह अपने आप बढ़िया डालनी चाहिए ट्रैक्टर की टोली और खाद डाल यार बाद महीने बढ़िया आप जुताई करा मिट्टी महीने खाद अच्छी तरह आप मिला दा बढ़िया पाटो लगा एकदम समतल कर ला आप बढ़िया और खेतर महीने जिन वक्त आप पानी आप सूख जाए मान लो तो 2-3 बढ़िया आप जुताई कर दा टेडी मेडी इनसो कहीं वह खेतरी जी की मिट्टी है बढ़िया आपरे भुरभुरी हो जा फाचो आपरे पाटो लगान बढ़िया समतल बनान आप खेतरी तैयारी करा। बात आवे किसान भैया कि जितने खेत अपनो समतल रहेला तो उन महीने जल भरावरी समस्या जी की है नहीं रहे पानी जी को है हगले आपरे बराबर महीने चुसी जावे और बाद महीने हल्लो पानी वह तो मान लो खेतरी जी की माटा है उनकने आपरे भेड़ो हो जावे। हम बात आवे कि भाई अरंडीरा जी का बीज री रोपाई है उन रोज को टेम है बगत है वो आपरे कणे दिया करे तो हमें अपन जो बात करा मानसून रे महीने बहुत ही बढ़िया आप अरंडी री पैदावार लेवा और वो ही करा मान लो बीजारी तो ड्रिल विधि रो आप इस्तेमाल करा इन रे महीने खेत रे महीने 4 फीट री दूरी रखता थका आप बढ़िया अपने जी की पंक्तियां है आप तैयार कर ला और पंक्तियां रे महीने बीजा ने आप 2 ले 2.5 फीट री दूरी माते आपने लगानो चाहिए। इन रे हाथ आते किसान भाई चावे मान लो तो बीजरी जी की रुपई है वे हाथों आप भी कर सके। 1 हेक्टेयर खेत में मैंने शंकर किस्मारी जी की आप बात करा 11 लेर 15 किलो जी को बीज है वो आपने लेना चाहिए। साधारण प्रजाति जी की किस्मा है तो उन महीने 20 किलो बीजों की जरूरत पड़िया करे और बीज ने बावनो पहला रुपये करा आप बीजारी उन पहला आपने उपचारित कर लेना चाहिए कार्बनडाइजिम उचित मात्रा में आप उपचारित कर ला। अरंडी रे बीजारी रुपये रो जी को आपने सब बढ़िया जी को महीनो और टाइम रहे वो जून और जुलाई रो जी को महीनो है रिया करे। किसान भाया आ ही जानकारी कि भाई आप अरंडीरी जी की खेती है वह आप किन तरह से कर सका।

0: बिल्कुल पूनम जी की कोई भी समाज सभ्यता एवं संस्कृति रहे जीवन चक्र में अगर आप अध्ययन करा तो लोकगीत जी का है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। मानव समूह सांस्कृतिक मनोरंजनात्मक संस्कारात्मक और संवेदनात्मक थातिर रूप में लोकगीत ही संरचना रहे जीवन रहे प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित कराया करा है। कोई भी उत्सव हो चाहे मंगलाचार आयोजन हो या अपने घर में कोई तीज त्योहार हो या आप घर में कोई हरजस गावा या बच्चों जन्मे या अपने देखो देखो के बनी की कोई अपने सामाजिक संदेश देना हुए या कोई प्रेरणादायक बात कहनी हुए तो भी मैं कठिन कठे अपने लोकगीत जी का है शामिल हुआ करें।
1: बिल्कुल सही कह आराधना जी। और राजस्थान की धरती तो फकत धोरारी धरती नहीं है बल्कि धींगाणे धर्म और अनमोल लोक संस्कृति री हेड़ू है। अठेरी हवा में भी एक कोड और अपनोपन है जिको आखे जगत रे मिनखा ने आप प्रकार ने खींचे है। और अठेरा लोकगीत तो अपने आप में बहुत ही निराला है और बहुत ही सुंदर है सुनन में। इतना मन मोहना है कि मतलब सुनते ही अड़ो लागे कि हाँ बस जट बारे भी बैठा हुआ नहीं तो लागे कि राजस्थान रे माई नहीं। यहाँ
0: पूनम जी राजस्थान रे आप बात करा तो इन सके अपन भारत जी को है वो भी विभिन्न कहवे नी संस्कृति और समावेश लियोड़ा है। तो अठेरो जो पहनावो है खान पान है बोली है भाषा है सब है जिका अलग।

0: अलग है, फिर भी अपन सब में एकता है। और असली चीजें ही अपन एकता में पिरोर रखे है। और एक कहावत भी है कि हर एक मैंने कोस बाद जो को है अपनी बोली और पानी जो को है बदल जाया करे। तो आज आप बोली और पानी और गीत संस्कार की बात कर रहे हैं, इन्हें ही आधार पर अपन जो को आज रो कार्यक्रम जो को है वो आपा तैयार करने सखिया वास्ते लेन आया। हाँ
1: बिल्कुल, तो जुड़िया रही जो आज इन सुरमी दोपहरी में माने साथे।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सुगणगौर, बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति रीति रिवाज परंपरा लोक गीतारी। तो राजस्थानी समृद्ध लोक संस्कृति परंपरा और लोकगीत भी अनूठा है। राजस्थान का लोकगीत केवल संगीत ही नहीं है, वे अपनो जीवन रो उत्सव रिश्तारी मिठास मान्यता और इतिहास रो जीवंत कहानियां भी है। तो इन्हीं लोकगीतारी नई पीढ़ी तक पहुँचाने रो सराहनीय काम कर रहा है उदयपुर कंटेंट क्रिएटर काजल दुलावत जी। तो आज फोन लाइन द्वारा यहाँ सुजोड़ परा राजस्थान रा लोक गीतारी विशेषता यहाँ रो महत्व और भी अन्य डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने रो प्रयास रे बारे में बात करेला। तो आकाशवाणी जोधपुर गणगौर माई घने मन सु स्वागत है काजल जी आप रो।
1: धन्यवाद, नमस्ते आराधना जी। आकाशवाणी जोधपुर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे तो मेरा नाम काजल दिलावत है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, साथ ही कल्चरल फैक्ट्स और लोक संस्कृति के बस प्रचार प्रसार करती रहती हूँ सोशल मीडिया के।
2: मैं सज धज के हो गई देखो त्यार पिया जी, किया लागे थे बता दो थारी नार पिया जी।

0: जी काजल जी, तो सबसे पहला आप हूँ जानना चाहूंगा कि आप कंटेंट तैयार करो जिसके में भारतीय लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और आप नर्सिंग रा स्टूडेंट हो, तो आप रो भारत संस्कृति जी की जुड़ाव है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति से जुड़ाव जी को आप रो रही हो, वो के न कारण हुई हो?
1: को एक तो है प्रोफेशन और एक वे रुझान। तो आपनी जो इच्छा है वह तो आप बचपन हुई देख रहा हाँ, संस्कृति ने जान रहा अतरो नजदीक हूँ। तो दूसरी आज की जो पीढ़ी है वह अतरो ध्यान नहीं ध्यान रख सके, वे अतरो सिर्फ वाइब करवा पे ध्यान रखे। लेकिन अगर आप वहां बतावा वनारिस भाषा में अगर आप वहां बतावा तो वे भी समझे ना, पीढ़ी तक भी बात पहुंचे, नहीं तो अटे रहते ही रह जावा।
0: बिल्कुल काजल जी, तो राजस्थान रे लोकगीत जी का है वीणी परंपरा घनी समृद्ध और रंग बिरंगी है। तो सबसे पहले तो आप माने श्रोतावाना बताओ कि अठे कौन कौन सा प्रमुख लोकगीत है वे गाया जावे और उनारी काई विशेषता है।
1: देखो आपने अटे जो गीत वे जन्म उल्लैन मृत्यु तक रा वे मतलब कटे कई कमी नहीं रेवे, अटे प्रेम और श्रृंगार रा गीत वे अटे विवाह गीत वे अटे कशो मौसम बदले तो भी ऋतु गीत वे अटे भक्ति गीत शौर्य वीर रस गीत। आपने तो वीरा री धरती है या तो अटे तो कटे कमी नहीं है वीर रस और गीता री। जैसे पेशेवर गीत भी वे जन्मे लांगा है मांगियार कालबेलिया ये सब जो जातियां हैं ये गावे ताकि मनारी आजीविका चल सके। जन्मे मांड भी केवे जो बहुत ज्यादा फेमस है वो भी है, जन्मे अपनो अत्रो सुंदर गीत है केसरिया बालम वो भी एक मांडवा करे नत्रा गीत है। जन्मे आपने जो लोक संस्कृति है लोक कथा है वन्य प्रचार वे तो आज जमानो नहीं वो तो बहुत टाइम हुई वो चीज वेरी है क्योंकि लोक गीत रे माध्यम इस लोग जान पाए।
0: बिल्कुल सही बात है जी, आप बार बात करी केसरिया बालम रे, यह माना जाए कि वो स्वागत गीत है, कुछ जगह यह माना जाए कि वो प्रेम प्रतीक्षा रो भी गीत है, बट ये आप बात करा चिरमिर्जी से गीत रही तो बीमे भी नारी मन री भावना है जिकी झलकिया करे, तो ये दोनों ही विधा रे बारे में आप कहीं कहना चाहोला?
1: देखो मारे हिसाब तो ये दो ही विधा जो है ये विरारी विधा है। एक तो केवे की मतलब चिरमी है, चिरमी जो है वो भी सब यूं केवे पति और पत्नी के बीच रो विरा है। लेकिन नहीं अपने राजस्थान में विरा सब वे अपने जो पीरा मना के वणा भी वे तो ऐसे चिरमी जो गीत है वे ये अपने पिता ने याद करवा वाते या अपने जो अपनी पुरानी जो यार में गीत में लाइन भी आवे कि कैसे बाबू सारी लाड ली है चीर में, तो चीर में खुद ने बतावे और पिता रो प्रेम बतावे कि मने वटे मिल दो। जैसे ही केसरिया गीत है यो एक प्रेम गीत है, यो धोला और मारूरी एक बहुत फेमस सी एक कथा है अपने राजस्थान में जिनमें नरवर रा राजा है ढोला और पुंगल री रानी है मारवणी। तो ना दोहरो जो प्रेम है वन में जो मारू है वा केसरिया बालम यो गीत एक जो गीत गावे है बनाने यो गीत देवे की था गाजो और दाढ़ी दाढ़ी लोक गायक जो वे मिलियो नरवर की आप याद देवड़ा जो डोला ने तो बनारे बेहद सुंदर एक दोहो है वन में यू केवे की केसरिया माने देश में निपजे तीन रतन एक डोला दूजी मारुणी तीजो कसबल रंग। कसबल यानी कि सुरख लाल कलर जो कि एक सुहागन का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से ये केसरिया बालम वाला गीत है लोग जो स्वागत गीत ने मान लेवे है लेकिन अन्य पीछे भी एक बहुत सुंदर सी कहानी है अन्य भी देख ले तो कतरो सही देखे।

0: बिल्कुल काजल जी, अपने मरुस्थल रे जीवन और प्रकृति री झलक आपने कई लोग गीता रामायण देखने मिले है। विशेष रूप से बात करा वीरे गीत री तो इना रामायण प्रकृति और पक्षियों रो जिको है कई महत्व है।
1: देखिए आपने जो मरुस्थल है ज्यादा आपने मनस तो इतना मल्ले नहीं, अगर आपने मल्ले तो प्रकृति मल्ले अटे पक्षी मल्ले तो पेड़ मल्ले वो बाता कर ली थी। अगर आपने जो पति है वे बाणे जहरा वे, अगर आपने जो नायिका है वना नायक कटे बाणे गो तो को है तो वे कन्नू बात करे कन्ने शेयर करने करे। आजकल तो फोन मतलब आजकल तो फोन भी है, पहले तो कुछ फोन भी नहीं आ तो वे किसी कुर्जा जैसे की कुर्जा इतना सुंदर पक्षी है, यो एक प्रवासी पक्षी है जो की सर्दिया में मारवाड़ तालाब रेतीला धोरा पे आवे तो वनडे गीता में बहुत ज्यादा लायक हो कि एक वीरानी जो महिला है वह रोते रोते पक्षी ने कहवे कि उड़न परदेश जावे तो मारो संदेश जो है वो मारे पति ने दे दीजिए कि उड़ती कुड़ जाए मारो संदेश देती जाई रे। तो ऐसे करके गीत होते हैं कि मेरा संदेश पहुंचा दो कि पति के पास की उनको याद कर रही है कि उड़ जाई मारा भंवर जी मिला दे रे। तो कई गीत है जैसे कागा गीत भी होते हैं कि आजकल तो ऐसे कौवे दिखते नहीं है, कौवा दिखता ना और अंडे भर में मतलब अपशगुनी भी माने कोई कोई तो, लेकिन आपने ऐसे तो कहवे कि उड़ उड़ जैसे कि गीत है बहुत सुंदर सा कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला जद मारा पीव जी घर आवे। तो इसमें नायिका जो है इस गाने में ना नायिका यू लालच भी देवे कौवा ने अगर वनडे पति रो आवारो शुभ समाचार अगर दे दे तो थाई चोथी पूरी सोनो उमड़वाई दंगा। तो ये पूरा प्रेम का ही तो होता है कि यो जो प्रेम है यो विरह है यो कागला उंगटे के दू कटे कुर्जा ने के दू। जैसे पीपल रा पेड़ रे भी गणी वेवे की पीपल रे पेड़ ने कहवे की अटे पीपल रो पेड़ जिन्हें नानो थको हो तो माँ और मारे जो पति आवना दई अना वायो हो भाई वो भी मोटो हो गयो लेकिन आज तक अनारी खबर नहीं है ये वना बहुत सारी खबर नहीं है ये क्यों यू करें वे याद करें अना पक्षियां पेड़ अनारे प्रति।

0: कजल जी, जी राजस्थान जो है वो वीरारी धरती है जिको कही जाए, तो अठे वीर रस जुड़ा भी बहुत सारा लोक गीत है, तो शौर्य और पराक्रम में किन प्रकार है जिको आप अभिव्यक्त करना चाहो लोग गीता द्वारा?
1: देखो आपने या पूरी आप सही क्योंकि तो अटे वीर रस तो बिल्कुल कमी नहीं है, चाहे महिला वो चाहे पुरुष वो। अटे जैसे कि पुरुष अरे बात है आपने अगर कहे तो महाराणा प्रताप रात्रा सुंदर सुंदर गीत है कि हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, दुर्गादास राठौड़ जी रे बारे में अतरा बढ़िया गीत है, चंग गीत जे गावे कुशल सिंह जी चंपावत रे बारे में जना अंग्रेजों लड़ाई, और महिलाओं के जो है वो वीर प्रसूता रा गर्व में गाणु गावे है, जैसे कि एक बहुत सुंदर और बहुत फेमस सी लाइन है कि इला न देनी आपनी हालरिया हुल रहा है, तो इनमें यूं कहवे माँ की अपने बेटे को पालने में जिन्हें वे झुलावे ना, तो ये कहती है कि मातृभूमि रे वाते हस्त हस्त कट जाओ तो भी कोई गम नहीं।

0: तो बिल्कुल काजल जी, अपन अठे लोक देवी देवता री आराधना में गाए जावन वाला भक्ति गीता में राजस्थान री संस्कृति में कई स्थान दियोड़ो है, और इना ने गाता टाइम किन प्रकार भाव है जी को अपन होना जरूरी है।
1: अपने जो राजस्थान संस्कृति में भक्ति गीत है, आप सबू ज्यादा बड़ो एग्जाम्पल तो अपने मीराबाई है कि कत यू के वे गौतम बुद्ध वना संन्यास ले ली, दोवे भगवान में परा गया, लेकिन आपने जो मीराबाई है वना इतना सुंदर सुंदर पद लिखा, वे भी सब दुनिया मोह माया छोड़ दिया, वे तो रानी हाँ फिर भी। तो बण में भक्ति गीत आपने जो पब्बू जी है, अपने गोगा जी, ये लोग देवी देवता है, अणारा भी गीत बड़ा फेमस है, और अणामू वनारी जो कथा है वह अपन सुनवा मिले। रामदेव जी का वो गीत बहुत ज्यादा वो साले आजकल तो यूं कि अजमल जीरा बीरा माता मेणा देरा लाल, तो यो गीत आवे तो आप पतो पड़े कि वाह कई आपनों संस्कृति। और अणा गीता में ना यह सब बड़ी बात है कि हमें जो सामाजिक एकता जो है वो मिले। आपने राजस्थान में कभी जात पात को सिस्टम हो ही नहीं कि आपने जो लोक देवता वे भी आपने अशाह की यो रास्ता भी नहीं बना, गीत में भी नहीं नजर आवे, सब वनारे दर पे आवे। रात्रि जोगो है, जैसे कि मांगलिक कार्य कहीं भी शुरू हुए तो रात्रि जागा जमा ये देवे, अणमे आपने जितरा भी लोग देवी देवता है वनाने याद करियो जावे, और यो सब एक पॉजिटिविटी लावा वाते वे।

0: अपने राजस्थान में विवाह रो जद माहौल हुए तो विण समय भी हर रस्म रसागे कोई न कोई लोक गीत जुको है वे जोड़ोड़ा रहे। अपने श्रोताओं ने आप बताओ कि विवाह समारोह में कौन कौन सा प्रमुख लोक गीत जिका है वह गाया जावे।
1: विवाह गीत जो अपने पीठी हल्दी बन्ना बन्नी आपने तो शुरुआत लागे विदाई तक ओलियो तक गावे सीठने गावे कांकन डोरड़ा हथलेवा वे सब तो बना में जो पीठी गीत है बना उपटन लगाता लगाता गीत गावे बन्ना बन्नी रा गीत गावे जन में बहुत सुंदर सा गीत है की बेवर भाभी संग यू नी की सिर्फ बन्ना बन्नी मेन वे वे वटे वटे आपने देवर भाभी रो भी प्रेम वे वे आपने माता पिता रो भी वे कचा बाईसा लाडका गणा तो छोटी छोटी है कि चिड़कोली एक बहुत सुंदर गीत है कि मत दो बाई ने गाल बाई मारी चिड़कोली तो ये सारी चीजें माँ बेटी का रिश्ता भी बताती है। ब्याह में जो घोड़ा गीत वे वे वे बारात रो डेरो जो वे ठिकाणों वे वो देखवा जावे ना जल्लो गीत गावे जल्ला गीत गावे तोरण जिन्यान बांधवा आवे वन्यान गीत तोरण गीत और ओलियो ओलियो तो सब याद वे की ओलियो यानी याद तो बेटी रे घर विदा वे तथा का सेलियान माँ कोयलड़ीन ओलियो नशा गीत गावे ताकि पूरो

0: બિલકુલ કાજલ જી, આપ સહી વાત બતાઈ. ઓર બ્યાં વર પછી એક ઇંતજાર રહે કે ઘર માં એક છોટો સો ટાબર રહો, તો જચ્ચા બચ્ચા ઓર જન્મ સંસ્કારો સે જુડ્યા લોક ગીતા મેં બહોત હી ગહેરી સંવેદના હૈ વાં છિપી ઉડી હોયા કરે. તો ઇન ગીતા રે માધ્યમ સુ કુણ કુણ સા ભાવ હૈ જીકા વ્યક્ત કર્યા જાયા કરે.
1: सबों पहला अगर ये जच्चा बच्चा जैसे कि बच्चे हो जाते हैं वन्यान, तो सबू जो मेन जो वे वो महिला माते वे जा माँ वणी थकी वे, तो वणा माते भी बहुत यूं वे गुगरी गीत गावे या फिर जो कि रिश्तेदार उबले चने खबड़ावे वणाने, या फिर जो महिला होती है जो माँ होती है वंडे वाते भी गावे की वीर प्रसूतक गीत तब भी गाए जाते हैं कि पीलो गीत वे वे जो कि ननियालू आवे बेटी रे वाते पीलिया रंग जो होती उस वंडो एक प्रमुख एक गीत है कि पीलो रंगियो मारा मारू सूरज पूजनो वे वे जलवा कुआ पूजन, तो अनी तरीके रो नई माँ जो वे वे बेल पूजने रे वाते जावे तो वन में गाना बाना बढ़िया बजावे, तो अन में वे जच्चा गीत गाया जावे जैसे चली जच्चा रानी जलवा पूजन को छोटा सा घूंघट निकाल के

आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सु गणगौर और आज आप हमारे सागे उदयपुर सु मेहमान जुड़ रहा है काजल दुलावत जी ज्या सु बात कर रहे हैं राजस्थान री गीता री संस्कृति पर। तो काजल जी राजस्थानी लोक गीता में नारी सौंदर्य जी को है और वीर सौंदर्य जी को भी आपा के मा तो ए दोनों ही भावनाएं जी की है बड़े ही सुंदर वर्णन आपा ने मिले दोनों भावना बारे बारे में भी बताओ।

0: તો બિલકુલ કાજલજી, આપણે તીજ તહેવાર ગણગોર સાવણરા ફાગણરા જેડા તહેવારા રંગ ભી લોકગીતારે મને ખૂબ દેખણે મિલે હે, તો એડા અવસર પર ગાયા જાવણ વાળા જીકા લોકગીત હે વે અપના આપ મે કઈ મહત્વ રાખ્યા કરે?
1: देखो आपने राजस्थान में तो त्योहार तिथि रो बदले वो ठीक है से, लेकिन त्योहार लारे आपने लोकगीत भी बदलता रहे। जैसे कि एक बहुत सुंदर कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि त्योहार में जो आपने त्योहार शुरू कर वे सावन रे तीज और खत्म वे वे चैत्र रे गणगौर तक सत्र त्योहार रो सिलसिलो चालतो रहे और वन में गीत भी आता रहे। जैसे गणगौर रा गीत है कि गोरे गणगौर माता या खेलन दो मने गणगौर, तो ऐसे करके। और एक बहुत सुंदर सा अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था कि गुल्लो घूमेला जी, तो उसमें भी एक गणगौर की ही त्योहार की बात थी कि उसमें भी एक ऐसा रस था कि जैसे वीर वीर रस और गणगौर का गीत ये दोनों मिल चुके थे कि कैसे सातल दे जी ने गुल्ले खारो सर कर दी दो पाटन दे दी दो, तो वनु एक गाणु बनी गयु गुल्ले घूमेला जी घूमेला। तो ना में भी कभी कहानियां रहे हैं, जैसे अब फागुन नहीं जा तो फागुन में अपने चंग गीत गावे दमाल गीत गावे, तो यूं करें हर त्योहार। तो ऐसे करके त्योहार जो देख लो चौमासो ही जो तो वन्य माते भी आपने गीत

0: जी हाँ, आप बार आप लोक गीता रे बात करें तो कुछ ऐसा गीत भी वाला जिका पारिवारिक रिश्ते री मीठी नोक झोक से जुड़ोड़ा वाला, जिका में अपनापन भी है और शिकायतें भी है।
1: ये मैं भी बिल्कुल कमी नहीं आपने राजस्थान में, जैसे कि एक तो बड़ो यो है कि अब तो मैं थाने लागू हूँ पुरानी, ऐसी बातें मत कर सुन ले सानी। तो ये जो है ये दाम्पत्य जीवन का प्रेम है कि कैसे थोड़ी नोक झोक भी चल रही है, कैसे चल रही है। देवर भाभी के भी हैं कि नानो सो देवरियो मारो, कि वनडे भी अगर लाडी लानी है तो ऐसे करके। कुछ खेल कूद भी है जैसे कि कालो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लाए, ऐसी कई सारी।

0: तो काजल जी, जी हाँ, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हो गीता के बारे में, तो जी हाँ, कौंतल गुड़लो जी को गीत है यारे पीछे कई कहानी है।
1: तो आपने जो कोतल गुड़लो वे वे तो शादिया में जो वे पहला यू वे तो कि एक जो एक्स्ट्रा गुड़ वे तो जो बिंद्रा जला रहे आप तो वन्ने कोतल गुड़लो के था। शुरुआत में तो यह यू वे तो कि जो आपने युद्ध वेता वन में एक एक्स्ट्रा घोड़ो जातो तो वन्ने बाद जो अगर प्रिय नारी है, अगर प्रिय जो वनारी पत्नी है वनारे वाते अगर ब्याह करवा जा रहा है तो वनारे वाते कोतल गुल्लो एक्स्ट्रा आतो। कोतल गुल्ला रो यू मायनो कि अगर कोतल गुल्लो ब्याह में ही रो है, बारात में दिखी रो है, एक खाली घोड़ो है, तो यूं कहता कि वाह नारी जाए, वाह पत्नी जाए, वाह राजा री प्रिय पत्नी है। तो अंदो यो एक सिग्निफिकेंट रोल हो कि एक कोतल गुल्लो है यानी कि वह क्या पत्नी है, वह राजा की प्रिय पत्नी।

0: काजल जी अपन अट और भी गीत है जो राणे वर्रा काई पढ़नी जो उमराव गीत है उनरे मैंने काई ब्याव है जिका इन गीता रे माध्यम से प्रकट किया जावे।
1: तो जैसे कि राणे वर्रो है और उमराव गीत, तो अगर पहला बात करा उमराव गीत री तो अन्नो दो मतलब दे सके। सबो पहला तो उमराव जो वे आपने पहला राजा रे वे था कि उमराव 32 उमराव यात्रा उमराव वे था अलग अलग ठिकाने रा तो बना रहे बात है गीत मान सका। लेकिन जो मेन जो चंपा में थी आपने जो बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार है वना गीत गाय वो उमराव सिंह की बारहट माते क्योंकि बीका नहीं रहा वना आपने समाज रे वाते कुआ वना गरीब मन का वाते बहुत बढ़िया की तो वनु प्रसन्न वेन जे चंपा जे हा वना गीत वना वाते लिखियो और वने बाद यो गीत फेमस लिखियो। तो यूं कहवे कि वो गीत जो वो उमराव सिंह जी बारेट माते हो कि वना सामाजिक कार्य बहुत सुंदर तरीकों की दा और वना रे जीवन काल में वना गरीबा ने मतलब बिल्कुल सहायता की दी अतरू बढ़िया की दू की वना वाते जो गीत जी जो की उमराव थारी बोली प्यारी लागे है कैसे उमराव सिंह जी जे हा वे कवि भी हा एक तरह रा तो वे जो लिखता वनु भी प्रसन्न वे यू गीत वनी क्यों और वने बाद जो गीत रो असल मायनो तो यो ही कहवे है चंपा मिट्टी बना वाते लिखियो। बाकी आगे जिन जो है वो फेमस भी हो तो आगे जिन उमराव 32 उमराव रे बारे में भी लोग सोचा करे कि हाँ ये 32 उमराव वेला। तो वैसे ही राणे वर जो राणे वर ने कई पढ़नी जो जन्म जन्म मर जाए तो ये गीत तो आपने मीरा बही रे ऊपर है कि मीरा बही केवे कि मु एक अच्छा राजा ने कते पन्नु जो बार बार मर जावे मन मु तो सावरो पन्नु जो मतलब जीवन मरण बिल्कुल अलग है बिल्कुल पर है तो अशा वर ऊपर में जो कभी मरे ही नहीं तो यू बना रहा पिछड़ो हो कि कैसे और यानी पूरा गीत में यू पूरी हमारी कहानी बतावे कि कैसे राजा विक्रमादित्य जो थे मीराबाई रे देवर वना वना ने जहरो प्यालो दी दो वना वना ने जहरीली खी जाई वो भी वह तीन अमृत वणी जो बना रहे बातें तो यू सिर्फ आपने जो श्री कृष्ण हा वनारी बताई है कि अगर वना लारे कोई है तो जीवन मृत्यु रो कोई दरस नहीं रहेगा। जय मीराबाई ने नहीं।

0: ने जागरूक करे और सकारात्मक बदलाव लाने रो संदेश दिया करे है। तो उनारी जानकारी भी थोड़ी सी दिला दो।
1: आपने समाज में जागरूक करवा वाते कई गीत है, तो वन में एक ये पिणिहारी भी है जन में की महिला रे जे पानी भरवा जावती अत्र दूर दूर, तो वना वाते यो दुख प्रकट करवा वाते यो गीत आयो। वने बाद आपने यो एक फेमस सो गीत है उस जो धोरा रे धोरा मारे रेलगाड़ी चले, तो इस गीत में भी एक नारी अपना जो दुख है वो प्रकट कर रही है कि कैसे उसके जो ससुराल वाले हैं उसको पैसा नहीं देते, वे ससुराल वाला है वे वो रिपा मांगे वे पया नहीं देवे, तो ये सामाजिक तौर पे जो कुप्रथाएं हैं वो बतावे। तो अणी तरीरा अन्य वाते भी गीत वण्या थकाया आपने लोकगीता माँ।

0: काजल जी, आप आज बहुत अच्छी अच्छी है जी की जानकारियां दे रहे हो। तो अंत में आपसे एक और सवाल करना चाहना कि आज जी की पीढ़ी है वारे वास्ते आप कहीं कहना चाहला कि राजस्थान का लोकगीत जी का है इतना समृद्ध है आणि विरासत ने बचाने वास्ते आपने कहीं कहीं प्रयास है जी का करना चाहिए।
1: तो आज की युवा पीढ़ी जो है वह तो अतरी बिजी रह गई है। आपने जो वाइब करे तो वाइब करे, नहीं करे तो नहीं करे। मना लोकगीत महीने मना ने तो ध्यान भी नहीं रखे। तो अगर आप पे यानी चीज में बढ़ावो दा, अगर आप पे कोई चार जने शुरुआत करा और वो मनका ने बताओ तो वे भी होने, क्योंकि आजकल जो है मना पतो नहीं है कि ये चीज रो मायनो कही है, ये चीज रो मतलब कही है। आप अपनी चीज ने बताओ, अपनी चीज रो बखान करा तो वहां ने भी पतो पड़े तो वे भी आगे पहुंचावे। तो यू बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बात है कि आप अपनी चीज ने और ज्यादा बताता रहा और वरने आज भी जमाने में डालता रहा, क्योंकि जमाना बदलिया करे तो थोड़ा सा आप भी बदल जावे। भले लोकगीत और अनारी वाता नहीं बदले, लेकिन उन्होंने जो बतावारो मतलब है वो थोड़ा सा बदली जा। तो आपने जो युवा है वे भी आप ने ज्यादा बतावा नहीं, वे भी होते कि कई ज्यादा तो है नहीं। जैसे कि अपनी राजस्थानी भाषा है वह आपने बोलवा में कतरा मना क्यों देवे कि अरे बच्चा ने कहवे कि नहीं आपने नहीं बोलनो, नहीं नहीं करनो, तो वो अपने अपने फ्लो में ही नहीं आवे।
0: आपने रुचि किन प्रकार हुई इन क्षेत्र रे मायने?
1: देखो आपने तो बचपन ही यूं हाँ कि दादाजी और अणा सबारे लारे तो ये सब बत्रु मतलब राजस्थान जे वाता करता, अत्रु वीर रस री वाता, अपने महाराणा प्रताप री वाता, तो अणारी जे वाता ही वणा ने सुने सुने ना अपने मतलब मारे मन में तो अत्रु आयो कि नहीं अन्य बारे में जानू और चावे। क्योंकि मु मेडिकल स्टूडेंट मु साइंस के स्टूडेंट, और साइंस रा यू केवे कि साइंस रा स्टूडेंट ज्यादा रुचि राखे दूसरी चीजा में ज्यादा, साइंस तो अगर साइंस रा स्टूडेंट है तो फिर थोड़ो सो तो यू शोध में अनु रिसर्च में तो गणो मन वेच जा, शुरुआत हुई रुझान तो पहलो सही जा है। वने बाद अतरो प्रेम अपने राजस्थान लोक गीता में है, अतरो सुंदर है कि लोग जाने ही नहीं पाई रहा है। तो अगर आप उन्हें जाना और बतावा तो कती सुंदर बात हुई जा, जो शुरुआत की थी यानी चीज थी और आज लोग प्रेम भी दे रहा है, आज लोग समझी रहा भी है। तो बस चाल तो रे रो काबू।

0: बिल्कुल, देखो आप राजस्थान री ही नहीं बल्कि आप पूरे भारत री संस्कृति, इतिहास, बाणो पहनावो, बाणो खान पान सब पर आप है जिका एक कंटेंट है जिका तैयार कर रहे हो, आप शोध कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छी बात है। और आज देखो आप फोन लाइन रे द्वारा बातचीत करी तो हमारे लोगों ने भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी।
1: तो बिल्कुल आज राजस्थानी संस्कृति की महक सु महकता लोकगीता सु सजोड़ो ई कार्यक्रम में आज अपना मेहमान आ काजल दुलावत, जो भारत रे अलग अलग राज्य री संस्कृति ने दर्शाने वाली कंटेंट क्रिएटर है। और आज अपा मरुधरा री माटी रा जो भी लोकगीत है विणा रे पीछे जो भाव छिपियोड़ा है उन्हा रे बारे में जानकारी आप माने तक पहुंचाई। तो आज आपरो अनमोल समय जो मान साथ आप साझा करियो उनरे वास्ते पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम री तरफ सु और सुनन वाला सगला श्रोतागण री तरफ सु आपरो घणो घणो आभार और धन्यवाद है।
2: धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई वायरों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन

0: जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमरीका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक

0: निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: CNTA is committed.
2: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का

0: छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन

0: से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800-4405559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म

0: और नहीं हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
2: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
3: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
0: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
5: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
3: अरेस्ट करो!
4: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
5: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Come, balde ko, ki kona manta hai. Durant, hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?

0: अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
1: इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैल बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल मंगल मस्ती में चूर चलल पहला बागी मशहूर चलल गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल गोली के तुरंत निशान भैल जननी के भेंट परान भैल आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भैल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ हम नाश्ता कर लेंगे पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना। मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ।
6: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ। मुझे परेशान मत करना समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता यही ले आओ दीदी। ठीक है मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु

0: देखो दरवाजे पर कौन है?
1: अच्छा मां, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
2: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
3: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं मां को बुलाती हूँ।
2: लड़की हट, ये चाकू देख रही है ना?
3: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
1: अरे
3: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
1: क्या हुआ? देखो जल्दी,
0: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
2: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
2: ये चाकू देख रही है ना?
1: छोड़ दो,
0: मुझे मत मारो।
1: कुछ मत करो।
0: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
3: ये बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
0: अरे मेरे बात को छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
2: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
3: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: चले
1: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा,
1: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
1: हेलो।
5: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा पापा।
5: हाँ बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
5: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
5: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को
8: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
8: देखो ना, सबकी जान
0: बहादुर है मेरी बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की ये दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

तावड़ो लाई पड़े है जोर की, अंबर उगड़े आग, धोरा धग धग तापिया, पंची छोड़या बाग। साजना राजस्थानी प्रोग्राम युवाणी कार्यक्रम में आपरो घणे मानसू स्वागत है। आज है बुधवार रो दिन और आज व्याकरे निम्बोड़ी फरमाइशी कार्यक्रम जिका हम आप फाने भेजो फरमाइशा और मैं सुनावा आपने राजस्थानी लोकगीत। आज आपरे सागे इन कार्यक्रम में मैं जुड़े हाँ दो राजस्थानी दोस्त। आपरो इन कार्यक्रम में घणे मान स्वागत। आपने सुनावा ओ चौकसो प्रोग्राम रे शुरुआत में राजस्थानी गीत।

0: साधना आप सुन रहे हो राजस्थानी फरमाइशी कार्यक्रम। आपके स्वागत में हूँ देवी सिंह। साधना आज इन 1 घंटे के कार्यक्रम में मैं आपने सुना वाला चौका चौका राजस्थानी गीत और एक चौकी सी भेंट वार्ता। आप वहाँ से जुड़न वास्ते व्हाट्सएप रे नंबर माते मैसेज भेज सको। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94133 29 359। कई फरमाइशा हैं जिनकी माँ दूर पहुँचती हुई है। पदमपुर जिला गंगानगर सु लिखन वाला है मेहर अरोड़ा, ममता, कृति और सारा अरोड़ा परिवार वाला।
1: तो साथी रहे 1 घंटे रे।

0: झालावाड़ जोधपुर से फरमाइश लिखन भेजी है भागीरथ बरवड़ पिंटू जयराम और सुनील।
1: हाँ फरमाइश आई है मेघवंशी नगर भादुकला जोधपुर से। भेजन वाला है दिनेश सोडा, देवांशी, रुद्राक्ष, भाव्यांश, साक्षी, रमनदीप, निशा और प्रिया सोडा।
0: बाड़मेर से फरमाइश लिखन भेजी अशोक कुमार और भार्गव।
1: खोकरिया बन्नाड़ सूँ जबर सिंह खींची, देवेंद्र सिंह, तरुण सिंह और लाडू सिंह।
0: खेतेश्वर से फरमाइश लिखन भेजी है नाग सिंह, तनवीर, दिनेश और खेतेश्वर नाग सिंह।
1: औकतायो है मुरादाबाद यूपी सू। भेजन वाला है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, लक्षदीप, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
0: आप सबने सुना हो चौको चौरा स्थानीय गीत।

0: સાધના બાપને એક સુણાવા ભેટ વાર્તા જકી હૈ જીવરાજ શ્રીમાલી સામાજિક કાર્યકર્તા સો નિતેશ દેવડા કી બાતચીત એન્ડ્રો વિષય હૈ સેવા સ્વચ્છતા ઓર સામાજિક કાર્ય
1: જો ખુદ સે બઢકર સમાજ કા સોચતે હૈ વહી ઇતિહાસ કે પન્નો મે નામ લિખતે હૈ જો તલાબો મે ફિર સે જીવન ભર દેતે હૈ અસલ માયને મે વહી ભવિષ્ય સવારતે હૈ નમસ્કાર શ્રોતા આપ સુન રહે યુવાણી ઓર મે હું આપકા રેડિયો દોસ્ત આરજે નીતિશ આજ હમારે સાથ એક એસે વ્યક્તિત્વ મૌજૂદ હૈ જિન્હોને વર્ષો સે જલ સંરક્ષણ સ્વચ્છતા ઓર પર્યાવરણ કે લિયે ઉલ્લેખનીય કાર્ય કિયે તલાબો કો નઈ પહેચાન દિલાના ઓર હજારો લોગો કો જાગરૂક કરને વાલે જીવરાજ શ્રીમાલી આજ હમારે સાથ હૈ તો સબસે પહેલે ઉનકા હમારે કાર્યક્રમ યુવાણી મેં કરતે હૈ સ્વાગત આપ અપને બારે મેં સબસે પહેલે હમારે શ્રોતાઓં કો બતાએ ઓર બતાએ કે આપકી જો યે સફર હૈ ઉસકી શરૂઆત કહાં સે હુઈ
2: મેરા નામ પંડિત જીવરાજ શ્રીમાલી હૈ ઓર મેં પાલી જિલ્લા ગાંવ ગેંજરી કા રહેને વાલા હું યહાં પર જોધપુર મેં 29 સાલો સે રહ રહા હું ઓર ફિર બાદ મેં યહાં પર ગુરો કે તલાબ મેં મેં શિફ્ટ હુઆ ઓર વહાં પર મેં તલાબ કે ઉપર ગયા ઓર વહાં પર દેખા મછલીયાં તડપ રહી થી મછલીયો કે લિયે જલચર જીવો કે લિયે હમે કુછ કરને કા સોચા हमने 5 पेड़ लगा करके शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में हमने सोचा कि इसको क्यों नहीं ठीक किया जाए। आसपास में जो लोग रहते थे वो लोग लगातार उसके अंदर कोई तस्वीर डालता है, कोई घर का कचरा डालता है, कोई अपना शौच करने जा रहा है, तो उस तालाब को इतना गंदा किया पूछो मत बात। तो हमने ठानी कि इसको ठीक करना है। फिर हमने सफाई शुरुआत की तो 2016 से 2018 तक मैंने 59 ट्रैक्टर जो है 59 ट्रैक्टर मेरे साथ में दो चार जन भी थे लेकिन वो हम सब निकाल करके उसको बार किया। 2025 के बाद में हमने निर्माल्य कलश के नाम से हमने 5 उधर वो कलश लगाए तो उसमें कलश के अंदर पहले नारियल विसर्जन का, दूसरा है मूर्ति और तस्वीरें विसर्जन का, तीसरा है पुष्प विसर्जन का, चौथा है पुस्तक और ये जो कुंकू पत्री है या इस तरीके से भगवान की जो चीजें हैं वो उसमें रखने का, तो वो उसका हमारा उद्देश्य था। एक था भगवान के कपड़े, फिर बाद में जो लोग लाएंगे एक सामान लाएंगे उसके अंदर डाल देंगे तो उसके लिए हमने प्लास्टिक के भी जो पॉलिथीन लाता था उसका भी हम लोगों ने वहां पर एक ये रखाया। तो इस तरीके से हमारे पास 6 जो है कलश विसर्जन कलश लगाए हुए लोगों में। अब जो आज की पोजीशन है वो 95% जो है वहां पर गुरुओं के तालाब के अंदर बहुत ही मान्यता के अनुसार, जैसे कि हम एक तो सीसीटीवी कैमरे का भी डर है, किसी को डालने की कोशिश भी करेंगे तो उसका वीडियो हम डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, और दूसरी बात है कोई समझदार लोग थे तो ऐसा करके कुछ भय से या कैसे भी तरीके से जो है लोगों ने सहयोग करके हमारा साथ दिया। 95% वो गुरुओं का तालाब है वो बढ़िया अच्छी तरीके से है। फिर बाद में हमने शुरुआत तो वहां से की और जो कपड़े थे उस कपड़े का हम जो मोबाइल कवर है और छोटी मोटी जो भी चीज है, माता की जो चुनरी है तो उसकी पोटली बना दी, तो इस तरीके से हम रिसाइकलिंग करके लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपना रिसाइकलिंग करें ज्यादा से ज्यादा और तालाबों का उपयोग जो हो प्रदूषण हो रहा है तो उसका उपयोग कम से कम करें।
1: अब मैं पूछना चाहूंगा जीवराज जी आपसे कि तालाब और बावड़िया हमारे समाज और संस्कृति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें आज से 50-60 साल पहले तो जो हमारा जल का जो मुख्य स्रोत था वो यही बावड़िया और यही तालाब थी, इन्हीं में से पानी लेके आते थे, वही पानी हम इस्तेमाल करते थे, वही पानी पीते थे, और आज की स्थिति में देखे तो इन तालाब और बावड़ियों का पानी पीने लायक भी नहीं है, और देखा जाए तो इन सबका ऐसा हाल करने वाले हम सभी हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: एक इंसान ऐसा व्यक्तित्व है जो खुद को अच्छा मिले वैसा काम कर रहा है। अभी जो उनको अच्छा पानी कायलाना से मिल रहा है और बाहर से आ रहा है पानी, तो ये जो तालाब है बावड़िया है इसको दूषित करने का जो काम कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको साथ में मिलकर के आने वाले समय में जल संकट होगा और ये तो बाहर से आ रहा है, बाहर से कितने दिनों का पानी आप उपयोग में लोगे, खास करके हमारा जो जल स्रोत है हम इसको भी ठीक कर रखेंगे तो आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी जो है, आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें याद करेगी और अपना आने वाले समय में हमें कोसेगी कि हमारे पिताजी हमारे जो परिवार के जो सदस्य है वो क्या करके गए।
1: और वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा

0: कि सोशल मीडिया पे काफी समय से वायरल हो रहे आयरलैंड के कैरन हैं, वो भी जोधपुर के जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको वो लगातार सफाई कर रहे हैं और यूथ तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जितने भी जो भी हमारी बावड़िया है, जो भी हमारी धरोहर है प्राकृतिक, उनको स्वच्छ रखना क्यों जरूरी है, और वो लगातार मैसेज देते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूथ भी इस चीज में आगे, उनको आना चाहिए?
1: देखिए, यूथ को तो आना आना ही चाहिए। साथ साथ में मैं कैरन जो है अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, और जो जालरा है और जो विरासत है पुरानी उसको बचा रहे हैं, और आने वाले समय में ये हमारे काम आने वाले हैं। आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, हम नहीं तो हमारे बच्चे हैं, वो इसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ में चल करके जो कार्य करना चाहिए, मैं सबसे ये कहूंगा।
0: और वही देखा जा रहा है कि लगातार जो भी बावड़ी है, तालाब है, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। देखा जाए तो उनको लगभग गंदा आसपास के लोग ही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, उन बावड़ियों का जीर्णोद्धार सरकार को कराना चाहिए या फिर जो लोग उन्हें गंदा कर रहे हैं उनको खुद उस तालाब में उतर के उसकी पूरी सफाई करनी चाहिए?
1: नहीं, मेरी धारणा तो यही है कि जो अगर मेरे तालाब के अंदर अगर डाल रहा है और मैंने देख लिया तो उसी से उठवाता हूं मैं। जो गंदा करता है उसको उठाना चाहिए। और मैं तो ये सबसे पहले आपसे यही कहूंगा भाई साहब कि आप सफाई नहीं कर सकते हो तो गंदगी फैलाने का अधिकार भी आपको नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा। और युवराज जी, वही मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि आपके अभियानों में हजारों लोगों ने भाग लिया। लोगों को एक सामाजिक उद्देश्य से जोड़ना का आपका तरीका क्या था? लोगों तक आपने क्या कैसे मैसेज पहुंचाया कि अपनी जो भी ये झील है, जो भी ये तालाब है, उनको हमें आगे आके उनको सफाई करनी पड़ेगी?
1: ये कायलाना के अंदर तो विचित्र है भाई साहब। पहले हमने सबसे आह्वान किया था, मैंने सोशल मीडिया भी डाला था कि आपको इस तारीख को हम अपना अभियान लेकर चलेंगे और कायलाना को साफ करेंगे। सवेरे गए तो हमारे 4 जन आए, तो 4 जन आए तो हमने सोचा कि क्या हम 4 जन ये और मैं पांचवा ये इतना सफाई कर पाएंगे। और वापिस क्या है कि 22 तारीख को 21 तारीख को जो पानी छोड़ने का था प्लान उनका, तो ये पानी भी छोड़ने का था और इसको सफाई भी करना था, तो ये दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती। तो मैंने सबसे पहले 10 मजदूर लाए और 10 मजदूर से मैंने काम करवाया। फिर बाद में दूसरे दिन भी वापिस 10 मजदूर से काम करवाया, तीसरे दिन 10 मजदूरों से काम करवाया। और फिर मेरा मेरा विचार था कि भाई हमने तो ये इतना काम कर दिया, आगे करने का विचार नहीं है। लेकिन मेरे थोड़ा जीव में ऐसा थोड़ा ये था, जहन में था कि ये झील पूरी साफ नहीं हुई है, प्लास्टिक मुक्त नहीं हुई है, कपड़ा से मुक्त नहीं हुई है। ये यहाँ पर कोई मिट्टी के जो कूलड़ हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो बायोडिग्री करके कोई कहता है कि ये बायोडिग्रेबल है, इससे पर्यावरण को दूषित नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्यावरण से दूषित नहीं होता है, लेकिन आप पाटने का तो काम कर रहे हो, तो ऐसा है ना कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो हम अपना फिर हमारा विचार हुआ कि नहीं, हम आगे अभियान चलाएंगे। फिर बाद में दूसरा अभियान कराए, 2 दिन जुड़े, फिर तीसरे दिन, दूसरे दिन 11 जन जुड़े, 28 जन जुड़े, फिर 52, फिर 78, फिर 85, फिर 100, ऐसे करके 250 और 300 तक ये हमारी संख्या पहुंची। और हमने करीबन 12,000 किलो जो कपड़ा और प्लास्टिक जो निकाला है उसके अंदर से, मलबा नहीं निकाला है, जो मिट्टी वगैरह उसको नहीं छेड़ा है हमने, हमने सिर्फ 12,000 किलो जो है प्लास्टिक और कपड़ा निकाला है उसके अंदर से हमने।
0: मतलब जब कायलाना का जब जल स्तर कम हुआ, जो आसपास जो बाउंड्री है उस लेक की, उसके पास लोगों ने 12,000 किलो तक का कचरा इकट्ठा कर दिया। अगर हम मलबे की बात करें तो वो हजारों टन वो है जो वो अलग है। आपने वो चीजें सारी सफाई की, ये सब चीजें की। और जीवराज जी, वही देखते हैं, जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं या फिर कुछ करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी चुनौती हमारे सामने जरूर आती है। तो इस अभियान के दौरान कुछ ऐसी चुनौतियां है जिसको आपने फेस किया?
1: फिर तो वो जो पहली बार जब हमने अभियान लेके चले तो हम 4 जन आए और फिर मजदूरों से काम करवाया, और फिर बाद में कारवा बढ़ते गया और सबका सहयोग मिलता गया, और तन मन और धन से सबका सहयोग मिला। और जोधपुर वासियों का जो आए हैं, पर्यावरण प्रेमी जो बहुत ही तरीके से काम किया है, और जो सीनियर सिटीजन है वो भी आए थे, तो उनको भी देखा कि 78 साल के, 82 साल के और 55 साल के ऊपर जो थे वो सब आए। तो उनको मैंने हाथ जोड़ के कहा, आप पधारे, आप ठीक है लेकिन तालाब के पास में नहीं जाए। लेकिन वो रोक नहीं पाए, वो तालाब के आसपास में प्लास्टिक चुगा। तो मेरे हृदय में ऐसा आया, ऐसे जो है वृद्ध जन, सीनियर सिटीजन लोग भी हमारे साथ में जुड़े, तो बहुत ही आनंद आया। और अभी भी आज 17 तारीख है, तो आज भी हमारा अभियान नित्य, मैं वहां पर जाता हूं और रविवार रविवार जो अभियान चालू रहेगा वहां पर अपना क्लीन कायलाना करके ही छोड़ेंगे।
0: क्या बात है। और ऐसा ही धारणा सबके अंदर होनी चाहिए कि भाई जो हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत है या फिर जो हम डेली रूटीन में जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं वो

0: हमें स्वच्छ मिले, और स्वच्छ तभी मिलेगा जब हम उसकी सफाई रखेंगे, ना उसमें कचरा डालेंगे ना किसी को डालने देंगे। और वही साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और युवाओं का इस अभियान में कितना योगदान था।
1: युवाओं का योगदान तो था ही कि तालाब, नदियां, जल और जो पर्यावरण है, वृक्ष है, उसकी सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। आने वाले समय में अभी जो 45

0: आने वाले समय में अभी जो 45-40 जो डिग्री तापमान है उसका अगर हम प्रकृति का संतुलन नहीं कर पाए, ग्रीन हिंदुस्तान नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में 55 डिग्री का जो है तापमान होगा तो हमारे लिए खराब होगा।
1: बिल्कुल, जो कहा है आपने टेम्परेचर वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास देखा जाए तो काफी सारी लेक है, काफी सारी बावड़ियां हैं, काफी सारे ऐसे जंगल है जिन्हें हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। और मैं वही साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि क्या कोई एक ऐसा अनुभव है जिसने आपको इमोशनल किया हो कि हाँ भैया इस जर्नी के दौरान मैं यहाँ पे जाके इमोशनल हुआ हूँ।
0: इमोशनल तो बहुत हुआ, गुरो के तालाब के अंदर भी बहुत सी मुसीबतें आई है। लोग जब हम पेड़ लगाते थे तो कई बार गाय गिरा देती थी, कई बार अपना पेड़ लगाया, लोगों का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन एक बात है, सोना को जितना तपाएंगे उतना उजला होता जाएगा। तो वैसे के वैसे हमारे साथ में जो कारवा है, जो हमारे साथ में जो लोग है वो अच्छे अच्छे लोग है, तो इसके लिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रही।
1: और वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि जल संकट को कम करने के लिए तालाब और बावड़िया किस रूप से हमारी मदद कर सकती है आने वाले समय में।
0: आने वाले समय में तालाब और बावड़िया जो जल का है वो हमें मुख्य रूप से इसका उपयोग करना पड़ेगा। अभी कायलाना का जल स्तर कम हुआ था तब अपने हैंडपंप और कई तरीके से जो मशीन लगा करके लोग गली गली में भर रहे थे। मैंने जो ट्यूबवेल खुदवाई है तालाब के ऊपर, तो वहां पर करीबन ये जल संकट के अंदर 20 घरों में पानी हमारे तरफ से दे रहे थे, हम लोग दे रहे थे वहां पर।
1: और इतने बड़े सामाजिक कार्यों के बीच आपको ऊर्जा और सकारात्मक सोच कहाँ से मिलती है? आपका जीवन का मंत्र क्या है?
0: मंत्र यही है, झील तालाब और नदियां आपकी आंखें हैं, रखना चाहे तो गंगा जल रखो और गंदगी रखना चाहे तो गंदगी रखो, ये आप पर निर्भर है। गंदगी रखोगे तो बीमार पड़ोगे और गंगा जल रखोगे तो स्वच्छ रहोगे, सुंदर रहोगे, यही मेरा मंत्र है।
1: वही मैं जीवराज जी साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि युवानी के माध्यम से जितने भी अपने को युवा साथी सुन रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उन्हें यही कहता हूं कि आप कसरत करने जाते हो, योग करने जाते हो, या क्रिकेट खेलने जाते हो, या बहुत सी माता बहने हैं जो घूमती है, ऐसा डॉक्टर कहता है कि आप अपना घूमो, तो घूमना नहीं है, जो कमजोर पेड़ है उसके साथ में 1 लीटर पानी लेके जाओ, 1 लीटर पानी पिलाएंगे तो कमजोर पेड़ खड़ा हो जाएगा। और जो युवा है उनसे भी कहता हूं कि आप 20-25 जन की टीम रहती है तो आप अपना 50 पेड़ लगाओ और आपने हफ्ते में एक बार पानी पिलाएंगे और उसकी देखरेख करोगे तो भी अपना आप अपना प्रकृति के प्रेमी हो जाओगे और प्रकृति का जो तापमान है उसके कमी आएगी और हम सबके सहयोग होगा तभी ये हो पाएगा, प्रकृति बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, पेड़ हो, पानी हो या अपनी धरती की शान, इससे ही बचती है हर इंसान की पहचान। जो प्रकृति की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं वो जाते नहीं, आने वाली पीढ़ियों के दिल में बस जाते हैं। हमारे साथ थे जीवराज श्रीमाली, आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं को इसी संदेश के साथ मैं कहता हूं, मैं आपसे आपका रेडियो दोस्त आरजे नितेश फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, जल बचाइए, प्रकृति से अपना रिश्ता निभाइए। धन्यवाद, धन्यवाद जीवराज,
0: धन्यवाद।
2: सदन आप अबार सुन रहा भेंट वार्ता, जीवराज श्रीमाली सामाजिक कार्यकर्ता सु नितेश देवड़ारी बातचीत, इन रूप से हो सेवा स्वच्छता और सामाजिक कार्य।

0: साथिना हर निबोड़ी फरमाइसी कार्यक्रम में आपने एक राजस्थानी शब्द दिया। अखराज चुनौ में आपने हिंदी अर्थ पूछा। आज रो राजस्थानी शब्द है ब्याड़ू। इनरो अर्थ आप माने मारा व्हाट्सएप रे नंबर माथे लिखने भेज दे रहा हो। मारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94-133-29-359।
1: जी हाँ सतीड़ा, और अगली फरमाइश आई है बड़ा जिसलमेर सू बेजनवाड़ा है मुल्तान सिंह भाटी, हर चांद समान सू वीरेंद्र सिंह करनोत।
0: गांव तापू सू में लिखन भेजो है विष्णा राम, विदामी देवी, सुनील, पूजा, सुरेश, सुभाष और श्याम सुंदर।
1: मोतीनगर दिल्ली सू कविता, अनिल, गौरव और मानसी अरोरा।
0: मोखा बाड़मेर सू फरमाइश लिखन भेजी है प्रहलाद सारण।
1: कलानौर सू नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा।
0: अनुसुणाओ चौको सौ राजस्थानी लोक भजन।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: खारिया खुर्द आड़ेल सुब फरमाइश लेकर भेजी है कमरा राम सारण और सतीश सारण।
4: हांडी खेड़ा सिरसा सु भेजन वाला है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा।
3: अगले फरमाइश पहुंचते हुए प्रताप नगर जोधपुर सु लिखन वाला है मनोहर और पंकज।
4: गांव दुंदाड़ा लोणी सु अलादीन दुंदाड़वी।
3: प्रेम कुमार प्रजापत, आदुराम प्रजापत, राजा राधा प्रजापति फरमाइश लिखन भेजी है फलोदी राजस्थान सु।

0: छत्तीसगढ़ सो फरमाइश लिखन भेजी है जानवी पिंकी और नरेंद्र डोम।
1: देवाद्रा सो जबर सिंह भाटी, उमा कंवर, ओम विजयपाल सिंह और शोभा कंवर पड़ियार।
0: डोंडी लोहारा सो फरमाइश लिखन भेजी है हरिशंकर बेलदार।
1: गांव बागोरिया सो राजेंद्र और गणपत मंगलाराम।
0: जेल रोड रायगढ़ सो फरमाइश लिखन भेजी है उमा राज और जगदीश राज।
1: होंडू बालोतरा सो उम्मेदाराम, सुरेश कुमार, मदन चौधरी।
0: प्रतापनगर से फरमाइश लिखन भेजी है पंकज करण और अर्जुन।

0: साधना हिंदू पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप रो जो जन्म है वो आज रीस दिन हुयो। महाराणा प्रताप रो जीवन उन्हारे त्याग और पराक्रम से जुड़ी कई ऐसी खासा खास बात हैं जो आप जिती करा बत्ती का मैं और करा तो आप जो को सीनो है वो गर्व से चौड़ो हो जावे। पहली बात तो है वे कदे अधीनता नहीं मानी, स्वाभिमान री मिसाल है जी की कायम करी, मेला रा सुख छोड़िया, अकबर री मूछ नीची करण वाला प्रताप कदे मुगल सल्तनत रे सामी माथो नहीं झुकायो। घासरी रोटियां खाई उन महिला रा ऐसा आराम छोड़ जंगला माए रेवणो मंजूर करियो। घासरी रोटियां खाई पण अपनो स्वाभिमान और मेवाड़ री आण बाण माथे आँच नहीं आवण दी। महाराणा प्रताप री कद काठे भी अपन सुनने ने मिले कि वे घना मोटा और लंबा जका है वे मिनखा, उनारो वजन है जो को भलारो, उनारा हत्यारा रो वजन है जो को भी घणो हो। सेनाओं ज़्यादा जरूरी बात है कि उनारी जकी युद्ध नीति है छापा मार जकी घणी है जकी अपार बीच के मान हुई प्रसार और जंगला माई से लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप भारत माई छापा मार युद्धीकरण वाला पहला मुखिया राजा हा।
1: तो साथीड़ा आज रे कार्यक्रम भगत हो रही हो पूरो एंड कार्यक्रम की प्रस्तुति करी ही राजेश लामरोड। मैं आप रे साथ है आप रेडियो दोस्त ओम सिंह, मारे साथ है
0: देवी सिंह, माने देव सिंह राम राम सा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुख

0: से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हिनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
0: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent and global south's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people, and spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. This meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership, with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany intergovernmental consultations scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa.

फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में फिल्मी गीत सुनिएगा। कल सवेरे 6:45 पर, सवेरे 11 बजे, रात 8 बजे, रात 9:30 और कल रात 10:30।

हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार आप सुना करते हैं रोज सवेरे 8:30 बजे। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा इतिहास

में आज का दिन सप्ताह विशेष हमारा पर्यावरण खास बात और जयंती पुण्य स्मरण, इसके अलावा सांस्कृतिक समाचार और खेल खबरें।

कल दिन में 1:05 पर किसान भाइयों के लिए कृषि संबंधी सुझावों का कार्यक्रम कृषि जगत हम प्रसारित करेंगे। महिलाओं के लिए हमारे केंद्र से कार्यक्रम नारी वाटिका आप सुनेंगे कल दिन में 1:15 पर। युवा साथियों के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुना करते हैं रोज शाम 5:00। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा कविता किताबों पर और कहानी म्यूजिकल छोटी कहानी। इस कहानी में कल एक विशेष कहानी सुनवाई जाएगी। इसके अलावा तकनीक फैशन पर बातचीत और कल युववाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता योगासन चैंपियन अंजलि बिश्नोई से राहुल डांगी की बातचीत।

चौपाल सजेगी कल शाम 7 बजे और सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:30 बजे से। कल रात 9:15 बजे सुनिएगा सुगम संगीत। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए ये देशगान।

0: उक्लोल मण्डलयोः सशस्त्र समूहैः उपयुज्यमानाः षड्विंशतिः अवैध गुहास्थानानि ध्वस्तीकृतानि। क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ नगरे स्पर्धात्रयाणां श्रृंखलायाः द्वितीयायाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां अफगानिस्तान देशं विरुध्य एकशून्येन अग्रस्थं भारतं त्र्यधिक चतुश्शत धावनांकानां लक्ष्यम् अददात्, यत्र दलनायकेन शुभमन गिलेन सार्धैक शताधिकानि, ईशान किशनेन च सपादशत धावनांकानि रचितानि। इतः प्राग अफगानिस्तान देशः पणकं विजित्य प्रथमतया क्षेत्ररक्षणम् अचिनोत्। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। जी सेवन इत्यस्य नेतारः वैश्विक स्थिरतां सुरक्षा सहकारं बहुराष्ट्रिय संघटित अपराधस्य प्रतिकार प्रयत्नांच केन्द्रीय मानाः घोषणानां श्रृंखलाः स्वीकृतवन्तः। फ्रांस देशस्य एवियान नगरे जी सेवन इति शिखर सम्मेलनेन समं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन आतंकवादं विरुध्य सर्जिकल स्ट्राइक्स बालाकोट ऑपरेशन सिंदूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत्। भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीय वर्षे 10.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितम् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6:30 हुए हैं। अब जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि प्रदान की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। इस योजना से देशभर में लगभग 15 लाख आशार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। योजना के तहत पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कार्मिकों को 15,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। साथ ही रोजगार देने वाले नियोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रूपये की 3 किस्तों में कुल 6,000 रूपये सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। श्री शर्मा ने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं और सेवाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों,

0: कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सीवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर पानी छोड़े जाने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्या का समाधान करने और तुरंत पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किसान प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर जातिगत राजनीति नहीं करने की बात कही, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कोटा प्रवास पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर दशहरा मैदान में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक यात्री बस आज तड़के वडोदरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांसवाड़ा के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तथा अन्य बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के असर से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे इलाके जहां मिट्टी में खारापन बढ़ने का खतरा अधिक है, वहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यूरिया तथा केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड को अब डिजी लॉकर पर प्राप्त और साझा किया जा सकता है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेशवासियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से नागरिक डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना जन आधार दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही जन आधार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए इसके डिजिटल प्रति का उपयोग भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में परिवारों की पहचान के लिए जन आधार अहम दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर आईएमआर में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में एक अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल

0: मिल पा रही है।
1: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात हैं, स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स, जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। श्री बागड़ी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका जीवन अन्याय और अनैतिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभिन्न धार्मिक पीठों के साधु संत तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
2: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर पाली, डूंगरपुर, भरतपुर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और गौरव गान कार्यक्रम रखे गए। इस उपलक्ष्य में किशनगढ़ में हेलमेट वितरण कर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आज साइबर अपराधियों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा। अदालत ने कहा कि मासूम निवेशकों को ठगने वाले इन अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साइबर अपराध के पीड़ित पूरे देश में फैले हुए हैं और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ये पहल की गई है। इस साल की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीते दिनों अलवर आए। उन्होंने अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली बहरोड जिलों से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि

0: प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और एमओआर निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। अलवर, भिवाड़ी और नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यटन क्षेत्र में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहनराम, गरबाजी, लालदास महाराज मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा की गई। कांकवाड़ी, कुशालगढ़, अजबगढ़, नीमराणा और तिजारा फोर्ट को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने मिनी सचिवालय परिसर में राजीविका महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। बीते दिनों इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका और बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समापन समारोह में भाग लेकर विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बालिका वर्ग में अलवर की टीम विजेता रही और कोटा की टीम उपविजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम विजेता और अलवर की टीम उपविजेता रही। विभिन्न खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। गंगा दशहरा के अवसर पर राजगढ़ क्षेत्र के मंगलसर बांध पर अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव रवि जैन और जिला कलेक्टर डॉ आरतिका शुक्ला ने इस दौरान सरोवर पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संचयन और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया गया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और परंपरागत खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत की सेहत और मानव स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है। कृषि अधिकारियों से किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गुजुकी गांव के किसान महेंद्र कुमार सैनी ने पॉलीहाउस, मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं से आय बढ़ने की जानकारी दी। वहीं किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मथुराधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिरी पांत रा हरेक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावा और सेवावा रो फायदो पुगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण न बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर तीनो। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राख हर वन याद करी जिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY रातेत करीब 2400 करोड़ रुपया री रकम पात्र लोगां ने देवन रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रा दफ्तर सेवा तीर्थ माए रख्या जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रे जरिए आ रकम दी जावेला। लाडला साल अगस्त महीना माए चलाई ची ई योजना रो मकसद नौकरी धंधा रा मौका माए बढ़ोतरी सागे सामाजिक हिफाजत रो दायरो बढ़ावनो है। PMVBRY उन देश माए करीब 15 लाख जना ने काम धंधो करण माए मदद मिलेला। ई योजना रा तहत पहली दफा शामिल होवन वाला ने 15,000 रुपया ताई री रकम दो किश्ता माए दी जावे है। इस आगे नौकरी देवन वाला ने हर अतिरिक्त कर्मचारी सारू हर महीना 3,000 रुपया ताई री रकम मिले है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त 20 जून न जारी करी जावेला। पीएम किसान सम्मान निधि री ई किश्त रे जरिए 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपये बत्ती रकम जमा कराई जावेला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रुपया सालाना री मदद दी जावे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर में लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो जायजो लीनो। श्री शर्मा उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में लगाई जा शिविर में पट्टा सर्टिफिकेट और दिव्यांगजन ने मदद री रकम रा चेक और जरूरी साजो सामान दीना। इस दौरान वह शिविर में मौजूद लोगों सागे बातचीत कर और विचार पूछा। मुख्यमंत्री जनताओं वारा आरे सारे रा जरूरतमंद लोगा ने शिविरां ताई पोगावन माए मदद करन री अरज कीनी। वे कहो कि जनता रा नुमाइंदा अहलकारा कर्मचारियां और जनता री भागीदारी हुई शिविर सार्थक बनेला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी योजनावां और सरकारी सेवावां रो फायदो पोगावनो तय कीनो है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी शहरी क्षेत्रों में जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बंधारो पानी कमांड एरिया री नहरा माए छोड़न री मांग करता था का किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप गांव माए प्रदर्शन कर रहा है। इन बीचे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात कर पानी छोड़न रे बारा माए वन कागज सौंपियो। वे मुख्यमंत्रियों बातचीत कर समस्या हल करण और नहरा माए बेगोई पानी छोड़ बारी अरज कीनी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ई मामला माए जातिगत सियासत नी करण बाबत कहो है। लोकसभा माए विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज कोटा पधारिया, मारो कांग्रेस रा कई आला नेता स्वागत कीनो। राहुल गांधी रो भणाई लिखाई जुड़ी व्यवस्था माए सुधार और परीक्षाओं माए साफ कोई रबारा माए विद्यार्थियों सागे बातचीत करण रो कार्यक्रम है। इन बीचे राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा मेडिकल कॉलेज रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रो दौरो कर वठे भर्ती जापा वाली लुगाइयां और वारा परिवार वाला सागे बातचीत कर वठे इलाज रा सुबेता ना बारा माए जानकारी लीनी। बांसवाड़ा गुजरात माए सूरत जा रही एक बस आज तड़के वडोदरा कने हादसा रो शिकार फेंकी। इन कारण 6 जना री मौत वेगी और 27 मुसाफिर जख्मी फेंकिया। जख्मी लोगों ने वडोदरा रा SSG अस्पताल में भर्ती कराई चिया है। हादसा रा कारण मरण वाला लोग बांसवाड़ा रा रहवासी हा। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ओ दिन रेगिस्तान रा पसारा और सूखा रा असर

0: ਭਰੋਸਾ ਮੁਕਰਨ ਸਾਰੂ ਜਾਗ ਜਗਾਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਨ ਅਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਰਾਖੀ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਏ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,60,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਨੋ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮਾਏ ਖਰੋਪਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨ ਵਧਾਵੋ ਦਿਓ ਜਾਣੂ ਚਾਹੀਚੇ। ਵੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਨੋ।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड अब डिजी लॉकर माथे हासिल करियो जा सके है। राज्य सरकार अर डिजी लॉकर बीचे व्या करार पाछे उस भी तो मुहैया कराई चो है। इन पाछे अब डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट माथे लॉग इन कर अर जन आधार रो कागज डाउनलोड अर सुरक्षित रखियो जा सके है। इस आगे जन आधार जुड़ी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावा और सेवावा सारू इनरी डिजिटल कॉपी काम ली जा सकेला। ध्यान जोग है कि राज्य माए पिरवारा री पिछाण सारू जन आधार खास कागज है। प्रदेश माए जन्मताई बच्चा रे मर जावन री रेट IMR लगातार कम फैर रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का न्यू मिली जानकारी रे मुजब शिशु मृत्यु दर माए एक अंक री कमी दर्ज करी ची है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉ. प्रदीप चौधरी आकाशवाणी ने बतायो कि लगातार स्वास्थ्य जांच, टीका लगावन और स्वास्थ्य जुड़िया सुविधा में बढ़ोतरियों बच्चा ने बेहतर देखभाल मिल रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: हिम्मत अर खुदरा मान री अमर निशानी महाराणा प्रताप री जयंती अर हल्दी घाटी री लड़ाई माए अकबर रे खिलाफ जीत रा 450 साल पूरा फेवन रे मौके आज प्रदेश माए के कार्यक्रम रखी जिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भारतीय क्षत्रिय महासंघ री ओर जयपुर माए राखी जिया मान जलसा माए महाराणा प्रताप ने याद करता थका मारा आदर्शा माथा चालन बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि महाराणा प्रताप री जिंदगी अन्याय और अनैतिकता लड़बारी सीख देवे है। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके उदयपुर माए शोभा यात्रा निकाली जी और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा राखी जी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा न्यारी न्यारी धार्मिक पीठा रा साधु संत और मोटी तादाद माए लोग शामिल भया। ये मौके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघ चालक मोहन भागवत महाराणा प्रताप री लड़ाई ने देश री स्वतंत्र चेतना खुदरा मान और सांस्कृतिक अस्मिता री हिफाजत री निशानी बताई।
3: हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाह टिकाए बैठा था और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए फूल चढ़ावण और गौरव गान रा कार्यक्रम राखी जिया। ये मौके सलुम्बर जिला रा चावंड माए महाराणा प्रताप स्मारक स्थल माथे महाराणा प्रताप री मूर्त माथे फूल माला चढ़ाई जी और खास कार्यक्रम राखी जियो। पाली माय राखी जा कार्यक्रम माय पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप री मूर्त माथा सिरधारा फूल चढ़ाया वटा न्यारी न्यारी सामाजिक संस्थावारी ओरों जुलूस और रैली।

0: ਕਾਲੀ ਜੀ। ਅਜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਮਾਏ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੈਲਮੈਟ ਦੇਰ ਯਾਤਾਯਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੀਓ। ઝુંઝુનું માય આજ નુઆ અગ્નિવીરા નો માન કરી જ્યો એ મોકે રાખી જ્યા કાર્યક્રમ માં જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર અરૂણ ગર્ગ કહ્યો કે ઝુંઝુનું જિલ્લો હિંમત અર બહાદુરી સારું ન્યારી ઓળખાણ રાખે હૈ અર વઠાઉ ફોજ માય ભરતી વેર દેશ રી સેવા કરણ રી રીત રહી હૈ વ કહ્યો કે એડા જલસા નૌજવાના ને આગે બઢવારી સીખ દેવે હૈ અર બ મોસમ राज्य में कई ठोड़ा लाडला दिना भी बिरखाऊ पारो उतरियो है कठे कठे तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक कम थियो चौमासाओं पहली री बिरखा रा असर अब आखा राज्य में लू रो असर खत्म वेक्यो है। मौसम विभाग रे मुजब काल श्री गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ टोंक बारां और करौली समेत 20 जिला माए ऑरेंज और अलवर भरतपुर अजमेर डीग और जयपुर समेत 16 जिला माए बादलां री गाज और बिजलियां री चमक सागे बरसात भेवण और जोरदार बायरो बाजण रो येलो अलर्ट जारी कर चेताई चियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपए री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांच रा हरेक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावा और सेवावा रो फायदो पुगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर दिनो। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच लीड्स के हेडिंगले स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया स्विंग होने के लिए। अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए, और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच T20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच। ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से, और एक रन और भारत के खाते में जुड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगली का ये विकेट, जहां पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बैन में। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला

0: decent spin. I'm sure the Indians are going to enjoy the bowling of the Netherlands at the moment now. So Goswami, I think, you know, would you say winning the toss and batting second was the best option for Netherlands?
1: लगता है कि भारतीय टीम जो कि विश्व चैंपियन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, तो उनको लगा होगा ऐसा कि एक बार परखा जाए और कोई एक टारगेट जो बनाती है भारतीय टीम एक अगर मौका देती है तो क्या कुछ कर सकते हैं वो, तो इस तरह का एक उनके दिमाग में रहा होगा कप्तान के, और उन्होंने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का मौका दिया है। और उन श्रोताओं के लिए कि आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच में महिला विश्व कप का ये मैच चल रहा है, ज्वेलिंग आई है, अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैट फुट पर गए, मिड विकेट की तरफ गेंद को धीरे से प्लेस किया है, एक ही रन मिल पाएगा। शैफ अली वर्मा का स्कोर हो गया, इसके साथ ही डबल फिगर में 10 रन 5 गेंदों का सामना किया। स्मृति मंधाना इस समय खेल रही हैं 12 रन के स्कोर पर, और भारत का स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के, 2.1 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। भारतीय टीम जो इस मैच में खेल रही है हम आपको बहुत तेजी से बताएंगे इसके इस ओवर के बाद में। और एक बार फिर से ज्वेलिंग दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पे गई और शॉर्ट कवर्स की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई मौका नहीं रन लेने का। और एक बार फिर से ज्वेलिंग हल्के हल्के कदमों से अपने गेंदबाजी के रनअप की ओर आ रही है। स्मृति मानना, शैफ अली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा इस समय भारतीय टीम में खेल रही हैं। ज्वेलिंग एक बार फिर से दाएं हाथ से उनकी गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पे गई, ड्राइव किया स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डिंग वहां पर हो गई है, फील्डर खड़ी थी, बहुत तेजी के साथ उन्होंने गेंद पर झपट्टा मारते हुए फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि वो रन लेते हैं। भारत का स्कोर इसके साथ ही हो गया 25 रन, स्मृति का स्कोर है इस समय 13 रन, और अब शैफाली वर्मा 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने के लिए ज्वेलिंग की अगली गेंद का हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए जा रही हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर से, और धीरे से उसे प्लेस किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर हैं वहां पर, एक ही रन मिलेगा, और एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और शैफाली का स्कोर इसके साथ हो गया 11 रन। स्मृति अब सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर। हालांकि पहली बार नीदरलैंड्स को इस विश्व कप में मौका मिला है, नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में चौथी टीम के रूप में उन्होंने क्वालिफाई किया था, और उनकी कप्तान इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि वो इस विश्व कप में भारत जैसी सशक्त टीम के सामने जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की, उनके सामने अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ज्वेलिंग एक बार फिर से पांचवी बार इस ओवर में आ रही हैं, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फिर से अपनी जगह पर खड़े होकर वाइड मिड ऑन की पोजीशन की तरफ खेल दिया, रन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और स्मृति मंधना जो कि भारत की बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार है, और इससे पहले पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ही शानदार अर्धशतक 68 रन उन्होंने बनाए थे, एक बार फिर से तैयार हो रही हैं ज्वेलिंग की अगली गेंद के, ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, मिड ऑफ पे वहां पर केप खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई सवाल नहीं उठा। तो इस समय ओवर समाप्त हो चुका है और भारत की टीम अभी भी कोई नुकसान उनको नहीं हुआ है, अच्छी तरह से खेल रही है। विश्वनाथ,
0: yeah, I think they're not looking very threatening. You know, they bowl very short on either side of the wicket. They're going to pitch the ball up. Leeds is a ground where it's going to assist the fast bowlers. There will be something for the bowlers. Pitch the ball up and make the ball to move around. But I tell you, June has been a significant month for sports lads all across. You've seen the French Open getting ended, Wimbledon to start the end of the month, and the World Cup football in place, T20 Women's World Cup going on, and of course plenty of cricket in test matches, also England playing New Zealand. It's an amazing month, isn't it? The schools are open now. It's going to be a change in bowling as Van der Walling, she's replaced Seager. Seager's first over was a little expensive. She was bowling very friendly delivery. Smithy on 13, Shefali 11. She's the right-hander on strike, and it's none for 26 from 3. Up comes Van der Walling. A runs an early bowl, short, and she pulls away on the onset out through square leg. Didn't time it the way she wanted to do, and that ball is running away down towards the square leg fence for 4.
2: Ye laga, aabha ka chauka.
0: Well, I like the delivery. Short ball climbing onto Shafali Verma.

0: इस बीच ही गेंद बैकफुट पे गए और ड्राइव किया उसे बहुत तेजी के साथ 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इस समय भारत का स्कोर हो गया 46 रन। 4.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। इस ओवर में 2 चौके पहली गेंद पर और तीसरी गेंद पर लगे हैं और इस समय भारत धीरे धीरे अपने प्रयास में है कि ये जो पावर प्ले है वहां पर उसका स्कोर कुछ इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले खिलाड़ी 1 रनों का पहाड़ खड़ा कर सकें। इसमें ज्विलिंग की ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इस गेंद को, ऑन साइड में ऑन ड्राइव बहुत तेजी के साथ जा रही है और बिल्कुल सीमा रेखा के पास गेंद को रोका और इस बीच बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। स्मृति का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 23 रन और 2 रन उन्होंने लिए। 23 रन पर खेल रही है स्मृति और बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है, लेकिन देख रहे हैं अंपायर के कहीं उनका जूता लग तो नहीं गया। लेकिन अभी फिलहाल 48 रन 4.4 ओवर के खेल के बाद ज्वेलिंग मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं और स्मृति इस समय खेल रही हैं 23 रन के स्कोर पर 16 गेंदों का सामना किया है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सैफ अली वर्मा जो भी 23 रन उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया है 10.29 की औसत से रन बन रहे हैं। इस बीच ये अच्छी गेंद थी, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कमर की ऊंचाई तक उछली, सुरक्षात्मक तरीके से उसे खेल दिया और एक डॉट बॉल यानी कोई भी रन इस गेंद पर नहीं बना है। भारत की स्मृति ईरानी को 3 चौके और चाहिए और T20 में उनके 600 रन। इस बीच में ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार धीरे से पुश किया था कवर्स की तरफ लेकिन फील्डर हमारे स्टेटिशियन मनोज कुमार ने बताया कि भारत अपना 222वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है। भारत के अभी तक 122 मैच जीते हैं और 93 मैच हारी है जबकि 4 मैच बारिश के कारण या अन्य कारण से रद्द हुए हैं। विश्वनाथ,
2: well, the amount of T20s are getting played, I feel, you know, maybe after 10 years you could see each of these cricketers playing 300-400 T20s and I'm sure 10 years before we are all talking, you know, if someone hits 7 placed 100 test matches, that's a that's a something, a monumental feat. Now it's all gone. Maybe after 20 years' time, we'll see team, each individual member playing 300, 400 T20s. And let's say the world is moving on. 222 T20 internationals for India till now, and they won 122 of them. They lost 93 and 4 produced no results. So this Dutch team has been quite amazing and interesting because they came the hard way. Change in bowling now. Van der Waart, she's going to bowl, and Van den Raan, I should be. She's replacing Van der Warning, so and she's going to bowl to Sharpa Ali Varma. Round the wickets, Rana Mohan bowls, and she gets a top. It's in the air. What's going to happen now? We're going to see. No, it falls safe, and the fielder over there, Carolyn D. Lee, she was running behind, but a couple of runs, I believe, to Sharpa Ali Varma. She goes up to 25 from 13. I was just looking at the road to Netherlands in this World Cup. It was quite interesting because they contested the European qualifier in May and then the Emerging Nations Trophy in 25 and the World Cup qualifier in Jan 26. So when, and we're just talking about Caroline de Ligt, amazing cricketer. She's a doctor by profession and she dropped that profession now. I was very serious about representing Netherlands in World Cup. Van der Waart bowls, round the wickets, Fuller, and has been played firmly up to mid wicket. I think she was surprised by the full toss, which came just above the knee roll for Sharpa Ali Varma. And she's not been in great form of late, and this is one of the good matches that probably she can get to a good score. 25 from 14 deliveries. India's 50 is up in just the 6th over. They're racing away now after being sent in. Next ball is down the leg side. Wraps her on the pan. The keeper fails to collect that. They'll run a leg by, if I'm not wrong. First extra of this game. And at this speed of 108.1 kilometres, not bad for any developing fast bowler. 51 on the board. 5.3 of us gone. This is the last over before the field spreads. And if you look at the restrictions in the power play, only 2 fielders are allowed outside the circle. So that's what the current state is. India, well, they've got a good foundation now thanks to these two openers, left and right combination. And now for the left-handed Mandana, she's going to bowl out the wickets. Campson bowls. Oh, that was too far, wide down the leg side. Now leg by, correction, another wide.

खेल रहा है। नीदरलैंड ने अभी तक 52 मैच जीते हैं, 55 मैच हारे, जबकि 4 मैच खराब मौसम के कारण अनिर्णित रहे, यानी उनका कोई परिणाम नहीं हुआ। इस समय नीदरलैंड के सामने एक चुनौती है, भारत के जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का जलवा लोग देख चुके हैं, और इस समय इस बात का है कि ये T20 महिला विश्व कप का 10वां संस्करण है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम के रूप में काफी आगे रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक बार जीता है, और एक बार इंग्लैंड, एक बार न्यूजीलैंड, एक बार वेस्ट इंडीज को ये T20 विश्व कप जीतने का अवसर मिला है। इस समय

0: विश्व कप जीतने का अवसर मिला है। इस समय लीड्स में खेला जा रहा है मैच भारत और नीदरलैंड्स के बीच में, और भारत की टीम जो कि मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई, 6 ओवर्स का खेल हो चुका है, 59 रन पावर प्ले में भारतीय बैटर्स ने बनाए हैं। स्मृति मानना और शेफाली वर्मा दोनों ही बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं विश्व क्रिकेट में, और खास तौर से जहां तक स्मृति मंधाना का सवाल है, स्मृति मंधाना भारत की सबसे सशक्त बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक विशिष्ट छवि लेकर वो उतरी हैं, और बहुत ही मजबूती के साथ वो अपना गेम खेलती हैं। और उन श्रोताओं के लिए एक और जानकारी कि 2026 की टाइम मैगजीन में स्मृति मंधाना को सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है, और इस सूची में रोनाल्डो और मेसी जैसे ग्रेट फुटबॉलर्स हैं और अल्कारेज जैसे टेनिस के सितारे हैं, वहां स्मृति मंधाना को टाइम्स मैगजीन में 100 सशक्त और सबसे बेहतरीन लोगों में माना है।
1: द क्रिकेट कमेंट्री विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट फीफा अपडेट।
2: वर्ल्ड फुटबॉल अपडेट फ्रॉम द बीबीसी।
3: Hello, this is Ed Harry in the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. Defending champions Argentina made a winning start to their campaign, beating Algeria 3-0 in Kansas City. Argentina's superstar forward Lionel Messi scored a hat-trick. Also in Group J, Austria beat Jordan 3-1 in San Francisco. In Group I, Kylian Mbappe scored twice for France as they beat Senegal 3-1 in New Jersey. Mbappe is now his country's all-time leading goal scorer with 58. That's one clear of the former record holder Olivier Giroud, who was working on the coverage of the game for the BBC.
4: Congrats, Kylian. You made it on the first game, and I'm really happy for him. It was expected, and I'm happy it's him. We beat every single record anyway. The numbers of caps, the numbers of goals, I think he can easily reach 100 goals.
3: France are looking to win the World Cup for a third time, and after the match, defender William Saliba was asked if they should be considered tournament favourites.
5: No, we are not favorite. We have a lot of team who can win this tournament. So of course, if we want to win, we have to beat everyone. But we are not only the favorite. We have a lot of team who can win this tournament.
3: Also in Group I, Norway beat Iraq 4-1. Later this Wednesday, England start their campaign against Croatia in Dallas. Captain Harry Kane says the build-up to the tournament's gone well.
6: We had two good friendly games, and now, yeah, I think not just me, but I think the whole team is just itching to kind of get out there and prove ourselves on the pitch.
3: Also later, Portugal play the Democratic Republic of Congo in Houston. For more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
2: World Football Update from the BBC.
0: से पुश किया था वाइडिस मिडोन की तरफ, और इससे पहले की गेंद फील्ड की जाती है, एक रन और भारत के खाते में जोड़ा, एक रन जोड़ा है स्मृति के खाते में। स्मृति 29 रन 23 गेंदों का सामना करने के बाद, शेफाली वर्मा 27 रन पर खेल रही हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद। सीजर्स ने इस ओवर में बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से पहली बार विश्व कप में ये T20 विश्व कप में टीम खेल रही है, देखना है कितना प्रदर्शन कर पाती है। इस बीच अंदर की तरफ आती हुई गुगली गेंद थी उनकी, और धीरे से फील्डिंग थोड़ी सी मिस हुई और कट किया था गेंद को, वाइडिस गली की पोजीशन पर गेंद को फील्ड कर लिया। 66 रन बगैर किसी नुकसान के ये सातवां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद और फेंकी जाएगी। इस ओवर में अब तक 7 रन लिए हैं भारतीय बैटर्स ने, और देखना है कि अब स्मृति मंधाना जो इस समय स्ट्राइक पर हैं, अगली गेंद पर क्या ट्रीटमेंट देती है। गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया था उसे मिडाउन की तरफ, बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद को फील्ड किया, एक रन और 7 ओवर की समाप्ति पर 67 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के।
7: Well, I'm very impressed with Seegers, the leg spin bowler. I think she had a very good first over, no doubt on that, and she bowled so well. And she's played 78 T20 games. She's got 62 wickets with a leg break, so it's quite interesting. Silver Seegers. And right now, India on a roll in this game against Netherlands. They're

0: placed in a very tough group. As a matter of fact, they're going to play Australia. He blew away Bangladesh today by 9 wickets. A game, I think even overs, but they got 9 overs or 10 overs to spare. It was a one-sided affair, and it's the dominance of India continues in this format also. The 50-50 World Cup the champions. And after 5.1 hours, India's joint fastest team 50 in women's T20. Here's the first ball. Change in bowling. D-Lang bulged. And that was too short and pulled away for a single. She, D-Lang, let me tell you that, she's a doctor by profession. And she skipped that and she wanted to sport the orange colours to represent her country. An amazing character indeed. And she's one of those, strong ladies in the Dutch team, and quite a character indeed. Run rate is 9.49, so it's 68 for none. They're looking for a breakthrough. Play briefly stopped. She's got a very unusual action indeed. She walks in 2 paces and then now she comes in bowls to Shefali. Then she stops now. Turns back. I think she might have missed her steps. It's just 2 or 3 steps. Something much shorter than what Shane won't run up is. As she comes in bowls and driven up to long on. An easy run. And that takes India up to 69 without loss, and we're doing well. So we're just talking about 5.1 hours. India's joint fastest team 15 women's T20 cricket, and they also got there in as many hours against Bangladesh in Perth in 2010. Next ball is nicely tossed and driven wide of covers. Glorious looking stroke from Mandana, just a single. Whenever she placed that shot, I think, you know, it reminds me of someone like David Gow, so elegant left-hander, and quite extraordinary player, Smriti Mandana. So the spinners in action, they run through the overs quickly, compensating for what that one over that came. Next ball is down the leg side, trying to sweep. She misses Shefali, and wide call with the umpire. And they're just getting a bit contagious of seeing so many wides now.
1: इतनी गेंदबाजी में अब तक के दिख रहा है नीदरलैंड्स के गेंदबाजों में वो नियंत्रण नहीं मिल पा रहा है जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं.
0: Yeah, you're right. Actually, they probably will learn quickly. Lange bowls full toss and she just misses it, and she drags the ball down towards the short fine leg. No, and I think there was a gift out there to get it somewhere on the onside for a 4 or 6. Lange, she got a couple of wickets in the game against Bangladesh. She got Netherlands back into the game. Very unusual bowling. She comes in bowls and driven up partially. I tell you, didn't carry. And beautifully bowled by Dean Lange. I would say by far the best of the overs from the Dutch girls. One ball to go. 71 for Neola's. Next ball is short and flicked away. She picks up from outside the off stump down towards whitish mid wicket. And the error ends now. So 8 overs gone. India going at 9 an hour. None for 72.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय महिला विश्व कप जो कि 20-20 ओवर का विश्व कप है खेला जा रहा है इंग्लैंड की धरती पर और भारत का इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच है. पाकिस्तान को पराजित करके भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ अपने इरादे जाहिर किए हैं महिलाओं ने. और नीदरलैंड्स का जहां तक सवाल है, नीदरलैंड्स ने इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध एक मैच खेला था और उसमें वो पराजित भी हो चुकी हैं. तो नीदरलैंड्स जो पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई किया है, देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक मैच खेलने का अनुभव नीदरलैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है और इस समय 72 रन भारत का स्कोर 8 ओवर्स की समाप्ति पर. स्मृति खेल रही हैं 32 रन पर और शेफाली खेल रही हैं 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर. और वानडे वार्निंग आई है अब नई गेंदबाज के रूप में, पहली ही गेंद वाइड के रूप में और एक अतिरिक्त रन और जुड़ा है और अतिरिक्त रनों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर हो गई है. 11 रन अभी तक दे चुके हैं 8 ओवर के खेल में अतिरिक्त रनों की. ये अतिरिक्त रन बहुत महंगे पड़ते हैं कई बार ऐसे मौकों पर जबकि मैच बराबरी की स्थिति में आता है, तो उस समय ये जो अतिरिक्त रनों का एक बोझ होता है वो बहुत मुश्किल होता है. इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उठा दिया है और लेकिन कोई फील्डर नहीं है. बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अब जाके गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और बल्लेबाजों के पास पूरा समय था रन लेने का. सैफ अली ने बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 2 रन पूरे किए, 32 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है.

0: और भारत का स्कोर इस समय 75 रन बगैर किसी नुकसान के। T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड एंड वेल्स के तत्वावधान में खेला जा रहा है इस समय, और भारत जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप खेला गया था गत वर्ष, उसमें चैंपियन है। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया था, और नीदरलैंड इस समय एक तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी कमजोर टीम। 75 रन भारत का स्कोर 8.1 ओवर के खेल में अब तक हो चुके हैं, और सैफ अली वर्मा अब तैयार हो रही हैं। 32 का व्यक्तिगत स्कोर है इस समय उनका, और देखना है सैफ अली, जिनको रनों की बहुत जरूरत थी, इस समय तैयार हो रहे हैं। वान डेर वॉर्निंग इस समय गेंदबाजी कर रही हैं, और भारत की अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। अंपायर से वो बातचीत कर रही हैं वान डे वॉर्निंग, और देखते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाती हैं। वो गेंदबाजी करने का सिलसिला निरंतर जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वैन डे वॉर्निंग जो कि गेंद कर रही हैं, पहली गेंद वाइड फेंकी थी, दूसरी गेंद के साथ आ रही हैं सैफ अली वर्मा को। उनकी गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, और इस समय विकेट के पीछे उसे कप्तान ने गैदर किया। कोई रन नहीं हुआ। 73 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के इस समय हो चुका है।
1: Well, that's a line. That's a line to ball. Fuller just outside the off stump. Yes. Beautifully bowled.
0: जी जी जी, बहुत बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यक है। और इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को ड्राइव किया था, गेंद हवा में उछली हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: वॉर्निंग की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, और बेहतरीन तरीके से उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। हालांकि गेंद हवा में थी, लेकिन कोई फील्डर वहां नहीं था, और सैफ अली वर्मा के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका ये निकल के गया है। अब तक उन्होंने 6 चौके जमाए हैं 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर में। एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेकिन अपना सर झुकाया और उसे जाने दिया विकेट कीपर के पास में।
1: Well, I didn't see the Indians good hookers of the ball, hookers or pullers of the ball, and it really surprised Sharif Ali for sure.
0: यह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27वां मौका है जब सैफ अली और स्मृति मंधना ने पहले विकेट के लिए भागीदारी की है 50 या उससे अधिक की। मनोज कुमार ने बताया इस बीच ये गेंद, और ये गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: भारत का स्कोर 83 रन बगैर किसी नुकसान के इस समय। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों ही बैटर्स या बल्लेबाज खेल रहे हैं। स्मृति मंधाना 32 पर, सैफ अली वर्मा 38 पर। नो बॉल का इशारा भी अंपायर ने किया है, और अब जाके एक और फ्री हिट मिलेगा भारत को। सैफ अली तैयार हैं फ्री हिट लेने के लिए, और जिस तरह से गेंदबाजी की थी, ऊंचाई पे उछलती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने भी देखा था हिट, और उसको फ्री हिट दिया है अंपायर ने। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, और संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में जोड़ा है। 14 रन अब तक अतिरिक्त रन के रूप में दे चुकी हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज। 84 रन बगैर किसी नुकसान के। वॉर्निंग जो गेंदबाजी कर रही हैं, वॉर्निंग काफ़ी अच्छी गेंदबाज मानी जाती हैं, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है कि विश्व चैंपियन के सामने एक नई टीम उतरती है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, और वही लगता है नीदरलैंड्स के साथ। इस बार इस गेंद को उठा दिया है, देखना है, लेकिन फील्डर उसके 30 गज के घेरे के बाहर की तरफ खड़ी थी, और पहले टप्पे के साथ में गेंद फील्डर के हाथ में गई, और इसके साथ ही ये ओवर भी समाप्त हुआ।
1: Well, that's a good comeback, isn't it? She got a no ball, which was just above the waist of Sharif Ali, and then she followed with a wide, and then a dot ball. So it's a good comeback by all means, for Wender. She's now, it's still there, 3 balls remaining in this over, and the run rate now inching towards 10. It's 9.88 precisely, 84 for Nola, so 9th over. Warning balls. She thrashes this one on the offside, straight to the fielder at cover point, no run, and 2 dot balls in a row. So we've seen 3 wides and 1 no ball in this over. I think, you know, that's going to be a real frustration. We'll see how many extras in this game so far. How many

0: divides how many buys? I mean, 14 extras. It's quite extraordinary. We are inside the 10th over, so that's quite high.
1: 15.
0: In fact, 15. 15. That's what... 15 wide. So it's quite extraordinary, the T20 games. The next ball has been flicked away on the own side. It's going down towards deep backward square. Just a single. And in comes the throw from Caroline De Lange. It's none for 85 and one ball to go in the 9th over. Now the speed of Van Der Wonning is around about, I would say, 108 to 115. And I feel that the fast bowlers from Netherlands have done a good job in this game so far. But the only problem is they haven't got the line and length clear. On top of that, plenty of wides. And the ball is still, you know, just moving around. There's something there for the medium-paced bowlers. And we're not seeing the keeper standing up to the stumps for the fast bowlers. Only on a couple of occasions I've seen that. Netherlands, a very small country with a population of 1.8 crores. And Dutch is the language they speak. And they're long cricket now, moving away from football. Here is Van Der Wonning, around the biggest balls, and she drives and misses and through to the keeper. First time the ball is beaten the bat. And a long over again, Van Der Wonning has bowled 2 overs, none for 25, and after 9 overs, it's none for 85. And 11 more overs to come off of this, I think. Just looking at the clock, you know, 45 minutes ago, and the ball just 9 hours, which means it could be, you know, penalised towards the later half of the game. But I feel this is one game where 200 looks there, isn't it?
2: जी जिस तरह से भारतीय टीम यहां पर खेल रही है निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है कि भारत की ये महिला खिलाड़ी अपनी इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगी लेंगे एक बार फिर से लेग ब्रेक गेंदबाज और ओवर पिच गेंद थी उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया चार रन के लिए
3: ये लगा आभा का चौका
2: यशवंत चार्ट जो बहुत ही हमारे स्कोरर हैं अनुभवी स्कोरर लेग साइड में ये पहला चौका लगा है ये बताया है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी और 89 रन बगैर किसी नुकसान के 9 ओवर की समाप्ति के बाद ये 10वां ओवर चल रहा है डी लेंज इस समय गेंदबाजी कर रही है फुल टॉस गेंद थी गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फिर से चार रन के लिए
3: ये लगा आभा का चौका
2: डी लेंगे अब जाके जमीन पर अपने हाथ रगड़ रही हैं गोया की गेंद उनके हाथ से छूटी है कुछ नमी सी है हाथ में और इस बीच दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं डी लेंगे और देखना है कि वो अपनी गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों को कोई प्रभावित कर पाती हैं या नहीं इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल चल रहा है भारत की रनों की संख्या बढ़ती हुई 93 पहुंची है और डी लेंगे एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद और इस बार ऑफ स्टंप की बाहर जाती हुई को धीरे से कट किया था पॉइंट की तरफ फील्डर के हाथ में और दोनों खिलाड़ी हालांकि क्रीज से बाहर निकल चुके थे और नॉन स्ट्राइक एंड पर जब तक की गेंद पहुंचती और गेंदबाज उसको विकेट्स पे लगाती दोनों ही बैटर सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी बहुत आगे निकल चुकी थी स्मृति मंधना बहुत ही किस्मत वाली रही कि इससे थ्रो बहुत धीमा आया और अन्यथा भारत को एक नुकसान उठाना पड़ सकता था बहुत महत्वपूर्ण विकेट होता इस बीच ओवर पिच गेंद थी ड्राइव किया कवर्स की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है अब जाके गेंद को फील्ड किया गया लेकिन तब तक एक रन और शैफाली वर्मा ने अपने खाते में जोड़ लिया है और भारत का स्कोर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए और जिस तरह सा का पिछली गेंद पर एक मौका था नीदरलैंड्स के लिए स्मृति मंधाना को रन आउट करने के लिए शैफाली वर्मा 48 रन पर जा पहुंची हैं 32 गेंदों का सामना किया है 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रही हैं इस समय स्मृति 32 रन के स्कोर पर खेल रही हैं जो पहले आगे थी अब शैफाली से थोड़ा रनों के मामले में पीछे आ चुकी हैं लेकिन स्मृति मंधाना जिस तरह से खेल रही हैं इस बार ये गेंद थी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव किया था वाइड मिड ऑन की तरफ एक रन अपने खाते में जोड़ा और उनका स्कोर हो गया 33 रन 28 गेंदों का सामना किया है स्मृति मंधाना ने और शैफाली खेल रही है समय 48 के स्कोर पर 2 रन अगर वो और बना लेती हैं तो ये एक अर्धशतक उनको एक नई ऊर्जा भी देगा इस बीच ये गेंद ऑप्शन के काफी बाहर थी ड्राइव किया इसे मिड ऑफ की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद एक रन ही मिलेगा और भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर जा पहुंचा है 96 रन बगैर किसी नुकसान के
0: So 96 from 10 overs, India really in firm control.

0: morning analysis in a while as I keep saying. And the most busiest month for all sports lovers all across the globe. It's been a month to keep your ears engaged with radio. Only so we'll be bringing all the matches of the Indian games and this T20 World Cup played in England. And the proceedings so far, Goswami, has been extremely good for India.
1: जी बिल्कुल जिस तरह से भारतीय बैटर्स यहाँ पर अपना हुनर दिखा रहे हैं और सैफ अली वर्मा जिनको काफी दिनों से इंतजार था ये गेंद अगली गेंद नया ओवर का पहला गेंद और उठा दिया है इसे एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए
2: ये लगा आभा का चौका
1: इस समय भारत का स्कोर 108 रन बगैर किसी नुकसान के एक शतकीय साझेदारी दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स ने की है स्मृति मंधाना और सैफ अली वर्मा बहुत मजबूत इरादों के साथ खेल रहे हैं सीगर से एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थे उठा दिया है गेंद को पहले टप्पे के साथ गेंद देखना है जाए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है छह रन का इशारा अंपायर का
2: ये लगा आभा का छक्का
1: भारत का स्कोर समय 114 रन बगैर किसी नुकसान के जिस तरह से गेंद को उठा के बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया था उन्होंने एकदम उछल कर मारा था और गेंद हवा से बतियाते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए गई थी इस बार ये गेंद एक कदम आगे बढ़ी ड्राइव किया से कवर की तरफ लेकिन वहां पर फील्डर उसने गेंद को फील्ड कर लिया एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस समय भारत का स्कोर बढ़कर हो गया 115 रन 11.3 ओवर का खेल इस समय पूरा हुआ है और रन रेट 10 रन प्रति ओवर की इस तरह में बहुत ही मजबूत रगड़े के साथ भारतीय टीम अपना स्कोर बढ़ाती जा रही है क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है कहीं यहां पर ताश के पत्तों की तरह से पारी बिखर जाती है कहीं रनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है एकमात्र छक्का भी इस मैदान पे लगा है और इस बीच ये देखना है कि गेंद 115 रन पर भारत को पहला झटका लगा है सैफ अली वर्मा आउट होकर वापस पेवेलियन जा रही हैं जिस तरह से गेंद को फ्लाइट किया था शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को उछाल के मारा था और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई फील्डर ने अपने हाथ में लिया और ये पहला विकेट भारत का गिर चुका है सैफ अली वर्मा जो बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही थी और उनको ज्वेलिंग ने कैच किया सीगर्स की गेंद पर 55 रन बनाए 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया और विश्व कप में ये पहला अर्धशतक है मनोज कुमार हमारे स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं कुल मिलाकर 33वां T20 15 का मैच है 33वां मैच है जिसमें इन्होंने ये विश्व कप में अर्धशतक जमाने का पहली बार अवसर पाया है मनोज कुमार स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं तो भारत को ये पहली विफलता कह सकते हैं भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सैफ अली वर्मा खेल रही थी लेकिन एक गेंद पर उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को हवा में उछाला था और बिल्कुल सीमा रेखा के पास जाकर गेंद पहुंची थी और ज्वेलिंग वहां पर खड़ी थी सीजर्स को एक सफलता मिली इस अगली गेंद एक कदम आगे बढ़ी ड्राइव किया उसे और बेहतरीन तरीके से कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ चार रन के लिए
2: ये लगा आभा का चौका
1: 15 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं लेकिन जो सुखद बात है वो ये है कि इसमें नीदरलैंड को सफलता एक मिली है विकेट लेने की बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उनकी गेंदबाज बीसी कैंग को ड्राइव किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी 119 रन अभी भी स्कोर है और जेमी माह रॉड्रिक्स इस समय आई है नए बल्लेबाज के रूप में एक अमेरिकन गेंद को ड्राइव किया और गेंद जा रही है मिड ऑन बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद खड़ी थी उन्होंने गेंद को फील्ड किया ज्वेलिंग ही खड़ी थी ज्वेलिंग ने गेंद को फील्ड किया थ्रो किया लेकिन तब तक भारत के पास मौका था एक रन लेने का 12 ओवर की समाप्ति पर 121 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर
0: Well, I was just looking at the celebrations after the fall of Shefali's former wicket. Every Dutch girl, they got absolutely excited seeing the exit of Shefali, and they were very happy because they got the first breakthrough.

0: इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर। ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही है। स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को, नीदरलैंड्स की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है। नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया। इस बीच गेंद थोड़ी हवा में थी मिड ऑन की तरफ, लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी, रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को। स्मृति का स्कोर 50 रन, अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं। और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन इस एक रन के साथ है, 130 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है। और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के विरुद्ध काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम। और देखना है कि किस तरह से ये राउंड द विकेट हमारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है, हवा में थी गेंद, फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया। इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहां 17,000 की क्षमता है, दर्शक क्षमता, काफी बड़ी संख्या में लोग और यहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद गेंद को लपेट के मारा है, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमिमा ने, लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा, 12 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया, 132 रन एक विकेट के नुकसान पर। भारत का स्कोर 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है। और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन प्रति ओवर उनकी। और इस बीच गेंद को ड्राइव किया है स्मृति ने, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई थी और अब जाके गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा उनको। स्मृति मंधाना का स्कोर इस समय 52 रन 38 गेंदों का सामना करने के लिए के बाद। और इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 10वां संस्करण महिला T20 विश्व कप का, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसने सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है, विश्वनाथ।
1: Well, the Australians have been the most dominant team in this World Cup so far.
0: Over disc का ये आखिरी गेंद थी उनके, शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को मारा है बाउंड्री, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: 137 रन 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर।
1: Well, I think, you know, if they don't hit 200 in this game, I'll be disappointed. So I'm sure they're just scoring at almost 10 an hour, and it's one of those games where you probably, as a batter, if you're not found form, you can find form, because some of the bowling effort from Netherlands has been too friendly, and bowled a lot of half crackers, the spinners, and the fast bowlers unfortunately couldn't find the rhythm. And it's been so far India's way, and I think there's a break on going on actually as such. And if you just switched on your radio sets, what's the reason here? Netherlands won the toss and they preferred to bat second, and both the openers have got half century, and Mandana continues a good form where she left against Pakistan, and the 50-50 World Cup champions now will find a great opportunity to break the jinx and then take over this World Cup. It's not so easy, but I think, you know, it's another World Cup era. I feel 3 or 4 teams are very strong in contention, including I probably will say England, because England are playing the home soil. Then we got Australia, of course. India is also a strong contender, and on the other side, if you look at we've not seen much surprises this World Cup in terms of lesser known opponents beating higher ranked teams. Now, Bangladesh probably had a bit of a tough time against the Netherlands in the first game on last Sunday. But I think Netherlands, I see a lot of promise in this Netherlands side. They've got some good, serious talent. And just to tell you about this Dutch girls, you know, when they were playing the tri-series a couple of months before, most of them were flying in and out of Netherlands to finish their exams, so which is quite extraordinary, isn't it? And the love for the game continues, no doubts. So the last game against Bangladesh, their first World Cup match, they scored 139 for 8, and Bangladesh chased it in the last over, 19.1 overs. But D. Lead was wonderful to watch, 50 runs, he got half century of 45, the wicketkeeper

0: batter, 26 years of age, very promising, you know, player from a Dutch point of view. And I was just saying about the recent tri-series with Bangladesh and Scotland, the Dutch women were flying in and out of the subcontinent to finish the exam. It was quite extraordinary. So that's what it's all about. The other cricketer, Caroline D. Lange, I said about her, she's a doctor by profession. She's a neurosurgeon, I believe, and she skipped it, and she's continuing on with their orange, you know, tower to represent the country. So cricket is fast catching all across the country. I think BCCI is doing a great job, no doubt on that, and I feel, I keep saying in many of my matches that I come across, the T20 is a beautiful marketing tool and for lesser-known countries to endorse the game. And it is the first step to climb when you go to the next set of games, the 50-50 and test matches.
1: विश्वनाथ इस टूर्नामेंट में जो कि ये दसवां संस्करण है सर्वाधिक बार ऐसे छह बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में छह बार कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप में चैंपियन रही है जबकि इंग्लैंड ने 2009 में जो कि इसका पहला संस्करण था उस समय इंग्लैंड ने इसे जीता था और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड जो कि पिछले साल दो साल पहले 24 में न्यूजीलैंड तो वर्तमान में न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है और अब देखना है कि नए ओवर के साथ सिल्वर सीजर्स एक बार फिर से आ रहे हैं दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज गुगली भी डालते हैं उनकी गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी एक कदम पीछे हटी और गेंद को मिड विकेट की तरफ धीरे से टर्न किया था कलाइयों के सहारे से बहुत तेजी के साथ नहीं गई थी गेंद एक रन और स्मृति मन ने ले लिया 53 रन उनका स्कोर 39 गेंदों पर भारत का स्कोर इस समय 138 रन एक विकेट के नुकसान पर 14 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था उस समय रन रेट यानी रन औसत था 9.74 तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही है शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी उन्होंने गेंद को फील्ड किया थ्रो किया विकेट कीपर के पास विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है बबेट डी लीट नीदरलैंड्स के कप्तान है जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था दूसरे मैच में सामना कर रही है नीदरलैंड्स का इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था इसे ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर
2: ये लगा आभा का चौका
1: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57 रन और 143 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर एक कदम आगे बढ़ी थी बेहतरीन तरीके से प्रहार करते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था सीजर्स की अगली गेंद एक बार फिर से एक कदम आगे निकली और गेंद हवा में आई बहुत तेजी के साथ जा रही है और अब जाके बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन का इशारा अंपायर की तरफ से
0: mid off and the extra golf inner fielder on the fence. I think it's a big mistake to have mid off inside the circle because she's down the track freeing her arms and gets her right foot away and then she lifts it in the air with the ease for fours and sixes.
1: जिस तरह से भारत की पारी बढ़ती जा रही है आगे एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है चार रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर
2: ये लगा आभा का चौका
1: भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन एक विकेट के नुकसान पर सीजर्स की गेंद को पूरी तरह से सबक सिखाते हुए भारतीय बल्लेबाज दोनों बीच मैदान पर खेल रहे हैं रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना बहुत तेजी के साथ रन बन रहे हैं 151 रन एक विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से सीजर्स आ रहे हैं उनकी गेंद ओवर पिच गेंद थी गेंद को डीप विकेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव किया है चार रन के लिए
2: ये लगा आभा का चौका
1: चार चौके इस ओवर में विश्वनाथ लगे हैं भारतीय टीम की तरफ से
0: Four boundaries in a row, and so very expensive. I think that's the most expensive I've seen in this game so far. So, see, the Netherlands bowling has been taken apart by these Indian batters, and 200 looks very much on the cards now, and very expensive by all means. But some of the deliveries I've seen bowled by Netherlands have been too, you know, probably below par.

0: उन्होंने लुढ़कते हुए एक शानदार कैच लिया और उछलते हुए गेंदबाज ने भी अपने आप अपनी खुशी का को जाहिर किया यहां पर। और भारत का स्कोर इस समय 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जेमी मर ड्रिक्स ने दो चौके इस पारी में लगाए थे।
1: You look at the celebrations of the Dutch girls, amazing, isn't it? They are celebrating each and every moment of this game. They're really enjoying this World Cup as a team together. And whenever they get a wicket, you know, irrespective of the score, I think the celebration has been wonderful to watch. And they are taking this game to a different level when they go back to Netherlands a couple of weeks from now. I'm sure there'll be a lot of learnings, and this experience is going to be very handy for them, for the future generation within Netherlands, to take the game and endorse T20 cricket very seriously. And their celebrations are wonderful to watch.
0: बिल्कुल। इस समय मंधाना और शैफाली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, शैफाली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए। इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा। यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद 3 विकेट भारत को गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नजदीक से निकलती हुई ग्लव से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया। इस बीच अगली गेंद थी राजकीय, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफसाइड में और पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर। तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे। इस बीच ओवर पिच गेंद के देरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया। 2 रन 2 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 2 रन बनाए। 165 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है। वापस गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
1: इट्स माय कर्स।
0: जैसे ही आपने तारीफ की, उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। ऋचा खेल रही हैं, ऋचा घोष विकेट कीपर हैं भारतीय टीम की, एक रन के स्कोर पर, और यस्तिका खेल रही हैं 2 रन के स्कोर पर। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और गेंद को लेकिन बहुत ऊपर उठी है, देखना इसको नीचे फील्डर कैच करवाते हैं, यही ड्रॉप कर दिया, ये गेंद छोड़ दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौलकबीर वहां पर खड़ी थी, उनको लगभग गेंद उनके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन यस्तिका की किस्मत अच्छी रही कि गेंद एक आसान कैच छूट गया डच खिलाड़ियों के हाथ से। काफी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुआ था। उन्होंने देखा कि मिड ऑफ पे खड़ी फील्डर आगे आ रही हैं, लेकिन जब देखा कि वो नहीं आ रही हैं तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने गेंद को हाथ में ले लिया था, लेकिन छिटक कर कैच चला गया। इस तरह के कैच बहुत महंगे साबित होते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को धीरे से डीप स्क्वायर लेंग की तरफ सीजर्स के पास खेल दिया, एक रन और अपने खाते में जोड़ते हुए यस्तिका का स्कोर हो गया 3 रन और ऋचा घोष खेल रही है 2 रन के स्कोर पर इस ओवर की समाप्ति पर।
1: Well, the last over, it was not really a catch that was dropped. They also missed the run out. In fact, Richa was not running to the other end. She thought she's going to be out for sure. And it was a very easy chance that was spilled at the cover area. I tell you, that was basic stuff. It was kid stuff indeed. And that should have been catchable at any standard. And unfortunately, she dropped it. It all happens in any form of cricket at any level. But they probably would have got back to basics in trying to run the batter at the other side. They missed both of them. it's a bit of an experience on the part of Netherlands side. But nevertheless,

जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे, ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था। इस समय ऋचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह अगली गेंद

0: विकेट के नुकसान पर। ये अगली गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, गेंद बिल्कुल हवा में जा रही है और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा हम बता ही रहे थे कि ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं, ऋचा घोष ने एक बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाकर गिरी थी। एक और शानदार छक्का ऋचा घोष के बल्ले से निकला और भारत का स्कोर 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ऋचा घोष फिर से तैयार हो रही हैं, 5 गेंदें उन्होंने मात्र खेली हैं और 15 रन बना लिए हैं। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल किया है उसे, देखना है फील्डर नीचे नहीं लेकिन बहुत पीछे थी फील्डर और पहले टप्पे के साथ फील्डर के हाथ में आया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 1 रन और ऋचा घोष ने अपने खाते में जोड़ लिया, 16 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया इस समय 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारत का स्कोर, ऋचा का स्कोर हो गया 16 रन, 6 गेंदें मात्र खेली हैं और वेन डी राट की ये इस ओवर में 8 रन अब तक ले चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी शेष हैं। हरमनप्रीत इस बार तैयार हैं। अगली गेंद का सामना, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया उसे और गेंद अब जाके फील्डर के हाथ में आई लेकिन तब तक हरमन और ऋचा ने 22 गज के इस घेरे की पट्टी को दौड़ते हुए पूरी किया। हरमनप्रीत का स्कोर हो गया 4 रन, 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। ऋचा अब 16 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं। अगली गेंद का, भारत और नीदरलैंड्स के बीच में T20 विश्व कप का यह मैच, टॉस नीदरलैंड्स ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। राट की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पॉइंट बाउंड्री की तरफ उसे गेंद को टैक किया था और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 190 रन भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर।
2: Well, the last shot was just fantastic to watch from Harmanpreet Kaur. Just bounced inside the fence for 4, one bounce. And the fielder at the boundary, she was not at the edge of the boundary rope. She was just, yeah, what I would say, a couple of yards in front, and she was never in control of that. That was catchable by all means. 190 for 4, one ball to go in the 19th over. And well, India should get past 200. I think that's what everyone was looking at. Right in the last bowls, Fuller. That's beautifully bowled. It was a dot ball in the over. Fuller, Yorkerland ball, and Richie was trying to make some space and crush it and missed it. And a dot ball, 4 for 190 from 19. Exactly 10 is the scoring rate from India's point of view. If you just switched on your radio sets, you're driving the car. It's one of the best form of entertainment. And India was sent in by Netherlands today. The second of the matches they're playing this World Cup. They're 190 from 19 overs and well set for a 200. I think we're not seeing the 200 score in this World Cup so far. And well, we're not seeing much surprises from the Dutch women. But I tell you, they've taken this game at a different level. And they're going to be a big inspiration for the future generation within Netherlands to come up. And the first game they played against Bangladesh, they played well. First ball, here is now, Zwilling Bowles gets an edge, it's going down towards deep. Third man, and run away for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: Not a great start to the last ball, to the last over. It was a tick outside edge and it flies past the fielder who is inside the circle within the 30 yards and wide off her for 4. So that's what India needed. 194, 5 legal deliveries remaining, and good entertainment indeed provided by the Indian batters. Richa goes in 20 from 8, and Harmanpreet Singh on 8. Next ball is wide down the Lakshad. Well taken by the keeper. Beautifully done indeed. And a dot, and it's an extra delivery. Lots of wides in this game. And Zwilling, she's bowling the last over. No wicket for 27 from 3.1 overs. Bowling analysis. And well, I'm sure this is a match that I'm sure is going to boost the confidence of the Indian batters, particularly the bowlers, when they come and have a go at the Dutch women. This next ball short, and she hits it high, and well caught, all dropped again. She almost caught it, and I thought she was in control of that, and in the end she dropped it. I'll tell you, frustration for the Dutch team. It was, in fact, Richa, she dropped it at mid-off, and that was coming at a comfortable height. A slower ball indeed. It was a bit of an off-spinning delivery. And Harmanpreet Kaur was never in control of that and headed straight to the fielder at mid-off and she dropped it. It was a kind of a lolly pop chance. Next ball is driven hard. This time she misses the field, misses the ball. It's beaten her.

0: We were talking about Shefali Verma. She did it. And of course, Smriti Mandana's Always On Song. I think it's a good total for India.
1: Right, a couple of boxes ticked, especially, Colonel, when you look at India's top order. You wanted them to come back into form before the bigger South Africa assignment arrives.
2: Oh yes, Shefali has played really well today. And so has Jemima for the short time she was there. She scored about 20 runs. And of course, Mandana was flawless. We had a minor hiccup in the 16th and 17th overs where we lost three quick wickets. But that, I suppose, was that we wanted to go in for a big score, 200 plus. And we took some chances and that is how we lost those three quick wickets.
1: Right, so no complaints there whatsoever. They had to bat that way.
2: Not at all.
3: वैशाली जब ये दोनों ओपनर्स शेफाली और स्मृति सॉन्ग पे होती हैं अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है पावर और टाइमिंग
4: जी शेफाली पावर एंड स्मृति टाइमिंग एंड सबसे अच्छी बात ये फियरलेस बैटिंग करी आज शेफाली वर्मा ने एंड ये उनके लिए बेटर है क्योंकि उनका जो बैट का स्विंग है वो साउथ अफ्रीका के लिए मैच के अगेंस्ट उनको बेटर वे में उनको कह सकते हैं कि रन रेट उनका इक्वल कर सकता है एंड उसके साथ साथ स्मृति मंदना हमेशा ही इतना फियरलेस खेलती हैं वो तो उसकी उनके बारे में क्या ही बात करें हम और उसके साथ अगर मैं जेमिमा की बात करूं तो जेमिमा ने काफी फियरलेस बैटिंग करी है लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि उनको और बेटर पिच पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जो आने वाला आपका नेक्स्ट मैच है उसके लिए आपको टीम पिच पे टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी था आज एंड यस्तिका भाटिया एज अगर हम कंपेरिजन करें भारती की और यस्तिका की तो दोनों सिमिलर है अभी दोनों एक ही जगह पे स्टैंड कर रहे हैं एंड कोई भी खेले बट हरमनप्रीत को उनकी जगह पे आना चाहिए था और बेटर हमारा रन रेट बढ़ सकता था एंड उसके साथ अगर हरमन की बात करूं तो लास्ट मैच और इस मैच में देखे तो उनका बैट उस तरीके से चल नहीं रहा है जो साउथ अफ्रीका के लिए हमें चाहिए बैटिंग
1: राइट अगर हम बॉलिंग की बात करें नेदरलैंड्स की तो दिलांगा उन्होंने दो विकेट चटकाए और सीगर्स ने भी एक विकेट चटकाया उसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया वर एबल टू टैकल द स्पिनर्स वेल क्या उन विकेट्स के चलते आप कह सकते हैं ये कर्नल की इस विकेट में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए मदद जरूर है
2: या देयर इज स्लाइट यू नो असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स हालांकि विकेट थोड़ी फास्ट खेल रही है लेकिन अगर आप राइट स्पॉट पे फ्लाइट करके बॉल डालोगे तो हल्की सी टर्न भी है जिससे बैट्समैन को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी
3: सौमित्र इट्स ऑल्सो अबाउट हु दे आर अप अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल असेट मंदाना इवन इफ इट्स एन ऑफ स्पिनर इन फ्रंट ऑफ हर इज नॉट गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल
0: Absolutely. But just to add to what Colonel said, all the five wickets that India, all the wickets that fell, so all were bad dismissals. Have you noticed that? There was kind of strokes Jemmy played, you know. Richa was lucky because she was dropped on two.
1: Right.
0: I mean, imagine if Harmanpreet was also not dropped, we could have been in bigger trouble. It so happens that ye jo hamara team hai, opposition hai, is Netherlands. Imagine, can you do this with Australia or South Africa? Answer is no. And spinners, yes, fine, but did you see the ball turn too much? Not too much, maybe. Because the point is this, they were both trying to, that's what I said, ki in the 16th over onwards, the Dutch bowlers tried to get something back out of this game.
1: Right.
0: That's why Dilange got. But again, the wickets we gave Dilange were gifts.
1: Got it.
0: Except for the fact that Yastika stepped out, missed the line completely and was bowled and was stumped.
1: Right.
0: So the point is how you played the match. I think it's largely because the two batsmen in the top of the order, they got the runs. And if it's contrast of the first match, where the middle order got the runs, the top order did not. Here it was a bit of a reverse. Mm-hmm. But things are, there are lessons to be learned from this match.
1: Harping about the spinners once again then, if it's not turning as much, Vaishali, jis tarike se chahalkadmi ki thi Smriti ne, the fact that she was able to use her feet to the spinners, that brought a lot of runs. Do you think the opposition will borrow a leaf out of her book? Wo bhi waise hi khelne ki koshish karenge, jis tarike se Smriti ne pace out kiya tha apne innings ko?
4: ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि जहां पर अभी स्पिनर, अगर हम पूरा आंकड़ा निकाल के देखें तो अभी भी स्पिनर ने ही विकेट ज्यादा ली है. एंड हमारी दीप्ति शर्मा, अगर वो जैसे उन्होंने लास्ट मैच में पकड़ के एंड स्पॉट बॉलिंग की थी, वही अगर वो उस तरीके से बॉल करते और श्री चरणी करते तो

0: सकता है आज दोनों ही बॉलर अपने नाम लिए विकेट कर सके।
1: भूप और खास करके हमने दीप्ति के केस में देखा है कि अगर वो कोई चीज को वेरी करती है, वो होता है उनका पेस, वो होता है उनके लेंथ, लेकिन लाइन हमेशा सटीक ही रहता है।
2: देखिए शी इज अ वेरी गुड।
3: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
5: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
4: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
4: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में

0: 45,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत

0: नाटक मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आईसीसी T20 महिला विश्व कप के अंतर्गत लीड्स के हेडिंगले स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हम रिले करेंगे।
2: Clara Polosek is the umpire for this game. She's standing in her 75th game, which is quite extraordinary, isn't it? The number of T20 games are played. And the other umpire is Sue Redrofin. Next ball short, she pulls away, and unconvincingly it's going down towards the deep mid-wicket fence. Couple of bounces and near the fence for four. That's the third boundary of this Dutch innings. They've gone up to 17. And they've been a little severe on anything short now, saying in this whole game. And 17 on the board, and after 2 hours, promising start, I would say, Goswami, from a Dutch point of view, 17 from 2. They haven't lost a wicket. They're not afraid to play the shots, and they're ready to take the risk. I think, you know, probably we'll see some entertainment.
3: अब तक के खेल में जिस तरह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव था वो लगता है कम हुआ है बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स की बल्लेबाजों के सामने, क्योंकि काफी आक्रामक तरीके से वो खेलना उन्होंने शुरू किया है और विकेट की परवाह नहीं की। 209 रन का स्कोर उनके सामने लक्ष्य के रूप में खड़ा है, लेकिन वो देख रही है कि किस तरह से जल्दी जल्दी रन किया जाए। और क्रांति गौड़ की अगली गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन एक्स्ट्रा वाइड स्मिडॉन की पोजीशन पर खड़ी फील्डर ने गेंद को, शैफ अली वर्मा थी वहां पर, गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन लेने का मौका नहीं दिया। भारत और नीदरलैंड्स के बीच T20 विश्व कप जो कि इंग्लैंड के लीड्स में खेला जा रहा है, हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड, 17,000 की दर्शक क्षमता है, लेकिन काफी बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक आए हैं। महिलाओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, इससे अंदाज लगता है कि महिला क्रिकेट के प्रति न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों को रुझान बढ़ा है। इस बीच गेंद को धीरे से पुश किया था शैफाली वर्मा के पास, फिर से गेंद, उन्होंने थ्रो किया था, उनको लगा कि किसी की चोट ना लगे, अपने सर पे हाथ लगाया, लेकिन सब कुछ सुरक्षित थे। सीजर्स, हीथर सीजर्स 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रही हैं और मॉलकेन बोर इस समय खेल रही हैं 6 रन के स्कोर पर, 17 रन बगैर किसी नुकसान पे। 2.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। 210 रन का एक लक्ष्य दिया गया है। क्रांति गौड़ दूसरा ओवर इस समय कर रही हैं अपना। पहली दो गेंदों पर उन्होंने कोई भी रन लेने का मौका नहीं दिया है दोनों ही डच बल्लेबाजों को। और अब देखना है कि सीजर्स तैयार हो रही हैं लंबे कद की, और सीजर्स एक बार फिर से गेंद लेग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद को धीरे से उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ से टर्न कर दिया, पूरी तरह से देख लिया था उन्होंने गेंदबाज के इरादों को, भांप लिया था, और जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप की तरफ पड़ रही है वो पहले से अपनी जगह से हटी और गेंद को धीरे से घूम टर्न किया था कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ से, और 18 रन, एक रन और खाते में जुड़ा है। नीदरलैंड्स के सीजर्स का स्कोर है हो गया 11 रन। मॉलकेन बोर इस समय 6 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार खड़ी हैं। दाएं हाथ से क्रांति गौड़ की अगली गेंद पैड पर टकराई थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, हालांकि ऋचा घोष ने उम्मीद के साथ हाथ ऊपर किया था, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम था। नीदरलैंड का स्कोर इस समय 18 रन बगैर किसी नुकसान के। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि नीदरलैंड्स के दोनों ही बल्लेबाजों को ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर के सामने थोड़ा संभल कर खेलेंगे, कुछ रुक कर खेलेंगे, लेकिन उन दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छे रन बनाने शुरू कर दिए। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक रन और मिला, 19 रन, कोई नुकसान नहीं नीदरलैंड्स की टीम की। दोनों ही बैटर्स इस समय खेल रही हैं।

0: तरह से 7.50 की औसत से ये रन बने हैं और 7.5 की एवरेज से भारत ने बनाए थे 38 रन। इस बीच अगले ओवर के साथ अब देखना है भारत की तरफ से कौन सी बॉलर आती हैं। क्रांति गौड़ इस समय इस कर रही थी नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ के हाथ में मध्यम गति की तेज जो गेंदबाजी थी उसका जिम्मा दिया था। भारत ने 38 रन बनाए थे पावर प्ले में और नीदरलैंड ने अभी तक बनाए हैं 30 चार ओवर के खेल का ये जो तुलनात्मक यशवंत चाड ने हमको बताया। नंदिनी एक बार फिर से आ रही है नंदिनी शर्मा मध्यम गति की तेज गेंदबाज दाएं हाथ से ओवर द विकेट। उनकी गेंद लेग स्टंप के भाग की तरफ जा रही थी और गेंद को घुमा दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: नंदिनी शर्मा ने लेग स्टंप के बाहर की तरफ गेंद डाली थी और पूरा मौका था बल्लेबाज के लिए कि वो उस गेंद को घुमा दे डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए गेंद निकली थी। इस चौके के साथ ही नीदरलैंड्स के स्कोर में 4 रन का इजाफा 4 रन की वृद्धि हुई 34 रन बगैर किसी नुकसान के 4.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। देखना है कि भारत के गेंदबाज कितना नियंत्रण कर पाते हैं। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाके और स्मृति मानधना को ये वहां पर गेंद सीधे उनके हाथ में पहुंची। ये पहली सफलता मिली है। सीजर्स को आउट किया था नंदिनी शर्मा की इस गेंद पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट मिला। स्मृति मानधना ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और अपनी जगह पर खड़े होकर उन्होंने ड्राइव किया था। थोड़ी नीची गेंद थी लेकिन एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर पहले छूटी थी हाथ से गेंद लेकिन बाद में अपने आप को संभालते हुए स्मृति ने गेंद को पकड़े रखा और ये पहली सफलता नीदरलैंड्स के विरुद्ध मिली है। 34 रन पर पहला विकेट हीथर सीजर्स 4 चौके की मदद से 21 रन 16 गेंदों का सामना और अब जाके दूसरी बैटर बीच मैदान पे आएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि T20 विश्व कप का ये 10वां संस्करण है जहां आज भारत और नीदरलैंड्स का मैच हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड में खेला जा रहा है। टॉस पहले नीदरलैंड्स के कप्तान ने जीता था और पहले आमंत्रित किया था भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। 209 रन बनाए थे भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर एक बड़ा स्कोर T20 के हिसाब से और हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने बहुत तेजी से हिसाब लगाते हुए दिखाया कि 200 रन या से अधिक रन बनाने का यह तीसरा मौका है। दो मौके 2026 में 219 रन एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने श्रीलंका के विरुद्ध एडवेस्टन में बनाए थे। भारत ने 209 रन पर 5 विकेट भारत ने नीदरलैंड के विरुद्ध बनाए अभी इसी मैच में और 213 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के विरुद्ध केपटाउन में 2023 में बनाए थे। अगली बल्लेबाज के रूप में बबेट डी लीडे जो कि कप्तान हैं नीदरलैंड्स की विकेट कीपर हैं अब बीच मैदान में आए हैं। इससे पहले बांग्लादेश में पराजित होने के बावजूद लीडे ने एक शानदार अर्धशतक जड़ा था वहां पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट नन्हे की गेंद अच्छी गेंद थी मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद को फिर से पीछे हटते हुए अपनी गेंद को पुश किया था मिडऑन की तरफ। वहां पर शैफाली वर्मा खड़ी थी। शैफाली वर्मा ने गेंद को फील्ड कर लिया और क्रांति गौड़ ने 111 किलोमीटर की से अधिक रफ्तार की ये गेंद डाली थी। एवरेज स्पीड या औसत उनकी जो गति है 111.8 रही है। इससे पहले 103 किलोमीटर की रफ्तार से वो गेंद कर चुकी हैं। इस बीच फिर से नन्नी को एक सफलता मिली थी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उसे धीरे से खेल दिया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ लेकिन वहां पर खड़ी फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन लेने का कोई मौका नहीं। 35 रन एक विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर का खेल इस समय पूरा हो चुका है और जिस तरह से नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ की गेंदबाजी का एक अगर दोनों का एक्शन देखा जाए तो दोनों का लगभग एक सा एक्शन लगता है। दोनों काफ़ी विकेट कीपर आकर काफ़ी ऊपर क्रीज से ऊपर आके हाथ उनका काफ़ी ऊंचाई पर रहता है। इस बीच नंदिनी शर्मा एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद इस बार धीरे से गेंद को पुश किया कलैयों के सहारे से मिड विकेट की तरफ।

0: Shefalia, you can't take her lightly. She's a very tricky customer. She comes in and bowled short and has thumped off the back foot, strike to back of a square. It's been fielded by Deepthi Sharma. She got 5 wickets in the last game against Pakistan. Meher is the player of the series in the World Cup 2025, 50-over format. The Lynch stayed 1 for 37 from 5.4 overs. Verma balls. She's down the track and adjusts to the pace of the ball and ends up playing a little uppishly. Deep mid wicket comes in. 1 for 38. And the lead goes up to 2 from 4. One ball to go in this eventful sixth over, which has had its own part of the story with one of the Indian fielders injured. Next ball, worked away on the onside. They run the first one quickly, and the cellless Conte Grout is the fielder. A long over indeed, 2 overs, none for 14 is the figures of Shefali Verma. And Netherlands 39 for 1 from 6 overs.
1: पावर प्ले के साथ ही समाप्त हो गया है 39 रन बगैर एक विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है एकमात्र खिलाड़ी हीथर सीजर्स आउट हुई थी कॉट स्मृति मंधाना बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन उन्होंने बनाए और 4 चौके लगाए थे काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे उसके बाद में मेलकिन बोर जो इस समय 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रही हैं 16 गेंदों का सामना किया 2 चौके उन्होंने लगाए हैं और कप्तान बबेट डिलेड 2 रन बनाकर खेल रहे हैं तो इस समय 6 ओवर में 39 रन बनाए थे 6.5 के औसत से भारत ने 59 रन बनाए थे 9.6 से अधिक रनों से जी इस बीच ये गेंद एक बार फिर से इसको गेंद को ड्राइव किया था मिडॉन की तरफ पर मिडॉन से फील्ड करते हुए गेंद को ड्राइव किया था थ्रो किया वापस लेकिन तब तक एक रन और बनाया 40 रन इस समय हो गया नीदरलैंड का स्कोर 6.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है इस बीच गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार हुई है श्री चरणी बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी ड्राइव किया है गेंद को लेकिन सीधे 4 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर
2: ये लगा आभा का चौका
1: नीदरलैंड्स का स्कोर 44 रन के एक विकेट के नुकसान पर इस समय हो चुका है श्री चरणी जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी उन्होंने और बल्लेबाज के पास पूरा समय था कि वो गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट रीजन के बाहर भेज दें 5 रन अब तक श्री चरणी दे चुके हैं इस बीच एक गेंद थी स्लॉट पे पड़ी एक कदम आगे निकली बल्लेबाज गेंद को ड्राइव किया था और वहां पर गेंद को फील्ड कर दिया कोई मौका नहीं था 166 रन की दरकार है अभी नीदरलैंड्स को 81 गेंदों का सामना करने करके वो ये अगर स्कोर बना लेती हैं तो वो इस मैच में कुछ परिणाम और हो सकता है लेकिन फिलहाल बहुत दबाव में 6.3 ओवर में ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को धीरे से मिड विकेट की तरफ खेला और अब जाके 2 फील्डर उसके पीछे भागते हैं गेंद को फील्ड किया थ्रो किया विकेट कीपर के पास रॉड्रिक्स ने और 1 रन और 45 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है नीदरलैंड्स का श्री चरणी जो कि बाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक तरीके से बाएं हाथ का जो लेग ब्रेक गेंदबाज होता है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज कहते हैं उसको ये गेंद एक कदम आगे बढ़ के ड्राइव किया था लेकिन सीधे मिड ऑफ के हाथों में कप्तान हरमनप्रीत वहां पर खड़ी थी गेंद को फील्ड कर लिया हालांकि छिटक की गेंद आगे गई और आगे आके धीरे धीरे कदमों से उन्होंने गेंद को उठा लिया लेकिन बैटर को कोई मौका नहीं मिला कि वो इस पर कोई रन बना सके 45 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय डी लीड खेल रही है 7 रन के स्कोर पर मॉलकिन बोर खेल रही है 15 रन के स्कोर पर और अब जाके अपना छोर बदला है ओवर राउंड द विकेट फिर एक बार आ रही है एक बार गुड लेंथ गेंद थी सुरक्षात्मक तरीके से खेला और 7वें ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड्स का स्कोर 45 रन एक विकेट के नुकसान पर
0: Well, the asking great has gone beyond 12.5. So this game is slowly getting out of the reach of the Netherlands. And they need to find some kind of big hitting in the next 3 or 4 overs to bring that run rate to run about 10 an hour so that they can have a go in the remaining 10 overs. So you have all kinds of calculation. We're just looking at some of the IPL matches that got recently concluded. 200 was the benchmark. Now India have done this 200 benchmark now in the T20 World Cup. They are

0: इस मैच में जो एम्पायर हैं क्लियर पोलोशेक और सूर्य डफर्न जो कर रही हैं मैदान में एम्पायरिंग, लॉरेन एगेन बैग तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं। इस समय नीदरलैंड के स्कोर 56 रन पर दो लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ता जाए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की अभी तक जो फील्डिंग में एक कसावट नजर आती है नीदरलैंड की फील्डिंग के मुकाबले वो अभी तक भारत के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है। 57 रन दो विकेट के नुकसान पर डी ली डे समय खेल रही है, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया था सीधे कवर्स के पड़े खिलाड़ी के हाथ में, शेफाली वहां पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया। श्री चरणी इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं श्री चरणी, जैसे बाएं हाथ की गेंदबाज हैं और बैटर्स को कोई मौका नहीं दे रही हैं। इस बार श्री चरणी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, स्लॉट पे पड़ी, ड्राइव किया इसे, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पर हरमनप्रीत कौर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई भी मौका नहीं दिया। लीड और कैलिस इस समय दो बैट्समैन बैटर्स खेल बीच मैदान पर, बाबेट डी लीड जो कप्तान हैं। इस बीच एक बार फिर से श्री चरणी की गेंद लेग स्टंप की तरफ, गेंद को टर्न किया था और देखना है गेंद पैड से टकराई या बैट से लटके गई, अब जाके फील्ड किया दीप्ति शर्मा ने और अंपायर भी देख रही हैं और बेल्स हालांकि वहां पर बिखेर दी थी, एक हाथ ऊपर करके एक हल्की सी अपील विकेट के पीछे से श्रेया घोष कर रही हैं, लेकिन अंपायर ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 9 ओवर की समाप्ति पर 59 रन दो विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर।
1: Well, it's a bit grinding there for Netherlands, and the asking rate now is just beyond, slowly beyond the reach now. It's almost touching 15 and over. So they probably can gain a lot of experience by the time this match ends, and I'm sure somewhere down the line we ought to see some of these players from Netherlands in the early IPL games also, and they like to play in such a big crowd in India, and 2 for 59. But interestingly, I was just observing one thing, is that these matches are not played under the artificial lights, and probably one of the reasons they would have found is the clashing of the timing of the football games played in the United States and Mexico and Canada. Deepthi Bowles, first ball worked away in the onside, and they'll run an easy single indeed, and D-lead, she's on 15 from 13, Callis 6 from 6, that's 2 for 60 from 9.1 overs. Corinthians Bull 2 overs for 9, Nandini 2 overs 1 for 16, Shafali 1.5 overs, none for 14, and Sri Charanius Bull along with Deepthi Sharma. Sharma in the second over, close to Sam's Bowles, and she stops. I think she lost the footing over there, and then the umpire says it clears it as a dead ball. She wants a shuffle in the field now. It's been a bit of a blue sky, could see all around the Leeds ground, and which means that we don't want to see a thread of rain. It's one of those ground where when you play most of the matches in England in particular, the daylight pattern could change. Deepthi Bowles, she's down the track, hoists it high in the air, over mid on, one bounce to the fielder Shafali, and not more than that. We didn't get a six in the last game that the Netherlands played against Bangladesh, so they're not finding those long boundaries. As a matter of fact, 2 for 61 in the 10th over. They need 149 from 64. It's very demanding now, as a matter of fact. Deeply bowled, slower, and plays with an angle face of the bat. Beautifully played. There's a bit of a deft touch in that. It's going down towards the deep third man area. Smithy Mandana, she's after it, and she chases, fields, picks it up, returns, and a couple of runs for the Netherlands team. They go up to 63 for 2, midway of the 10th over. And 147 from 63, that's a massive ask. Callis, she's an 8 from 7, and D lead, the captain, 16 from 14. And to turn it around from here is next to impossible, as a matter of fact. There's an amazing stadium, the Leeds, and it's got its own stories, history. Plenty of games played. Next ball short, she cuts, beautiful short indeed. She made some room and played it beautifully. Square of the wicket, one of the good shots of the evening. That's gone for 4.

0: There was so much of class in the shot from Dee Laid. She rocked onto the back foot and played it square. There was a bit of turn and comfortable bounce to play the shot of the back foot. That's gone for four. That's a third boundary. I could see her. She's so good with her footwork. She's nimble-footed. And she's very fast down the track or playing off the back foot. Two for 67. India 94 at the time. Next ball is Dhawan around the wickets as Deepthi started bowling around the wickets, in fact, rather. Down to long on. It's two for 68 from 9.5. And still, I would say it's a decent score when you put up 65, 70 odd runs inside the 10 overs. And here's Deepthi, the last time, comes and throws this one nicely, and the batter played from the crease without any foot movement, and it goes through to the keeper. A dot ball to India. 10 overs gone. 2 for 68.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय कश्मकश जारी है गेंद और बल्ले के बीच में, और देखना है कि नीदरलैंड्स की ये पारी कहां तक जा पाती है। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने काफी कसावट भरी गेंदबाजी की है इस समय। दीप्ति शर्मा बहुत ही स्टार गेंदबाज हैं भारत की तरफ से। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, सबको चकित कर दिया था। भारत ने 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए थे। 10 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, यानी नीदरलैंड्स अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है, लेकिन उनका रन का जो खाता है अभी 68 रन पे अटका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे, हीथर सीजर्स 2 रन पहले आउट हुई थी, उसके बाद मॉल्केन बोर आउट हुई थी। सीजर्स ने 21 और मॉल्केन बोर ने 15 रन बनाए थे। इस समय स्टीव कैलिस मैदान में खेल रही है। क्रांति गौड़ को लाया गया है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पे गई और गेंद को स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। तो इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है, और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रही हैं। लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा। उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18 रन, उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। लीड का स्कोर इस समय है 16 रन 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बैबेट डी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: लेग स्टंप के बाहर चीर गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसलिए अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी, लेकिन और इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला। बबेट डी लीड कप्तान हैं, और इससे पहले जो बांग्लादेश के विरुद्ध मैच खेला था इस T20 विश्व कप में, अपना पहला मैच खेला था, वहां पर 50 रन से अधिक उन्होंने बनाए थे, एक अर्धशतक बनाकर टीम को एक सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत कम स्कोर पर उनकी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी थी, ऐसे मौके पर डी लीड ने आकर अपनी पारी को संवारा था। इस बीच एक बार फिर से तैयार, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद थी लेग ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकते हुए थी विकेट कीपर घोष की ग्लव्स में जाके पहुंची। बबेट डी लीड बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही थी

0: जैसे जैसे ओवर्स बीतते जा रहे हैं, मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है और नीदरलैंड से दूर जाता जा रहा है। मात्र 8 ओवर का खेल अब शेष रहा है और 15 से अधिक रन अगर प्रति ओवर बनाने की क्षमता है नीदरलैंड्स की, तब तो कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर आज की परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो नीदरलैंड्स की टीम अब थोड़ी सी परेशानी में, 6.92 की उनकी गति है जबकि उनको चाहिए 15.88। इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में, बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया, एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन। इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे सकते हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा। इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है, देखना है फील्डर्स के नीचे है या नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई, वो बाल बाल बची। वहां पर स्मृति खड़ी थी, गेंद की तरफ लपकी थी लेकिन गेंद उनके हाथ पे नहीं आई। डी लीड 21 रन पर सामना करेंगी जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के, 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर के खेल पर। और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए। 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करना चाहती थी हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर, उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर। कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिस्क। इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा, 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने, और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में, दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर से अफगानिस्तान को पराजित किया है। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के में खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ लेकिन अब जाके राधा यादव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट के पर एंड में, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कि वो रन जुटा लेते। 2 रन और जुड़े हैं नीदरलैंड के खाते में। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, छिटकी थी वहां पर फील्डर के हाथ से, गली में खड़ी फील्डर के हाथ से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, थोड़ी सी जी रखी जाती तो ये कैच हो सकता था। इस बीच एक बार फिर से क्रांति की गेंद, अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार लेकिन बैट और बल्ले से उलझी गेंद, बहुत तेजी के साथ रन चुराते हुए डी लीड्स दौड़ी, वहां पर उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इसके साथ ही 25 रन 13 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर।
1: नो इंडियन बॉलर्स हैव बीन टॉस्ड इन दिस गेम एंड a lot of cricket going around the world. India playing Afghanistan and they won the game today, the second ODI by 170 runs, with centuries from the captain and of course the wicketkeeper. They're all hammering hundreds and it was a comprehensive

0: Going on, England playing New Zealand today with 225. New Zealand some time back, no Stokes in that game. He's got his own problems beyond the playing us. Unfortunately, it's Root leading England after a long gap, and he's playing his 167 test match. Would you believe he's playing 167 test match? The rest of the other England side all put together 114. But a wonderful cricketer, fans seem to get past Tendulkar somewhere down the line. He's got 3 or 4 years of cricket left with his bat. So right now, back here in Leeds, India on the way. They're in complete command of this game. And Netherlands probably haven't batted badly, but they're learning. Continue to learn as the game goes on, the months and years to come. And they're probably, at some point of time, in the next 10 years' time, they'll be a strong contender in the T20 format, as a matter of fact. So right now, new player is going to step into the centre. Play briefly held there with the exit of the captain, who's been stumped smartly by Ghosh, and off the bowling of Nandini. And one casualty in the inside with Patil, the off-spinner. You know, just bowled one ball, and she had a nasty fall. She slipped, and she suffered an ankle injury. Say, Dick, she's the new batter in, and the batter at the other side is Rich K. Netherlands 96 for 4, one ball to go in the 15th over, and the target they're chasing now looks very unrealistic. 210. Nandini with the last ball off her third over, bowls fuller and lifted in the air, wide of Minon. It'll be cut off by Jemima Roderick. She does well to cover, have to run 15 metres. Couple of runs here, and after 14 overs, Netherlands a 4 for 98.
1: 14 ओवर की समाप्ति पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं हीट सीजर्स स्कॉट स्मृति मंधाना बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन मेलकन बोर्ड कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन बबेट डेलीट स्टंप रिचा घोष बोल्ड नंदी शर्मा 28 रन और स्टीव कैलिस जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर और इस समय 4 विकेट जो गेंदबाजी का सिलसिला है नंदी शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए सैफ अली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया है और पाटिल जैसा कि इंजर्ड होकर चली गई थी गेंद फेंकी थी श्री चंडी ने 2 ओवर में 11 रन दिए कोई विकेट नहीं और दीप्ति शर्मा ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है डिसीजन को रिव्यू किया गया है देखना है अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर टीवी अंपायर लॉरेन एगेन बैग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे भीतरी किनारे से तो नहीं लगी यही देखना है और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकलती रहती थी लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतुष्ट मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है अंपायर ने अपना निर्णय दिया आउट हो गए हैं बैटर और ये अंपायर की उंगली उठी इसके साथ ही क्रीज की पारी यहीं पर समाप्त हुई और एक और करारा छक्का लगा है रॉबिन रिस्क 8 रन पर आउट हुए हैं एलबीडब्ल्यू बोल्ड श्री चरणी उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई 1 रन उनके खाते में जुड़ा और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा छटका लगा है और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती लेकिन उन्होंने बेटर समझा उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है
0: Well, at times I probably will say it's match of the unequals, isn't it? One of the top-ranked team playing

0: a team which is new in Trent, and a long way to go. Charney Bowles and driven to its long goal for a single. She's off the mark, Zwilling. She bowled well indeed, and takes Netherlands up to 99 for 5.
1: ज्वेलिंग ने अपना खाता खोला है, एक रन लिया है, जिस तरह से पिछली गेंद पर आउट हुआ था, अंपायर ने एक और आउट नहीं दिया लेकिन रिव्यू दिया और उस पर भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्ट इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही है। ज्वेलिंग ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कुडलैंड गेंद थी। एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर, और एक बार फिर से श्री चन्नी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा, लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी, और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, और इससे पहले की गेंद फील्ड की जाती, थ्रो किया जाता, 1 रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा। हालांकि मिस फील्ड हुई, 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है, और 1 गेंद अभी भी शेष है श्री चरणी के इस ओवर की। 14.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। नीदरलैंड्स के बल्ले से अभी तक 104 रन निकले हैं, 5 विकेट का नुकसान उनको हो चुका है, आधी टीम उनके आउट होकर पेविलियन लौट चुकी है, और भारत के लिए ये एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी इस समय की जा रही है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को धीरे से पुश किया स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ, और इससे पहले की गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, 1 रन और जोड़ लिया। 106 रन 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है नीदरलैंड्स का।
0: So the game has gone one-sided, isn't it? Last 5 is coming up, and it's certainly out of reach now. The ask is around about 20 runs an over, so we haven't seen any of the best of the IPL games. And 209 in the play after 15 overs, in 105 for 5. So Dee Lange, she bowled well. She bowled 4 overs for 32. And she was the best of the ball. She had 2 wickets in the game against Bangladesh too. She bowled 4 overs 2 for 27, isn't it? In that game. It's going to be Deepti Sharma to bowl her 3rd ever flights this one. And it's lifted in the air, safe. It'll fall safe at the fielder, Mandana, at deep mid-wicket. In fact, it's not Mandana, I can tell you that. It's Radha. She fields in and sends in the return 106 for 5. And the last 4 overs and 5 deliveries coming up to complete the formalities of this game, as they need 104 from 29. And Frederick Erdick, she's the one playing Richa Shamak. She comes in from close to some balls and she slocks the feet this man, not with much power and timing. Again, Mandana in business, Radha in business. And one more to the Netherlands team. They go up to 107 for 5. But actually, by all means, for a team like Netherlands, you know, it's, this is a massive experience for them. One is to qualify for the World Cup. They'll be very happy if they win one game in these qualifying matches. Next ball is defended up to short mid-wicket. Mandana, obviously, rather coring for Harmanpreet Kaur. She's the fielder. And Mandana probably will be strong contender for the player of the match in this game. And the game has been a bit disappointing in the second half, I can tell you. The first half was more entertaining and enterprising. Next ball, she gets a thick outside edge. She's going down towards no women's land. And they run just a single. It was not timed. A thick edge that went sailing in the air and fell between mid-on and deep mid-wicket. You could cross over for an easy single. So that takes in Netherlands up to 108 for 1.

0: Three singles in this over. Deepthi's having a nice little time. She tosses this one nicely. Again, slog swept, not with any timing. So the swipes, the ugly, has been looking very ugly, isn't it? The slog sweeps hasn't been as elegant as it has been. And most international wickets now is Deepthi from India, sharing with Goswami 355. Magic figure indeed. Next ball, she's lifted this one high, ever long gone, and it's gone for four.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Well, that's a welcome boundary from a Netherlands team point of view. 42-4 in this game so far. And at the end of 16 overs, it's 5 down for 113. Winning is out of equation now, Goswami. And I'm sure they're going to play for pride. They're going to play with a lot of passion. And they're probably trying to narrow the gap and settle somewhere between 150 to 160 if all their wickets remain intact from a Netherlands point of view. But they'll be very happy if they win one game in the league games of this World Cup before they leave back for Netherlands.
2: 16 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर उठा दिया है। इस गेंद को देखना है कि इसके पीछे फील्डर है कि नहीं, और इसके साथ ही ये कैच बहुत ही शानदार तरीके से एक और विकेट मिला है श्री चढ़नी को। और जिस तरह से श्री चढ़नी ने अपने ओवर की शुरुआत की थी और गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, स्मृति मंधाना ने एक कैच और पकड़ा है। स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और उसे उठा दिया था बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई शॉट को। स्मृति मंधाना वहां पर खड़ी थी और एक शानदार कैच पकड़ते हुए इस बार एक और फ्रेडरिक ओवरडिस्क ने मात्र 9 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। कॉट स्मृति बोल्ड श्री चढ़नी 7 रन। इस समय छठा विकेट आउट हो गया है, 6 विकेट गिर चुके हैं और अब पूरी तरह से दर्शकों में भी उत्साह तिरंगा लहरा रहा है मैदान में वहां पर, और निरंतर इंग्लैंड की धरती पर जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे किसी भी मैच को वो से मैदान पे जरूर आते हैं। 97 रन की अभी भी जरूरत है नीदरलैंड्स को, लेकिन अब ओवर बहुत ही कम बचे हैं। एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब राड आए हैं अगली बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंद थी अंपायर की तरफ से, सरारेस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है। श्री चढ़नी ने इस गेंद को थोड़ा से हवा में फ्लाइट किया था और DRS लिया है वहां पर। बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चढ़नी की गेंद को कट करना चाहती थी, लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया यह अब DRS के जरिए तय होगा। लेकिन भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर ली थी और अब देखना है कि बहुत नजदीकी मामला है उनकी बैट से लगी या नहीं। यहां से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब, और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा। बैट से टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है, और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी, देखते हैं उंगली उठाई या नहीं, लेकिन लेकिन बैटर पेवेलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं। अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और अब जाके निर्णय अंपायर का उंगली ऊपर उठी और राड जो कि शून्य पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और सातवां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है। और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर, और ये श्री चढ़नी लगातार 2 विकेट ले चुकी हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि

0: एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है। 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है, अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पे विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था लेकिन गेंद मैदान पे लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, एक रन और खाते में जुड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं और श्री चरणी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है और 20 गेंदों का खेल अब शेष रहा है, 96 रन की दरकार है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय दर्शकों में अपार उत्साह, तिरंगा झंडा भी फहराया जा रहा है, शोर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये गेंद को खेला था लेकिन गेंद टप्पे के साथ उछली थी हवा में और विकेट के बीच में आके उसको अपने हाथों में लिया था श्री चरणी ने। ऐसा लगा था यहाँ पर दर्शकों को कि कोई कैच है लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने बहुत सुरक्षित तरीके से खेला था। अगली गेंद अच्छी और इस गेंद को उठा दिया है, देखना है गेंद बाउंड्री में क्या पास, इसके साथ ही आउट। एक और विकेट गिर चुका है श्री चरणी की इस ओवर में। देखा जाए तो 3 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं लेकिन लगातार 3 विकेट लेते तो हैट्रिक होता, लेकिन इस ओवर में सफलतम 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर और बहुत ही सफल ओवर जिसमें 3 विकेट उन्होंने श्री चरणी ने लिए हैं और एक तरह से बहुत ही शानदार जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि लॉन्ग पोजीशन पर फील्डिंग करती हैं उन्होंने कैच किया। आयरिस ज्वेलिंग 8 रन पर आउट हुई है, कॉट जेमिमा बोल्ड श्री चरणी और 114 रन 17 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। विश्वनाथ,
1: Well, it's a triple wicket over indeed. Remarkable for her and she's got figures of 419 from 4 overs. Sri Charney, she's having a wonderful time with the ball. 4-for-19 from 4, very economical and a complete grip on this game from an Indian point of view. Just the last 3 years to complete the formalities and 2 wickets in hand. And Shefali Verma will bowl her last ever, if I'm not wrong. No? Yeah, that's right, in fact. First ball, she tries to whack it on the onside. They're all appealing for a stumping. It was so well collected by Richa and she got the bails broken in a flash. It's been referred to the third umpire and it's been given out indeed. It's been given out. It wasn't a late decision by the umpire or he had some kind of a thing coming up from third umpire. I'm very stunned actually. I've never seen anyone taking such a long time to give that out. Stumped, the second stumping of the game, and that's out. In fact, I can pick it up from the replay. And the right leg was in the air. Smiles in the Indian camp. Flurry of wickets have fallen in the last 7. Netherlands have lost 4 wickets in the last 7 deliveries. And silver sieges, stumped by Richa off the bowling of Shefali Verma. She gets a second wicket, and she's got figures of 3 overs, 2-for-20. It should be effectively 3.1. She bowled the last 5 balls to replace that one. So, vendor warning. She is the last batter in. Verma bowls and she defends. Unknowingly where the ball has hit the bat. And it comes back to the bowler. So, small smiles all around the Indian camp. They'll be overall very satisfied with the performance. Been very clinical in the approach. Shefali bowls. Tosses this one nicely. She's lifted in the air. Where's she going? Is she going to be caught? Oh, well taken indeed by the cap by middle order player. In fact, Jemima Rodrigues. She's taken that catch, and so which means that Netherlands are all at indeed for 114, and they're giving India a big win indeed, as India win this game by 96 runs, and the last. How much? What? 7-8 deliveries. They lost 5 wickets. Or rather, the last 9 deliveries, they lost 5 wickets. So, it's been third catch by Jemima. So, it's been a very, very clinical performance from an Indian point of view. They'll be overall satisfied. They'll be clashing on the points along with the Australians in this group. And And I just give you this.

0: एक टर्न मिला था उस टाइम.
1: आई जस्ट वॉन्ट टू एड टू व्हाट शी सेड वैशाली की यू नो इट रिमाइंड्स मी ऑफ सचिन तेंदुलकर दुबोला कि एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ रन अप मोर ऑर लेस द सेम काइंड ऑफ बिल्ड आपने देखा होगा एंड यू नो ही कुड डू एनीथिंग विद द बॉल ही कुड लेग स्पिन ऑफ स्पिन फ्लिपर्स गॉड नोज व्हाट आई हैव सीन हिम प्ले इन हीरो कप फाइनल्स एंड ही वुड गेट विकेट्स एंड समटाइम्स द मैच विनिंग विकेट्स वुड ऑलवेज बाय सचिन आई थिंक बट यस आई एम नॉट कंपेयरिंग सचिन एंड शेफाली बट she can do a lot of things with the ball and that's why Harmanpreet would often go back when you know when Patil was injured and she left she filled over I think and she did a pretty good job
0: talking about finals well Shefali did get wickets for India in the ODI

0: Talking about finals, well, Shefali did get wickets for India in the ODI World Cup final as well. In the meanwhile, in our show, this time for our listeners to chip in with their questions and comments. Remind you, our numbers are 011-234-21084 and 1085. Abhi jo pehle shrota jode hain, unse baat karte hain. Namaskar.
1: Namaste.
0: Ji, apna parichay dijiye.
1: मैं हसीना की मजबूर को मैं पालकर ऐसी
0: हसीना जी, क्या सवाल है आपका?
1: सवाल कुछ नहीं, मैं बधाई देना चाहती हूँ आप लोग खाना जी में कुछ क्यों चाहे महिला की भूख ध्यान से सोचते हूँ खाना पीना छोड़ देते हैं आखिरी खाओ और वंदना की मरीज जी के आपका कॉमेट्री बहुत ध्यान से सुन रही है.
0: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा को इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं. तो श्रेयांका पाटिल के एब्सेंस को फिल किया जरूर शेफाली ने, लेकिन श्रेयांका को जो इंजरी हुई अभी जो दिख रहा था और जो हमने सुना काफी प्रॉब्लम में दिखी वो एंकल उनका.
2: डेफिनेटली शी वन ऑफ द लीड बॉलर्स एंड द पॉइंट इज, बट वी हैव बैकअप. ये नहीं कि हमारे पास बैकअप नहीं है, वी हैव एनफ बैकअप, बट वी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू नो शी कम्स बैक फिट एंड फाइन एंड द बेंच रिमेन्स एज स्ट्रांग एज एवर, बट दैट विल ओनली नो आफ्टर द रिपोर्ट्स कम आउट लेटर इन द डे.
3: हमारे लिसनर्स के पास दिव्य दृष्टि तो है. किसी ने सवाल पूछा था किसी ने, राधा यादव कहाँ है, कहाँ क्या कर रही है, उन्हें सदस्य रहना चाहिए था 11 की, अब बन सकती है क्योंकि श्रेयांका इज नर्सिंग एन इंजरी. बट इट्स गुड न्यूज फॉर इंडिया यू थिंक वैशाली, बिकॉज इवन दो श्रेयांका माइट मिस आउट ऑन एक्शन, श्री चरणी इज डूइंग वेल, शी इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द साइड.
4: या राइट, एंड उसके साथ अभी जैसे आपने राधा यादव की बात की है उसमें एक बेनिफिट और मिल गया हमें कि शेफाली वर्मा सॉरी श्रेयांका पाटिल के पास उतनी बेटर बैटिंग नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक उनको रिकॉर्ड देखे पेपर्स पे तो उनका सिर्फ एक ही 50 उनके बैट से, एंड राधा यादव के पास काफी एक्सपीरियंस के साथ साथ बैटिंग का लाइनअप भी है, तो वो चीज मैटर करती है और वो बेनिफिट दे सकती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट.
3: Indeed, जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं यू वॉन्ट द पीपल विद गुड एक्सपीरियंस एज वेल टू बी आउट देयर, बिकॉज समटाइम्स यू आर नॉट जस्ट प्लेइंग द बॉल बट द रेप्यूटेशन टू.
0: एब्सोल्युटली, और इसके साथ वक्त हो चला है कि हम कप्तानों को सुने और उनकी क्या रणनीति रही थी, उनका क्या विश्लेषण है उसके बारे में जाने.
5: I think India batted really well, especially up front. I think we had a great comeback with the ball, because I think there were 100 after 10 overs and only scoring 210. I think on this flat wicket, I think we had a chance. We didn't quite get it right.
6: The catching, at least 4 catches going down, is that something that you had higher expectations of?
5: Yeah, I think our fielding can be a little bit better, especially the catching, as you said. I think also the bowling, we bowled quite a lot of extra, so that's all controllables, which we can work on and improve on for the next game.
6: From the good points, Dilanga seemed to have acquitted herself well with the ball.
5: Yeah, definitely. She has some great breakthroughs also in the first game, so it's really, I'm very pleased to see that.
6: And then the chase with the bat, how would you describe it?
5: I think we never really got going. We lost too many wickets on the way again, just in our in our first game. I think India bowled very well and very smart. They played clever cricket, which we can learn a lot from, so it's a great learning for us.
6: Yes, you just speak to that great learning, because it's the first time you two have clashed in Women's T20 Internationals, the third-ranked team on the table. What was this experience like, apart from the things we've spoken about before?
5: I think it's very special to play against India, as you said, a top team in the world, with our friends and family here in the stands. I think it's super special, and yeah, it's something I'll always remember.
6: All right, yeah, I had to intermingle with a few of the fans of the Netherlands there, and I can tell you it took some energy. All the very best as you go through the rest of this World Cup, and great to see the smiles on your faces and that of your fans.
5: Thank you so much.
6: Right, we'll get Harmanpreet Kaur to come in here with us. Harman, top of the table now, still early stage of this World Cup. How do you assess the way today went?
7: Yeah, I think we were really good with the bat. It wasn't that easy wicket, but I think the way Smriti and Shefali batted, gave us a very good platform. So I think credit goes to them the way they both batted today.
6: You talk about Shefali there as well. Smriti, we've already spoken of, but it's not

0: का जो पीछे वाले बैट्समैन है वो आप पे निर्भर है. आप अगर पहले ही बाहर चले जाओगे तो उनको एक माइंडसेट होता है, वो ये सोचते हैं कि सामने वाला अगर इतनी जल्दी आउट हो गया तो क्या बॉल इतनी आउटस्टैंडिंग आ रही है और क्या पिच में कुछ डिफरेंस है, तो ये मैटर करता है एंड हमें उस तरह का माइंडसेट भी बनाना पड़ता है.
1: इंडीड एंड देयर इज अ लिसनर वेटिंग फॉर अस टू जॉइन हिम. लेट्स गो टू हिम.
2: हम आपको सुन नहीं पा रहे, अपना परिचय दीजिए.
3: हाँ नमस्ते मैडम.
2: नमस्ते, अपना नाम बताइए.
3: मैं आपका परिचय दे दूँ
2: जी.
3: पालना नाका इंडस्ट्री मंत्री बोल रहा हूँ.
2: क्या सवाल?
3: महिला टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे भी किसी तरीके से वर्ल्ड कप जीते, जैसा 50 का जीता था जिसका भी जीते. और मैं कहना चाहूँगा कि जो 50 और फाइनल में जो खिलाया गया था उसी तरह से आगे भी मजबूत वो खिलाया
2: जी. धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए. द सेम रूथलेसनेस इज वॉट आर लिसनर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन टीम. साउथ अफ्रीका दो हैव सम इश्यूज, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन बीइंग देन नंबर 3 पोजीशन. व्हिच बैटर इज बेस्ट फिट फॉर दैट पोजीशन?
4: Difficult to say which batter, but the point is the match against South Africa will be an entirely different cup of tea. Ek toh, first of all, you know, if you don't forget, this is the same team that we played in the 50 over cricket, and if I'm not wrong, this is something that the scholar also mentioned. The intensity of that match will be an entirely different level, and they have so many match winners starting from their captain. So it is not a question of number 3 or number 4, it is a question of your mindset going into a big match. Right? Today, if they can beat Pakistan or South Africa, Pakistan or Birmingham with the win, it would be a big boost ahead of this match. But the point is this, against a match against South Africa, Australia, I mean, the dressing room, in the Indian dressing room, their thinking will be completely different. They will forget what they have done against, you know, Pakistan or Netherlands. Yeah? So and don't think that they are a world-beating side. They're a very good side, and many of their cricketers play cricket in these kind of regions and are familiar with the conditions. Similarly, if you see, not many Indian cricketers actually are used to these conditions.
1: Right.
4: Because you see, Smriti Mandhana said something very interesting, that she played the 100. Okay, so these kind of conditions actually help them prepare better. That's why do you think that Smriti Mandhana is not happy with her 250s? Is because she knows that the next set of matches will be very, very crucial, and if she can't middle the ball, bat agar balla mein nahi laga, that feel good factor is not there. The runs will not come because the bowling from South Africa will be very, very tough.
1: Right, I think that
5: a lot will depend on the type of wicket that is provided. And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
1: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerings from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye.
6: Haan ji, aadab, namaskar.
1: Namaskar.
6: Ji, main Mustafi Mutha bol raha hu, Gujarat se.
1: Ji, bataiye, aapka sawal kya hai?
6: जी, पहले तो भारत मैच जीता, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को, और ऐसे ही आगे भी जीतते रहे. बहुत ही उम्दा प्रदर्शन टीम का.
1: शुक्रिया सर.
6: और एक हमारे खिलाड़ी आज इंजर्ड हो गई, तो क्या उसकी आगे कमी खलेगी?
1: राइट, श्रीयंका पाटिल की इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं.
6: रेडियो पे दे रहे हैं. हेलो सर
1: जी, बताइए.
6: हेलो, आप रेडियो पे कमेंट्री दे रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं. लोकल रेडियो स्टेशन तमाम रेडियो पे कमेंट्री आ रहे हैं, मीडियम में भी, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं.
1: बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे लुत्फ उठाते रहे, हम यही उम्मीद करेंगे. वैशाली, आपसे रहेगा ये सवाल फिर कि श्रियंका पाटिल की कमी क्या खलेगी अब इंडिया को?
0: कहने के लिए खल सकती है, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव, एंड वो बेटर फील्डर भी है. जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती है वो, तो हमारे पास उसे उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है, एंड वो इम्प्रूव भी कर रही है. उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेएबल बॉल होती है. एंड अगर हम बात करूँ बैटिंग के लाइनअप की जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की, बट हमारे पास मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए

0: हम उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, क्योंकि मिडल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी दो लास्ट टू मैच से दिख नहीं रहा है, नॉट इवन नॉट लास्ट मैच, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में, उनकी जगह पे हरमन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर जैमी।
1: बिल्कुल, और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है, खास करके मिडिल ऑर्डर में। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को। अभी कंडीशंस काफी अलग होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफी पीछे। भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से भुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले। भू
2: नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं। एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड, उनका अभी शबनम इस्माइल हैज जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट, सो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज शी इज बॉलिंग क्वाइट वेल, शी प्लेज इन द WPL, शी नोज ऑल आर बैट्समैन बैट्सवुमन। सो मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो बैटर्स हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से विदाउट लूजिंग मोर देन 1 विकेट, then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
1: Absolutely, और वॉल्फार्ट शानदार फॉर्म में है, पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है।
3: क्वालिटी बैट्समैन है, देखिए पेडिग्री जो है ना वो आपको दिखेगा रिगार्डलेस कि कौन फॉर्मेट में व्हाइट बॉल खेल रहे या रेड बॉल। देखिए मंदाना, हरमनप्रीत, मिताली राज पहले थे, इन तो दे हैव क्वालिटी, और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि नंबर 3 में कौन बैट करना चाहिए, राइट, बिकॉज टुडे यास्तिका डिड नॉट गेट द रन्स एज डिजायर्ड, बट दीस काइंड ऑफ मैचेस आर वेरी वेरी क्रूशियल, देयर नोबडी विल नॉट लुक एट रन रेट्स, दे विल लुक एट विक्ट्री 2 points, राइट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू गो विद द प्रॉपर माइंडसेट, और इस तरह का मैच हम जीतने का कोशिश करेंगे, नॉट अबाउट run rates.
4: Not about run rates. It brings us to a very interesting point at this stage. On the 21st, Colonel, it's going to be the Indian bowlers versus South African batters, or do you think the South African bowlers versus the Indian batters? What do you think will be the bigger battle on that day?
2: I think the bigger battle would be the South African bowlers versus the Indian batters, and I hope we do well, okay, and score over 150 and put them under pressure with our spinners.
1: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
0: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफी है, बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, आप फोर जहां पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहां पे आप 2 रन्स दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर। एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रन जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज और ये कहूंगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है। जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियां भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो कहीं वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है।
4: इंडीड, और नंदिनी शर्मा की आपने जब बात की तो कीपर ऋचा घोष उनके लिए आगे खड़े हुए थे क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सके। क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैथरे को आजमाते हुए देखेंगे ऋचा घोष स्टैंडिंग अप?
0: जी बिल्कुल, ऋचा घोष मैंने हमेशा बोलती हूँ इंडियन टीम के लिए बेस्ट है, एंड उनकी बैटिंग ही नहीं उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या ऑफ साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नजर भी आएंगी, एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती है उस तरीके से वो बॉल भी डलवाती है बॉलर्स को, वो इशारे से जो एक इशारा देते हैं हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके, वो बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है, क्योंकि वो एक कीपर वहां पिच पे खड़े होके पूरे

0: पूरी फील्ड सेट कर सकता है और सबको देख सकता है, उसके लिए वो सबसे इजी पॉइंट है वहां पे खड़े होकर चेक करना.
1: ग्रेट विन फॉर द इंडियन साइड एंड नाउ दे विल बी पुटिंग देयर फीट अप एंड वॉचिंग पाकिस्तान टेक ऑन the South African bowlers especially, so that they are better prepared and they do their homework for the next game on the 21st. Megha?
2: Absolutely. Indian team would now turn its attention on making all the notes. Vaishali used the word ishara. Hamare producer ki taraf se ishara aa gaya hai isi baat pe ki is program ko hum yahan par conclude kar sakte hain is promise ke saath ki 21 June ko hum wapas aayenge. Suhas, aapka dhanyawad. Hamare visheshagyon ka yahan par bahut bahut dhanyawad. Aur is production की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर शहनवाज खान ने उठाई और प्रोडक्शन टीम में इंजीनियर्स हैं मनोज अजय राणा और आर यादव, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता. और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहां पर समापन करेंगे, वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ. जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे.
3: प्लेयर ऑफ द मैच.
4: अभी आप आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.
6: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है. मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर. लीजिए सुनिए ये देशगान.

0: देशगान अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति

0: बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।